मिडी वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून 2026 प्रातः के 5:56 और 48 सेकंड हुए हैं। अब आज की हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। हम अपने सभी आदरणीय श्रोताओं का इस प्रातःकालीन सभा में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही हम उन सभी श्रोताओं का विशेष रूप से अभिनंदन करते हैं जो हमारे इस प्रसारण को न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं।

मिडवीब और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की

0: बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मिडवेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अभी आप समाचारों का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे। सुबह के 6:05 में लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। प्रातःकालीन की आराधना कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं देशगान। हमारा भारत देश निरंतर प्रगति और विकास की राह पर अग्रसर है। विज्ञान, शिक्षा, कृषि, उद्योग, खेल और संस्कृति के क्षेत्र में भारत नई नई उपलब्धियों के शिखर छू रहा है। अपनी समृद्ध विरासत, विविधता में एकता और अटूट राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ हमारा देश विश्व पटल पर एक सशक्त और सम्मानित पहचान बना रहा है और इसमें हम सभी युवाओं का विशेष रूप से सहयोग है। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देश कान समूह सरों में। ईश्वर के स्मरण मात्र से ही मन का अद्भुत शांति, शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त हो जाता है। जब हम अपने प्रत्येक कार्य का आरंभ प्रभु के नाम से करते हैं तो कठिन से कठिन मार्ग भी सरल प्रतीत होने लगता है। जीवन की चुनौतियां छोटी लगने लगती हैं और मन में सकारात्मकता का संचार होता है। प्रातः काल का समय ईश्वर की आराधना और वंदना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आइए उस ईश्वर की आराधना में हम सभी जुड़ते हैं।

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में ये भक्ति गीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं ये भक्ति रचना। आवाजें हैं हरिओम शरण और नंदनी शरण की।

भक्ति संगीत की आराधना कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नंदिनी शरण और साथियों की आवाजों में ये भक्ति गीत। भक्ति संगीत का आराधना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये भजन।

0: मिडवीप और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु। इस कार्यक्रम में आज का शीर्षक है मन, वाचन और संकलन विजय कुमार का।
1: हमारे जीवन में यदि किसी एक शक्ति का सबसे अधिक प्रभाव है तो वो है मन। मन दिखाई नहीं देता, उसे छुआ नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को हर पल महसूस किया जा सकता है। हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं, सपने, निर्णय और कर्म सब मन से ही संचालित होते हैं। मन कभी हमें ऊंचाइयों तक पहुँचाने की प्रेरणा देता है तो कभी निराशा और भ्रम में भी डाल देता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में मन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। संत कबीर ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये छोटी सी पंक्ति मन की अपार शक्ति को बहुत सरलता से समझा देती है। मन एक ऐसा दर्पण है जिसमें हमारे व्यक्तित्व की पूरी तस्वीर दिखाई देती है। यदि मन स्वच्छ है तो जीवन सुंदर लगता है। यदि मन अशांत है तो सारी सुविधाएँ होने के बाद भी सुख का अनुभव नहीं होता। आज के आधुनिक युग में विज्ञान ने अद्भुत प्रगति की है। मनुष्य चांद और मंगल तक पहुंच गया है, लेकिन अपने मन को समझना और नियंत्रित करना अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। मन की स्थिति ही जीवन की दिशा तय करती है। जब हम छोटे होते हैं तब हमारा मन बिल्कुल निर्मल होता है, उसमें न कोई छल होता है न कोई द्वेष। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अनुभवों, परिस्थितियों और समाज के प्रभाव से मन में अनेक प्रकार के विचार जन्म लेते हैं। कुछ विचार सकारात्मक होते हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जबकि कुछ नकारात्मक विचार हमें पीछे खींचने लगते हैं। इसलिए ये भी बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को सही दिशा दें। मन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी चंचलता है। वो एक स्थान पर टिकना नहीं चाहता। कभी वो अतीत की यादों में खो जाता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में भटकने लगता है। वर्तमान में रहना मन के लिए सबसे कठिन कार्य माना जाता है। यही कारण है कि योग और ध्यान की परंपरा में मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करने पर विशेष बल दिया गया है। जब मन वर्तमान में रहता है तब व्यक्ति अधिक शांत, संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। मन का हमारे स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि मन प्रसन्न हो तो शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, छोटी छोटी समस्याएं भी आसानी से सुलझ जाती हैं। इसके विपरीत यदि मन चिंता, तनाव और भय से घिरा हो तो शरीर भी बीमार पड़ने लगता है। मन और विचारों का संबंध बहुत गहरा है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनता जाता है। यदि हम हर परिस्थिति में अच्छाई देखने का प्रयास करें तो हमारा मन सकारात्मक बना रहता है। सकारात्मक सोच हमें कठिन समय में भी उम्मीद देती है। जीवन में सफल होने वाले अधिकांश लोग

0: सकारात्मक सोच के महत्व को समझते हैं। वो समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधानों पर विशेष ध्यान देते हैं। मन का संबंध भावनाओं से है। प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और अहंकार जैसी भावनाएं मन में ही जन्म लेती हैं। प्रेम और करुणा मन को विशाल बनाते हैं, जबकि क्रोध और ईर्ष्या मन को संकीर्ण बना देते हैं। जब मन में प्रेम और अपनापन होता है, तब रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन में खुशियाँ बढ़ती हैं। इसलिए हमें अपने मन में अच्छे भावों का विकास करना होगा। मन की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण कठिन परिस्थितियों में देखने को मिलता है। कई लोग विपरीत हालात में भी हार नहीं मानते और अपने मनोबल के बल पर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। इसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। ध्यान, योग, प्राणायाम और आत्मचिंतन मन को शांत और संतुलित बनाने के प्रभावी उपाय हैं। प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताना, अपने विचारों को समझना और अपनी भावनाओं का निरीक्षण करना मन को मजबूत बनाता है। संगीत का भी मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मधुर संगीत मन को सुकून देता है और तनाव को कम करता है। यही कारण है कि संगीत को आत्मा की भाषा कहा जाता है। प्रकृति भी मन की सबसे बड़ी चिकित्सक है। जब हम पेड़ों, नदियों, पहाड़ों और खुले आकाश के बीच समय बिताते हैं, तब मन शांत होने लगता है। प्रकृति हमें धैर्य, संतुलन और निरंतरता का संदेश देती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यदि हम कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं, तो मानसिक तनाव काफ़ी हद तक कम हो सकता है। मन की स्वच्छता और उदारता बहुत जरूरी है। दूसरों को समझना और क्षमा करना मन की महानता का परिचायक है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु में मन शीर्षक पर आलेख, वाचन और संकलन विजय कुमार का था। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस का गायन। मुख्य गायन स्वर रविंद्र साठे का है। संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। मिडवेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए सुनिए खेती की बात। सामयिक सुझाव का विषय है अरहर की खेती।
1: किसान भाइयों, खरीफ दलहनी फसलों में अरहर का विशेष स्थान है। चना के बाद अरहर दूसरी मुख्य दाल वाली फसल है। इसमें लगभग 22% प्रोटीन पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में इसकी खेती की जाती है। प्रदेश में अरहर उत्पादन बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं। इस फसल की काश्त उच्छन और भर्री भूमियों के अलावा धान के खेत की मेड़ों पर भी की जा सकती है। उन्नत तकनीक के माध्यम से किसान अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई, अरहर की फसल आर्द्र और शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु में की जा सकती है। फसल को प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि के लिए गर्म नम जलवायु तथा पौधों पर फूल आने से लेकर फली और दाने बनते समय तक शुष्क मौसम और तेज धूप की आवश्यकता होती है, जिससे उत्पादन अधिक मिलता है। इस फसल के लिए समुचित जल निकास वाली हल्की से लेकर भारी मिट्टी वाली खेती उपयुक्त रहती है। छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में भर्री यानी कन्हार भूमि में इस फसल की काश्त की जाती है। अरहर को धान की खेत के मेड़ों पर भी सफलतापूर्वक उगाया जाता है। किसान भाइयों, अरहर फसल के लिए भूमि की तैयारी मानसून प्रारंभ होते ही एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई और देसी हल या ट्रैक्टर द्वारा दो बार जुताई करके पाटा लगाकर समतल कर देना चाहिए। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय मिला देना चाहिए। उसके बाद अंतिम जुताई के समय बुआई के पूर्व क्लोरोपायरीफास 1.5% चूर्ण 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाना चाहिए, जिससे दीमक आदि कीड़ों का प्रकोप नहीं होता है। बुआई के पहले जल निकास के लिए खेत में चारों ओर नालियां बना लेना चाहिए। किसान भाई, उन्नतशील किस्मों का ही चयन करना चाहिए। जमीन के प्रकार, बुआई का समय, संसाधन की उपलब्धता के आधार पर हमको किस्मों का चयन करना चाहिए। यदि हम किस्मों की बात करें तो उपास 120 अरहर की एक किस्म है। यह किस्म 135 से 140 दिन में

0: होकर तैयार हो जाती है। उकठा रोग के लिए संवेदनशील है, मध्यम ऊंचाई होती है, उपज क्षमता 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। अरहर की दूसरी किस्म है आशा। इस किस्म की अवधि 160 से 180 दिन होती है। उकठा और बांझपन के लिए निरोधक किस्म है। खेत की मेड़ों होती उपयुक्त है। इसका उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह से नंबर 148, यह किस्म 160 से 180 दिन में पककर तैयार होती है। उकठा रोग के लिए सहनशील है और बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म है। इसकी उपज क्षमता 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। प्रगति, यह भी एक अरहर की किस्म है। यह किस्म 130 से 140 दिन में पक जाती है। उकठा रोग के लिए निरोधी और बोनी किस्म है। यह पेड़ी फसल हेतु उपयुक्त है। उपज क्षमता 15 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। लक्ष्मी, यह किस्म 180 से 200 दिन में पककर तैयार होती है। उकठा रोग के लिए निरोधक किस्म है। खेतों के मेड़ों होती हुई यह उपयुक्त किस्म है। उपज क्षमता 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राजीव लोचन, इस किस्म की अवधि 180 से 190 दिन है। उकठा एवं बांझपन के लिए निरोधक किस्म है। इसकी उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई, अरहर की बुआई मानसून के ऊपर निर्भर करता है। साधारणतः बुआई का उपयुक्त समय जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के दूसरे सप्ताह तक रहता है। देर होने की स्थिति में इस फसल की बुआई अगस्त के प्रथम सप्ताह तक कर सकते हैं। अरहर की बुआई के लिए बीज की मात्रा, बीज के आकार और गुणवत्ता पर निर्भर करती है। सामान्यतः मध्यम आकार और उच्च गुणवत्ता वाली बीज 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कतार से कतार बोने के लिए लगता है। अरहर के साथ सहफसली खेतों में अरहर की बीज दर शुद्ध फसल के बराबर रखनी चाहिए। बुआई के पूर्व बीज को कवकनाशी दवा बाउस्टिन या थायरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद राइजोबियम तथा पीएसबी कल्चर की मात्रा 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। अरहर के बीज कतारों में 406 सेंटीमीटर गहराई पर बोनी चाहिए। शीघ्र पकने वाली जातियों को 30 सेंटीमीटर कतार से कतार और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधों की दूरी पर बोना चाहिए। मध्यम और देर से अवधि वाली किस्मों के लिए कतारों के बीच 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बात। जानकारी का विषय था अरहर की खेती।

मिडवीप और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज रात्रि 10 बजे आकाशवाणी से रिले करेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे कर्नाटका सैक्सोफोन वादन, कलाकार होंगे यूएस प्रसाद। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे अखिल भारतीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

अब से कुछ ही देर बाद सुबह 7 बजे आप सुनेंगे गूंजे जंगल कार्यक्रम सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 7:15 पर। सुबह 7:30 पर आपको सुनवाएंगे नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम। सुबह 8:30 पर सुनेगा हमारे रायपुर केंद्र से डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम। और सुबह 9 बजे आप सुनेंगे बातों बातों में, इसे भी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सुबह 9:15 पर बातों और गीतों का कार्यक्रम होगा गुंजन। 10 बजे आनंद लीजिएगा नए तराने कार्यक्रम का।

0: श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे सुबह 11:05 पर। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे मिश्रित गीत संगीत कार्यक्रम सबरंग। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे कव्वालियां। दिन में 1:05 पर खेती की बात का पुनः प्रसारण किया जाएगा। दिन में 1:10 पर आप सुनेंगे घर आंगन कार्यक्रम। इसमें आप सुनेंगे बातचीत, घर ही बच्चे की पहली पाठशाला, साथ ही सुनेंगे शक्ति अभिव्यक्ति क्रम, व्यंजन विधियां, गीत संगीत। दिन में 1:40 पर आप सुनेंगे ईमेल की गूंज कार्यक्रम। दोपहर 2:30 पर सुनेगा गीत गंधा कार्यक्रम। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम 5:05 पर आप सुनेगा भजन संध्या कार्यक्रम। शाम 5:30 पर युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें आज आप सुनेंगे युवा सोच और एक ही कलाकार क्रम। शाम 6:05 पर विचार बिंदु कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम कोतली। शाम 6:30 पर आनंद लीजिए का फिल्म संगीत कार्यक्रम माधुरी का। शाम 7:05 पर आप सुनेगा सुगम संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा। किसान भाइयों की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। ये तो थी श्रोतामारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः स्लोवाक गणराज्यं प्रति प्रस्थास्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्याम यात्रायां स्लोवाक देशस्य प्रधानमंत्रिणा फिको इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति, तथा च सहकारस्य नूतनान् मार्गान् अन्वेषयिष्यति। प्रवासावधौ प्रधानमंत्री राष्ट्रपतिना पेलेग्रिनी इत्यनेन सहापि मेलनं करिष्यति। द्वैपाक्षिक व्यापारे निरंतर वृद्धेः दृष्ट्या प्रधानमंत्रिणः यात्रायाः महत्त्वं वर्धते। यच्चतुर्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे 1 बिलियन US डॉलर परिमितम् अतिक्रम्य गतवर्षे 8.1 बिलियन US डॉलर परिमितम् आसीत्। अनया यात्रया यूरोपीय संघस्य सदस्य राष्ट्रैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं भारतस्य प्रतिबद्धताम् अपि सुदृढं भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य देहरादून नगरस्य भारतीय सैन्य अकादम्यां पासिंग आउट परेड इत्यस्य समीक्षां करिष्यति। अस्मिन् वर्षे पासिंग आउट परेड इतीदं ऐतिहासिकं भविष्यति, यस्मिन् प्रथमवारं महिलाः पुरुषैः सह पथसञ्चलनं करिष्यन्ति। अस्मिन् भव्य समारोहे 500+ पुरुषाः महिलाः च अन्तिमं पदं स्वीकृत्य भारतीय सेनायां अधिकारित्वेन नियुक्ताः भविष्यन्ति। भारतीय सैन्य अकादम्याः पासिंग आउट परेड न केवलं सैन्य परंपरा अस्ति, अपितु राष्ट्र सेवायां समर्पितानां युवाधिकारिणां कृते नूतन यात्रायाः आरम्भोऽपि अस्ति। केन्द्रीय गुरु उद्योग इस्पात मन्त्रिणा HD कुमारस्वामिना उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विनिर्माण आधारित वृद्धेः वृत्त्यावसर निर्माणस्य च विषये अभूतपूर्वं महत्त्वं प्रदत्तं, येन औद्योगिक वृद्धिः त्वरिता अभवत्, बृहद् वृत्त्यावसराश्च कल्पिताः। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन सह वार्तालापं कृत्वा गल्फ प्रदेशे US नौसेनया कृताक्रमणस्य विषये प्रबलं विरोधं प्रकटितं, यस्मिन् त्रयः भारतीयाः नाविकाः मृताः। सामाजिकान्तर्जालीये पटले एकस्मिन् लेखे डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् वाणिज्यिक नौवहनं विरुद्धं एतादृशानि प्राणघातक आक्रमणानि न्यायोचितानि न सन्ति इति। ओमान तटस्य तटे पलाव ध्वजयुक्तस्य MT सेटेबेलो जलयानस्य उपरि अमेरिकादेशस्य आक्रमणे भारतीय दलस्य त्रयः सदस्याः मृताः, येन नवदिल्ल्यात् तीक्ष्ण प्रतिक्रिया प्रदत्ता। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह दृढ़तया

मीडी बीब और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं, लीजिए सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की शुरुआत में सादरी लोकगीत में रिंझा कर्मा गीत, गायक कलाकार हैं सुषमा तिर्की और साथी।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: गुंजी जंगल कार्यक्रम में सरगुजिया लोकगीत के में आप सुनिए देवी गीत। गायक कलाकार हैं अनुज राम और साथी।

गुंज जंगल कार्यक्रम के अंत में सुनिए सादरी लोकगीत में जलसा गीत। गायक कलाकार हैं हिरोंदी कुजूर और साथी।

अभी आप सुन रहे थे गूंजे जंगल कार्यक्रम में सादरी लोकगीत में जलसा गीत। गायक कलाकार थे हिरोंदी कुजूर और साथी। इसी के साथ गूंजे जंगल कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडिया वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं शंकर महादेवन की आवाज में ये गीत।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज में किस्मत एल्बम से ये गीत। संगीत है बिद्दू का, गीत लिखा है देव कोहली ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत। संगीत है ललित सेन का, गीत लिखा है ललित सेन और महबूब ने। और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर से।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज सुबह 9:15 पर आप सुनेंगे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। 10 बजे आनंद लीजिएगा नए तराने कार्यक्रम का।

0: मिडवेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
0: नमस्कार सरगुजा।
3: नमस्कार सरगुजा।

सुप्रभात दोस्तों, नमस्कार। सरगुजा की आज के अंक में मैं हूं आप सभी के साथ तरुण। नई सूचनाओं के साथ, नई जानकारी के साथ, लेकिन कार्यक्रम में हम सबसे पहले देते हैं कार्यक्रम से संबंधित सूचना। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। ये कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम में मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर कोट कार्यक्रम। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोट, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। तो आइए अब इस जानकारी के बाद आपको सुनवाते हैं हरियाली और रास्ता फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की।

कार्यक्रम में अगली सूचना योग के विषय में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के तहत इस वर्ष स्वस्थ उम्र बढ़ाने के लिए योगश थीम के साथ देशभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय के निर्देशानुसार 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 से सुबह 7:35 तक ऑनलाइन योग सत्र के माध्यम से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान में अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सभी विभागों, कार्यालयों एवं संस्थाओं को व्यापक प्रचार प्रसार एवं पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने भी जिले के नागरिकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से अधिक संख्या में जुड़ने की अपील की है। पंजीयन के इच्छुक प्रतिभागियों को टोल फ्री नंबर 1800 315

7008 पर मिस्ड कॉल देनी होगी। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देनी होगी। मिस्ड कॉल के बाद व्हाट्सएप पर प्राप्त लिंक के माध्यम से पंजीयन कर ऑनलाइन योग सत्र में शामिल हुआ जा सकेगा। प्रशासन का लक्ष्य जिले के अधिकतम मोबाइल नंबरों से पंजीयन कराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा योग संगम पोर्टल 2026 प्रारंभ किया गया है, जिसमें विभिन्न विभाग, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रम एवं सामाजिक संगठन अपने कार्यक्रमों का पंजीयन कर सकेंगे तथा आयोजन उपरांत विवरण एवं छायाचित्र अपलोड करेंगे। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे स्वस्थ जीवन शैली और योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के इस राष्ट्रीय अभियान से जुड़े तथा 14 जून को आयोजित ऑनलाइन योग सत्र में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के प्रयास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, यह एक सुनहरा अवसर है योग से जुड़ने का। विशेष बात यह है कि यह योग आयोजन विश्व रिकॉर्ड बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने का एक प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास से आप भी जुड़ सकते हैं, स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं। उसके लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-315-7008 पर आपको मिस्ड कॉल मिले देनी होगी। इस मिस्ड कॉल के बाद आपको व्हाट्सएप पर लिंक प्राप्त होगा जिसमें आपका पंजीयन हो सकेगा। तो इस कार्यक्रम से जरूर जुड़िए, स्वस्थ रहिए, योग कीजिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए।

साथियों, जब कभी दुर्घटना होती है और दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को आवश्यकता जब खून की पड़ती है, तब हमें एहसास होता है कि रक्तदान कितना जरूरी है। तो कार्यक्रम में अगली सूचना रक्तदान पर। खून की हर बूंद किसी न किसी के लिए सांस के समान है और देना ही जीना के प्रेरक संदेश के साथ भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी जिला कोरिया, जिला संगठन भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर 14 जून 2026 को रक्तदान शिविर एवं रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन SECL डिस्पेंसरी ऑफिसर सेक्टर कॉलोनी बैकुंठपुर में सुबह 10 बजे से आयोजित होगा। शिविर में जिले के नागरिकों, युवाओं, सामाजिक संगठनों एवं विभिन्न वर्गों के लोगों से अधिक संख्या में शामिल होकर रक्तदान करने की अपील की गई है। भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कहा कि रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। एक यूनिट रक्त किसी गंभीर मरीज, दुर्घटना पीड़ित, प्रसूता महिला अथवा अन्य जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन प्रदान कर सकता है। रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया है और इससे दाता के स्वास्थ्य पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि इससे लाभ होता है। कार्यक्रम के दौरान नियमित एवं प्रेरणादायी रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य समाज में स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी ने जिले वासियों से अपील की है कि वे इस पुनीत अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें और रक्तदान पर किसी जरूरतमंद को नया जीवन देने में अपनी सहभागिता निभाएं। तो दोस्तों, ये एक अच्छा अभियान है और एक अच्छा मौका भी है। आप जब रक्तदान करेंगे तो सचमुच आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और रक्तदान करने से हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं और मन में एक अच्छी भावना का जन्म होता है। इससे स्वास्थ्य पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। आप का रक्त पूरी जांच करके ही लिया जाएगा। यदि आपके शरीर में रक्तदान करने की क्षमता है, तभी आपका रक्त लिया जाएगा और ये पूरी जांच करके ही लिया जाता है। तो ये एक सुनहरा

मौका है, आप जिला अस्पताल में जाकर रक्तदान कर सकते हैं और किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं।

अभी आप सुन रहे थे माई सिस्टर फिल्म का ये गीत, आवाज KL सहगल की थी। साथियों, रोजगार से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर युवाओं को मिलने वाला है। भारत सरकार द्वारा युवाओं को उद्योगों से जोड़कर उन्हें व्यवहारिक कार्य अनुभव प्रदान करने की उद्देश्य से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत प्राप्त युवाओं को प्रतिष्ठित संस्थाओं एवं उद्योगों में इंटर्नशिप का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे रोजगारोन्मुखी कौशल विकसित कर सकें और भविष्य में बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकें। योजना के तहत चयनित युवाओं को 9,000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त 6,000 की एक मुश्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। युवाओं को उनकी रुचि एवं उपलब्ध अवसरों के अनुसार 6 अथवा 5 माह की अवधि की इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें वास्तविक कार्यस्थल का अनुभव प्राप्त होगा। जिला प्रशासन ने जिले के सभी पात्र एवं इच्छुक युवाओं से इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाने की अपील की है। यह योजना युवाओं को न केवल आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी, बल्कि उनके कौशल विकास, व्यक्तित्व निर्माण तथा रोजगार संभावनाओं को भी

सशक्त बनाएगी। युवाओं, अभिभावकों, शैक्षणिक संस्थानों और जनप्रतिनिधियों से अनुरोध की वे योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को दें।

युवाओं तक पहुंचाए ताकि जिले के पात्र युवक युवतियां इस अवसर का लाभ लेकर अपने उज्जवल भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकें। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए निर्धारित पोर्टल अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। वेबसाइट का नाम है pmntership.mca.gov.in। तो इस वेबसाइट पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार पुनः इस वेबसाइट को सुन लें, pmntership.mca.gov.in। आइए इस सूचना के बाद आपको सुनवाते हैं परिवार फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की।

0: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
1: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम।
2: नमस्कार सरगुजा।
3: नमस्कार,
2: अभी आप सुन रहे थे नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम। सुबह की 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में पहले समाचार प्रभात, फिर मॉर्निंग न्यूज का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
8: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
10: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी

0: भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में $1 अरब से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर $1 अरब 80 करोड़ तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
2: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
0: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1.25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
3: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ

0: एयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
2: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमेरिकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज

0: civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's single semi-finals of Australian Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 8:30 बजे हैं। प्रस्तुत है समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह। इस कार्यक्रम में आज सुनिए एल्बिनिज्म रोग के कारण लक्षण और उपचार। इस विषय पर त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता है प्रवीणा त्रिपाठी और प्रस्तुति रमा शंकर की।

0: श्रोताओं नमस्कार। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में मैं प्रवीणा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी, चाहे वो पोषक तत्वों की हो या आनुवांशिक कमी हो, हमारी शारीरिक संरचना पर गलत प्रभाव डालती है, तो उसका असर हमारे मन पर भी पड़ता है। ऐसी ही एक त्वचा की बीमारी है एल्बिनिज्म। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हम मना रहे हैं। ये क्या है, किस तरह की परेशानी है, इसी विषय पर बात करने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा को। डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार प्रवीणा जी,
0: आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, एल्बिनिज्म क्या है और क्या ये एक आनुवांशिक शारीरिक समस्या है या कोई स्किन डिजीज है?
1: देखिए, एल्बिनिज्म का मतलब है कि आपके शरीर में, त्वचा में खास के, कहीं पे भी पिगमेंट्स नहीं बन रहे, मतलब आपके मेलानिन नहीं बन रहे, जिसके कारण आपकी जो त्वचा का भूरा रंग है वो नहीं बन पा रहा। तो आपकी त्वचा का रंग सफ़ेद या क्रीमिश कलर का होता है। इवन आपके बाल भी सफ़ेद या क्रीम कलर के होते हैं, और कभी कभी आपकी आंखों की पुतलियां भी बहुत लाइट कलर की होती हैं, जो कि ओकुलोक्यूटेनस एल्बिनिज्म में होता है। ये एक तरह का जेनेटिक कंडीशन है, जहाँ पे पैदाइशी ही रंग बनना बंद रहता है। अच्छा। तो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ऐसा होता है। सो ये त्वचा की बीमारी तो नहीं कहेंगे, बट एक आनुवांशिक स्थिति है जहाँ पे शुरू से ही इम्ब्रियो में ही आपके रंग नहीं बन रहे हैं, तो आप पैदा ही बिना रंग के होते हो।
0: अच्छा, तो तब क्या रीज़न है, क्या कारण है कि इस तरह का जो एल्बिनिज्म है उसको लेकर कोई बच्चा पैदा होता है?
1: देखिए, ये ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है, जहाँ पे म्यूटेशन कुछ जीन्स होते हैं जो मेलानिन को रिप्रेजेंट करते हैं आपकी बॉडी में। लाइक हमारे डीएनए में कुछ कोड्स होते हैं जो बताते हैं कि ये वाला कोड ये कलर देगा, या फिर ये वाला कोड ये शारीरिक संरचना देगा। उसी के किसी कोड में अगर डिलीशन हो जाए या म्यूटेशन हो जाए, मतलब बदल जाए, कोडिंग चेंज हो जाए, तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। अगर ये म्यूटेशन माता और पिता दोनों में है, तो बच्चों में अनुवांशिक रूप से एल्बिनिज्म हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि माता और पिता को एल्बिनो होना पड़ेगा।
0: अच्छा।
1: उनमें ये नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव है, मतलब आपको दोनों जीन चाहिए। दो जीन एक जैसे होंगे तब जाके आपका रंग बनना बंद होगा। यदि आपके किसी भी पेरेंट से एक तरफ से ही म्यूटेटेड जीन आया, तो आप सिर्फ कैरियर होंगे, तब आपको वो नहीं होगा। अच्छा। लेकिन हो सकता है कि आपके बच्चों को हो।
0: अच्छा।
1: तो जब दोनों ही पेरेंट्स में जेनेटिक म्यूटेशन होता है, तो 25% चांस है कि आपका वो दोनों जीन मम्मी पापा से आपको मिल गया, तो अब आपको एल्बिनिज्म होगा। 50% चांस है कि आपको एक से ही जीन मिला है, अब वो प्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसको दोनों जोड़े में चाहिए वो जीन, तो सिंगल रहने से वो प्रेजेंट नहीं करता।

0: बट आप कैरियर हो जाते हो, और 25% फिर से चांस होता है कि आपने वो म्यूटेटेड जीन दोनों ही पेरेंट्स से नहीं लिया
1: जी,
0: तो आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो सकते हो। तो ये बहुत बारी हो सकता है कि फैमिली में रन कर रहा हो बट कभी भी आपके दोनों पेरेंट मतलब माता और पिता से जीन कभी मिला ही नहीं, तो कभी प्रेजेंट नहीं किया, बट संयोगवश किसी बच्चे में माता और पिता दोनों में वो जीन है और वो प्रेजेंट करता है, तब जाके वो बच्चे को एल्बिनिज्म होता है, जहाँ पे फिर सारे पिगमेंट्स नहीं होते बचपन से या बहुत हल्के होते हैं
1: जी। तो ये छूने से या साथ रहने से या साथ में खाना खाने से इस तरह से भी हो सकता है या केवल माता पिता के द्वारा ही ये कैरियर है इसका?
0: जी, पहले तो एल्बिनिज्म कोई ऐसा विकार नहीं है, जेनेटिक प्रेजेंटेशन हम बोलते हैं कि जीन्स में थोड़ा चेंज हो गया, तो जैसे नाक कभी लंबी हो जाएगी कभी छोटी हो जाएगी, बट हाँ कुछ चीज़ें जैसे बेसिक हैं। अब मेलेनिन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और वो नहीं बन रहा, तो ऑफकोर्स हम इसको थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, आम जनता देखती है, डॉक्टर्स नहीं देखते
1: जी।
0: तो ये कोई बीमारी नहीं है, एक कंडीशन कहेंगे कि एक स्थिति है जहाँ पे हमको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है।
1: अच्छा,
0: ये छूने से नहीं फैलता, साथ बैठने से नहीं फैलता, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई बहन को भी होगा ही। सो बीमारी तो नहीं है बट एक कंडीशन है, एक अवस्था है, एक स्थिति है जहाँ पे आपके मेलानिन नहीं बन रहा। अब क्योंकि मेलानिन एज अ प्रोटेक्टिंग मॉलिक्यूल बहुत इम्पॉर्टेंट है, या आपके आंतरिक जो भी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनको धूप की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ऑफकोर्स ये कुछ कुछ परेशानियां डेवलप कराता है। ये आपके विजन में भी डिफ़िकल्टी दे सकता है एल्बिनिज्म, जब आपके रेटिना में भी मेलानिन नहीं है। यूजुअली हमारे पिगमेंट्री जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो स्किन में तो होते ही हैं, बाल में होते हैं, हमारे आईज़ में भी होते हैं, तभी हमारा विजन होता है। कभी कभी हमारे आयरस में भी पिगमेंट्स की कमी होती है तो अलग अलग रंग के हमको पुतलियाँ दिखती हैं, इसमें भी बहुत हल्की पुतलियाँ होती हैं
1: जी।
0: तो विजन इम्पार्ट हो इम्पेयर्ड हो सकता है, और इसका इफेक्ट आपके डे टू डे लाइफ में पड़ता है, ऑफकोर्स बच्चों को या जो बड़े हो गए हैं। बट उनके छूने बोलने बैठने खाने पीने से नहीं होता, लेकिन इसको आप छू के या साथ में रह के नहीं फैला सकते।
1: तो जिन्हें एल्बिनिज्म की समस्या है उनको किस किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, धूप में ना निकलें या क्या करें वो?
0: जी, क्योंकि मेलानिन हमारा फोटोप्रोटेक्टिव एजेंट है, ये हमको धूप के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के डैमेज से बचाता है, ये हमको फोटो बर्न से भी बचाता है, तो हमारी चमड़ी धूप में जलती नहीं है
1: जी।
0: हम यूजुअली कहते हैं धूप में गए तो टैन हो गए, तो टैन हो गए मतलब हमारे मेलानोसोम ने और थिक लेयर बनाया और हमारे इंटरनल स्किन को बचा लिया जलने से
1: जी,
0: बट मेलानिन गाढ़ा हो गया, तो टैनिंग ऐसे प्रिवेंट करती है। अब क्योंकि यहाँ पे मेलानिन है नहीं तो वो प्रिवेंशन वाला पार्ट नहीं होता, तो धूप में स्किन जल्दी जल जा सकती है, जल्दी लाल हो जा सकती है, आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होगी, और इवन धूप में आँखों में क्योंकि पुतलियों में भी रंग नहीं होता तो आपको धूप में बहुत ग्लेयरिंग होगी, मतलब आँखें चौंधिया जाएंगी।
1: अच्छा।
0: इवन विजन भी इसमें कम होता है तो आपको हो सकता है कि बहुत अच्छा नहीं दिखता हो, आपको नज़दीक की दिखने की समस्या हो सकती है, दूर की दिखने की समस्या हो सकती है, कभी कभी किसी किसी केस में आंखें स्ट्रैबिस्मस होता है, इवन आंखें घूमती रह सकती हैं या बैलेंस नहीं रहती, मतलब फोकस नहीं कर पाती
1: जी,
0: तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे एल्बिनिज्म में आंखें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, तो धूप में उसमें भी उनको बहुत दिक्कत होता है
1: जी।
0: तो उनको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि कोशिश करनी चाहिए कि कवर्ड कपड़े पहनने होते हैं, धूप में हमेशा सनस्क्रीन लगा के निकलना होता है जो भी एक्सपोज्ड पार्ट है, छाता और धूप के बड़े चश्मों का ज़रूर उपयोग करना चाहिए क्योंकि जितनी ज़्यादा रोशनी शरीर पे पड़ेगी वो उतनी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में उनको परेशानी देगी।
1: अच्छा।
0: और हाँ, क्योंकि आप जितना फोटो प्रोटेक्शन अगर आप मेलानिन से नहीं कर सकते हो तो आपको फिजिकल प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी।
1: जी जी डॉक्टर साहब, हमारी बातें चल रही हैं एल्बिनिज्म के ऊपर और ये कार्यक्रम में हमें और भी ज़्यादा जानकारी आपसे जाननी है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या आप गीत संगीत में भी रुचि रखती हैं?
0: जी।
1: तो बताइए कि आपकी पसंद का कोई गाना जो आप सुनना चाहती हैं?
0: जी, मुझे वो गाना बहुत पसंद है, मेरा गोरा रंग ले ले मोहे शाम रंग दे दे, छिप जाऊंगी रात में ही मुझे पी का संग दे दे
1: जी।

0: श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के बारे में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा जी। एल्बिनिज्म वाले जो लोग हैं, भोजन में वो किस तरह का चीज़ें लें कि जिससे उनके शरीर को ज़्यादा तकलीफ ना हो?
1: भोजन में एल्बिनिज्म वाले लोग कोशिश कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा विटामिन ए, बीटा कैरोटीन वाली चीज़ें लेंगे वो उतना धूप से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। बट ऑफ कोर्स क्योंकि मेलानिन मिसिंग है तो ये उस तरीके से नहीं काम करेगा जैसे नॉर्मल करता है। तो कुछ फल सब्जियां, जैसे कि हरी सब्जियां जितनी भी हो गई वो बीटा कैरोटीन रिच होती हैं, गाजर, पपीता, आम, ये सब बीटा कैरोटीन रिच होते हैं, विटामिन ए रिच होते हैं। इवन अगर जो नॉन वेज खाते हैं वो अंडे खा सकते हैं, खास के येलो वाला पार्ट जो विटामिन ए रिच होता है। इस तरीके से आप विटामिन ए, बीटा कैरोटीन आप बढ़ा सकते हो अपने बॉडी में जी। और विटामिन सी भी आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ होता है। आप जितना हो सके फल सब्जियों का उपयोग करना, बिकॉज यहाँ पे हमारा फ्री रेडिकल इंजरी बहुत चलेगा स्किन में
0: जी।
1: तो उसको स्कैवेंज करने के लिए या उसको शरीर से हटाने के लिए हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। हमारे सेल्स हमेशा काम करते रहते हैं बॉडी के डैमेजेस को कम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर मिसिंग है तो ऑफकोर्स हमारे सेल्स को थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा सपोर्ट की। तो न्यूट्रिशन एक बहुत ही मेजर फैक्टर होगा। बॉडी को ल्यूब्रिकेट करके भी रखना चाहिए, बिकॉज आप जितना ज़्यादा अच्छे से हाइड्रेट, ल्यूब्रिकेट

0: और ऑयलिंग करके रखोगे, सूरज की जो भी रोशनी होती है वो स्किन पे परावर्तित हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो बहुत हद तक अंदर नहीं जाएगी। बट ऑफ कोर्स सनस्क्रीन या फिजिकल प्रोटेक्शन ज़्यादा हद तक आपको हेल्प करेगा।
1: जी, आपने बताया कि सनस्क्रीन लगा सकते हैं शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, त्वचा को। घरेलू कोई उपाय हैं जिनको हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो हमारे श्रोता हैं वो उसको उपयोग कर सकें?
0: देखिए, घरेलू तो बहुत ज़्यादा फोटो प्रोटेक्शन नहीं होता, जैसा मैंने कहा आप थिक लेयर तेल जब लगाते हो
1: हाँ,
0: तो वो आपकी चमड़ी को इतना ज़्यादा चमकदार करता है कि सूरज की जो भी किरणें शरीर पर आती हैं वो अंदर नहीं घुसती,
1: जी।
0: बहुत हद तक परावर्तित या रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो अब क्या है कि आप ये जो तेल है ये आपके रिफ्लेक्शन में बहुत हेल्प करता है।
1: जी
0: आपने देखा होगा गांव के लोग सरसों तेल लगा के ही गांव काम पे निकलते हैं, नहा के वो ज़रूर लगाते हैं सरसों
1: बिल्कुल
0: तेल,
1: बिल्कुल
0: और वो खेतों में आराम से काम कर पाते हैं।
1: जी
0: एक तो उनका शरीर का रंग भी उनको हेल्प करता है क्योंकि वो गाढ़े ब्राउन कलर की स्किन हो जाती है खेतों में काम करने से।
1: जी जी
0: बट ऑफ कोर्स सिर्फ हम इस बातों पे नहीं ध्यान दे सकते कि सिर्फ तेल लगा के बाहर निकल जाए तो हम बच जाएंगे। आप कवर्ड कपड़े पहनिए, बड़ा हैट पहनिए, छाता अगर उपयोग कर सकते हैं करिए, बड़े चश्मे काले पहनिए जो आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा सके,
1: जी
0: ऐसा ज़रूर करिए।
1: अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि एल्बिनिज्म वाले जो बच्चे हैं उनको नॉर्मल स्कूल में या स्पोर्ट्स में या जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, रोज़ाना के जो रोज़मर्रा के शारीरिक व्यायाम हैं या खेल हैं, क्या वो कर सकते हैं? उसमें कोई समस्या तो नहीं
0: नहीं
1: आती
0: नहीं
1: उन्हें?
0: फिजिकली दे आर परफेक्ट फिजिकली। देखिए, उनको कोई भी शारीरिक समस्या ऐसी नहीं होती। विजन का दिक्कत तो ज़रूर होता है
1: जी
0: पर शरीर में कमजोरी नहीं होती,
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: सभी तरीके के खेल कूद कर सकते हैं। बट हाँ, बशर्ते उनको आउटडोर खेल से परहेज करना चाहिए,
1: जी
0: वो इंडोर खेल करे तो ज़्यादा बेहतर है बिकॉज आउटडोर में आपका सन एक्सपोजर होगा।
1: तो वो कैसे जाने कि मतलब उनको उनके शरीर में जैसे रेडनेस है तो वो कैसे जाने कि ये किस तरह की परेशानी है या किस कंडीशन में उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
0: जिनको भी एल्बिनिज्म है यानी रंग नहीं बन रहा, अगर उनको धूप में जाने के बाद स्किन रेड रहती है और बहुत देर तक रेड रहती है या जल रही होती है तो उनको तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए, स्किन वाले डॉक्टर को मिलना चाहिए जो
1: जी,
0: चमड़ी के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स
1: त्वचा
0: हैं।
1: रोग विशेषज्ञ हैं
0: बिल्कुल।
1: जो। जी
0: और शरीर पे यदि कहीं पे भी नया पिगमेंटेशन या कोई नया घाव बन रहा है जो भर नहीं रहा या कोई तिल आना शुरू होता है तो भी, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे मेरे कुछ पेशेंट्स में मैंने देखा है कि एल्बिनिज्म में 17-18 साल के बाद भी कभी जब कभी भी रंग नहीं बना और सडन गालों पे रंग बनना नॉर्मल शुरू हो जाता है,
1: जी
0: तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कहीं पे रंग भी बनना शुरू हो जाता है।
1: अच्छा, मतलब शरीर में कुछ भागों में कलर आना, जो डार्कनेस है
0: बहुत
1: वो शुरू हो
0: रेयर
1: जाती है?
0: है बट
1: जी
0: मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें रंग बनना वापस शुरू हुआ है जो कि नॉर्मल पिगमेंटेशन शुरू होती है, बट उनके लिए फिर परेशानी की सबब वो पिगमेंट है
1: अच्छा
0: बिकॉज अब तक वो कंफर्टेबल थे रंग के बिना और वो ब्राउन कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन उनको फिर सही गालों पे अच्छा नहीं लगता,
1: जी
0: तो
1: जी
0: फिर उस स्थिति में वो रंग भी हटाना होता है।
1: अच्छा, तो उसका अलग इलाज
0: जी,
1: मतलब?
0: उसके लिए फिर अलग इलाज होता है, कुछ
1: जी
0: दवाइयाँ होती हैं जो आपके कुछ एरिया में अगर रंग बहुत ज़्यादा बन गया है तो कम कर सकते हैं।
1: हाँ,
0: ये खास के उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जिनको जनरलाइज विटिलाइगो होता है, सफ़ेद दाग की परेशानी कि
1: अच्छा
0: पूरे शरीर में सफ़ेद दाग हुआ जा रहा है बट कुछ एरिया है जहाँ पे रंग बना ही हुआ है तो अब वो एक जैसा नहीं फील करते, पैची फील करते, तो उस केस में कुछ ऐसे मिलानो टॉक्सिक मेडिसिन होती हैं जिनको लगाने से जो बचा खुचा रंग होता है वो भी हम हटा सकते हैं
1: जी
0: क्योंकि विटिलाइगो में कभी भी आईज इन्वॉल्व नहीं होते तो वो थोड़ा ठीक रहता है।
1: जी जी
0: एल्बिनिज्म में भी ऐसे केसेस देखे हैं मैंने जहाँ पे रंग वापस बनने लग जाता है तो फिर आप उस पिगमेंट्स को भी हटा सकते हो, बट उनका रेगुलर स्किन चेकअप होते रहना ज़रूरी होता है क्योंकि आप प्रोन टू एग्जिमास भी होते हो और प्रोन टू कैंसर्स भी होते हो।
1: अच्छा, मतलब ऐसे लोगों को एक्जिमा?
0: देखिए, कोई भी फोटो डैमेज होगा ना तो वो
1: हाँ हाँ
0: एक्जिमा डर्माटाइटिस की तरफ जा सकता है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, आगे बातें हमारी और भी होंगी, अभी एक वक्त हो गया है कि आपसे एक गीत की और जो आप सुनना चाहती हैं।
0: जी, लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ चंदन सा बदन चंचल चितवन।
1: जी, सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गीत
0: जी
1: है, तो सुनवाते हैं आपको।

0: तो श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस पर और कार्यक्रम चल रहा है डॉक्टर की सलाह। हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं क्या एल्बिनिज्म का कोई परमानेंट इलाज है या इसका कोई क्योर है क्या?
1: जी, अभी तक तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार ही जेनेटिक म्यूटेशन हो चुका है तो आप उसको ठीक तो नहीं कर सकते
0: जी।
1: अब आप सिर्फ उसको मैनेज कर सकते हो या मेंटेन कर सकते हो।
0: जब भी हमारे शरीर में कोई विकार होता है या हमारे शरीर में किसी तरह की समस्या होती है तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक मिथक होता है, चाहे वो समाज में हो चाहे परिवार में हो। और हर बीमारी में इस तरह होता है कि भाई अगर उसको शरीर के में अगर उसको कलर चेंज हो गया है या स्पॉट्स आ रहे हैं तो उनका कुछ और सोचना हो जाता है। तो इस तरह से जो कॉमन जो लोग इस चीज़ के बारे में एल्बिनिज्म के बारे में सोचते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जो लोग सोचते हैं?
1: देखिए, क्योंकि आपने जो बोला कि शारीरिक विकार आ जाता है, तो मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारी स्थिति में तो शारीरिक विकार नहीं आता। और सिर्फ एल्बिनिज्म का नहीं बोल रही हूँ मैं, विटिलाइगो में भी बोल रही हूँ
0: जी।
1: ठीक है, सिर्फ रंग नहीं बनता, सफ़ेद दाग की परेशानी में भी रंग नहीं बनता, बट मुझे लगता है कि समाज का मानसिक विकार तो ज़रूर है।
0: हाँ हाँ,
1: क्योंकि ये जितनी भी परेशानी है ना इंसान के, जिसको है उसके जीवन का, वो उनकी खुद की शरीर की परेशानी नहीं होती
0: जी जी,
1: ये समाज के लोग, परिवार के लोग, दादी नानी चाची फूआ मौसी अड़ोसी पड़ोसी जो आपके सबसे सगे बनते हैं ना, ये उनके

0: मानसिक विकार के कारण परेशान रहते हैं, त्रस्त रहते हैं
1: जी जी जी,
0: वरना न ही कोई सफ़ेद दाग का बीमारी वाला इंसान फंक्शनली या मेंटली वीक होता है और ना ही अल्बिनिज्म वाला इंसान फंक्शनली या मेंटली वीक होता है। विजन ऑफ कोर्स अफेक्टेड रह सकता है बट कोई मानसिक विकार नहीं होता, शारीरिक विकार नहीं होता, आपको सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा है। हाँ ऑफ कोर्स कुछ अल्बिनिज्म में उनको परेशानी हो रही है विजन में, या किसी किसी में बिल्कुल आंखें बिल्कुल नहीं देख पाती, वो सीवियर कंडीशंस में होता है तब तो आप ठीक है, बट सोसाइटी के मन का विकार मुझे ज़्यादा लगता है, क्योंकि हो सकता है वो इंसान अपनी उस परेशानी से उतना परेशान नहीं हो जितना वो इस बात को सुन के परेशान हो कि अरे तुमको क्या हो गया
1: जी?
0: तुमने दिखाया नहीं, अरे उसको हुआ था तो उसके पूरे शरीर में हो गया, फिर उसको ऐसे हो गया, बिल्कुल नहीं ठीक होता। बिकॉज देखिए हम लोग प्रतिदिन ऐसे लोगों से मिलते हैं, इनका जो कॉन्फिडेंस लो होता है ना वो अपनी वजह से नहीं होता, ये उनके जो शुभ चिंतक होते हैं ना ये उनकी वजह से होता है, ये जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते अपने बारे में बुरा सोचते हैं ये उनके शुभ चिंतकों की वजह से होता है
1: जी जी जी।
0: तो मुझे जैसा लगता है कि ये शारीरिक विकार ना हो के सामाजिक मानसिक विकार है।
1: जी जी जी, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से समझाया आपने इस चीज़ को, और सच में अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई समस्या है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो विशेषज्ञ हैं उनके पास लेकर जाएं और उनसे सलाह मशवरा करें, बजाय इसके कि हम अपने दिमाग में कोई मिथक बना लें या उस बच्चे को उस तरह से हम परेशान करें। बहरहाल डॉक्टर साहब, जो एल्बिनिज्म है इसके साथ में एक हेल्दी स्वस्थ और विश्वासपूर्ण अपने ऊपर भरोसा करके इंसान कैसे जी सकता है?
0: देखिए सबसे पहले आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपने मेरा रंग नहीं देखा, आप मुझसे बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने पढ़ाई करी
1: जी,
0: मैंने अपने करियर में कुछ पाया, तो समाज में ना आपके ज्ञान का आपके कर्म का महत्व है
1: जी।
0: आप उनकी बातें सुनते हो जिन्होंने कुछ हासिल किया होता है, तो सबसे पहले ये जानने वाली बात है कि इंसान को उसको फॉलो करना चाहिए जो उसका मोटिवेशन बढ़ाए या जो उसको सफलता प्राप्त करने में हेल्प करे। रंग कोई बहुत मायने नहीं रखता,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, आप सांवले हो सकते हो, काले हो सकते हो, आपको चेहरे पे झाइयां हो सकती हैं, आपके लहसुन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके बाल हो सकते हैं नहीं हो सकते, लेकिन यदि आप अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हो जो कि हो सकता है कि आप बौद्धिक स्तर पे करो, हो सकता है कि आप शारीरिक स्तर पे करो या आप समाज में हेल्प करो, तो आपका लाइफ कितना फ्रूटफुल है और समाज के प्रति कितना हेल्पफुल है, या आपकी वजह से किसी की जिंदगी में कोई अंतर पड़ रहा है कि नहीं, पॉजिटिव अंतर ऑफकोर्स, आपका जीवन वहीं सार्थक हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन यदि आप सोचते हो कि मैं गोरा हूँ या मैं काला हूँ या मेरे को रंग नहीं बन रहा या फिर मेरे पास ये कमी है, लोग क्या कहेंगे, सबके पास सब अच्छा है, किसी के पास कुछ अच्छा नहीं है, सब अपने अपने दुख में हैं, सबके पास एक छोटी सी परेशानी है जो शायद आपको बस नहीं पता है
1: जी।
0: तो आप अपने जो भी स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, आपका जो भी शारीरिक मानसिक या बौद्धिक क्षमता है जिसको आप बढ़ा सकते हो और जिससे फिर आप और बेहतर हो सकते हो, आप उस पे काम करो
1: जी।
0: कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भीड़ के जैसा दिखना है, तो आप अपनी क्षमता पे काम कर सकते हो और अपना लाइफ में एक मकाम हासिल कर सकते हो जिस भी फील्ड में करो।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और अब चलते चलते हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे जो सुनने वाले हैं, जो श्रोता हैं हमारे, उनको आप एल्बिनिज्म के बारे में क्या संदेश देना चाहती हैं, उन्हें किस तरह से जागरूक करना चाहती हैं?
0: देखिए एल्बिनिज्म क्योंकि मेलानिन की कमी की वजह से है, तो एक तो मैं एल्बिनिज्म के लोगों को ये कहूँगी कि आप प्लीज़ धूप से बचिए, कवर्ड कपड़े पहनिए, सनस्क्रीन्स लगाइए, हैट्स पहनिए, चश्मे पहनिए और प्लीज़ डॉक्टर्स को बीच बीच में मिलते रहिए
1: जी।
0: और मैं नॉर्मल लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ये जो हम गोरे और सांवले हो गए, टैन हो गए या झाइयाँ बन गई, इसके पीछे पड़े रहते हैं, आप देखो कि मेलानिन कितना ज़रूरी है
1: जी।
0: कि उसका नहीं होना एक बीमारी हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: तो इसमें मतलब सबसे बड़ी सावधानी ये है कि धूप से जितना ज़्यादा बच सकते हैं उतना बच कर रहें और अपने शरीर की इस समस्या को लेकर डॉक्टर से ज़रूर मिलें
0: जी।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने आज अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस पर हमारे श्रोताओं को बहुत उम्दा जानकारी दी।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह। इसमें अभी आप सुन रहे थे एल्बिनिज्म रोग के कारण लक्षण और उपचार, इस विषय पर त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा से ली गई भेंट वार्ता। भेंट कर रही थी प्रवीणा त्रिपाठी और प्रस्तुति रमा शंकर की थी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बातों बातों में। इस कार्यक्रम में आज सुनिए, मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुति विकल्प शुक्ला की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 से शुरू हुई इस यात्रा में देश ने विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल परिवर्तन, सामाजिक कल्याण और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका के कई नए आयाम देखे हैं। श्रोताओं, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 10 जून को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल 4,399 दिन का हो गया है। इस तरह से उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार ने जो 12 वर्ष पूरे किए हैं और इस दौरान जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार श्री शशांक शर्मा जी। शशांक जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: विकल्प जी नमस्कार, श्रोताओं को भी नमस्कार।
1: जी शशांक जी, जैसा भी हम परिचय में बता रहे थे कि 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, शशांक जी, इन 12 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धियां आपकी नज़र में क्या हैं?
2: विकल्प जी, मुझे लगता है कि इस 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि एक स्टेबल सरकार,
1: मतलब
2: जो
1: स्थिर सरकार जी,
2: जो विकास के अभी आपने जो आंकड़े गिनाए
1: जी,
2: ये सारा जो कुछ है वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक स्थिर सरकार 1990 से लेके 2014 तक
1: जी,
2: जो अस्थिरता थी जिसके कारण भारत को विकास की जिस गति से और दूसरे आयामों में जिस तरह से एक अपने आप को स्थापित करना था
1: जी,
2: उसमें जो हम चुके
1: जी,
2: मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक और महत्वपूर्ण बात
1: जी,
2: अभी आपने पंडित नेहरू से मोदी जी की एक तुलना की,
1: उनके कार्यकाल की
2: हाँ। तो देखिए कितना एक गजब का एक वो है कि 52 में वो निर्वाचित हुए
1: जी,
2: 52 से 64 तक वे रहे
1: जी,
2: और ये 14 से अभी 26 हुआ है
1: जी।
2: इस दौरान
1: जी
2: वो भी बहुत स्थिर सरकार थी
1: जी,
2: और इसलिए उस समय भी जो भारत का एक जो बुनियाद बनना चाहिए था वो शुरू हुआ। लेकिन एक देखिए कि जहां कमियां थी उस कमियों को इस 12 साल की सरकार ने, 1962 का एक बड़ा युद्ध हुआ
1: जी
2: चीन के साथ
1: जी,
2: और उसमें हम बुरी तरह से हारे थे
1: बिल्कुल जी।
2: मोदी जी की सरकार का जो एक बड़ी उपलब्धि के रूप में आप देखेंगे
1: जी,
2: तो जो सामरिक शक्तियां हमारी जो बनी है
1: जी,
2: और अभी लगातार जिस प्र,

0: प्रकार से हम अपने विरोधी देशों को जो आतंकवाद फैलाते हैं, चाहे वो उरी हो
1: जी,
0: चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो
1: जी,
0: ये जो तैयारी है भारत की, ये जो क्षमता बढ़ी है 12 वर्षों में, हमारा संविधान भी जो है
1: जी,
0: जब उसकी उद्देशिका की बात हम करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व राष्ट्र के रूप में
1: जी।
0: तो भारत की संप्रभुता किसमें होगी? जब उसकी सामरिक शक्ति इतनी होगी कि हम किसी दूसरे को डराएंगे तो नहीं, लेकिन कोई अगर हमारी ओर आंख उठाकर देखेगा
1: जी
0: तो उसका माकूल उसको जवाब देंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो आज भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा संतोष भारत के नागरिकों को इस बात के लिए होना चाहिए
1: जी
0: कि भारत अपनी सामरिक शक्ति के आधार पर वो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। अब भारत 1962 की स्थिति से बहुत आगे निकल चुका है।
1: बिल्कुल। एक बात और शशांक जी, जैसे हम पिछले 12 वर्षों में यदि देखते हैं तो केंद्र सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आधार बनाकर अनेक योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए। यदि हम वित्तीय समावेशन की बात करें तो जनधन योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है, और डिजिटल इंडिया की बात करें तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। लेकिन इससे अलग हटके मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी तो क्या लगता है उस समय क्या चुनौतियाँ थीं उनके सामने, देश के सामने, और आज जब 12 वर्षों के सफर को देखते हैं तो हमने उन चुनौतियों से कितना पार पाया है?
0: विकल जी, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चुनौती 2014 में देश के समक्ष थी
1: जी
0: वो आर्थिक चुनौती थी
1: जी।
0: जिस प्रकार 2008 में अमेरिका सहित पूरे विश्व में एक जो मंदी का दौर आया था
1: जी,
0: उस मंदी के दौर से निकलने के लिए जिस तरह के भी प्रयास अपने देश में हुए थे
1: जी,
0: वो प्रयास मुझे लगता है कि देश को कई आर्थिक चुनौतियों से घेर लिया था।
1: अच्छा।
0: तो उससे ये हो रहा था कि देश का विकास, देश में अधोसंरचना का विकास
1: जी,
0: देश में विनिर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है
1: जी,
0: वो हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे थे
1: जी।
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चुनौतियों के समक्ष भारत की जिस तरह से हमारे पड़ोसी देश हमको घेर रहे थे
1: जी,
0: आतंकवाद जिस तरह से मुंह फैलाए हुए था
1: जी,
0: नक्सलवाद अपने चरम पर था 2014 को अगर आप देखेंगे
1: जी,
0: तो ये जो आंतरिक चुनौतियां थी, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां थी, और उसके साथ भारत का विकास, रोजगार एक बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय, भारत की अधोसंरचना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। अपने संविधान की बात मैंने इसके पहले प्रश्न का उत्तर जब आपका दिया
1: जी,
0: तो उसका पहला जो शब्द है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व राष्ट्र बनाना चाहते हैं
1: जी,
0: और हमारे संविधान के उद्देशिका का अंतिम शब्द आता है हम एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना। और भारत के अंदर में कश्मीर में जिस तरह के हालात थे, अभी हम 2-3 दिन पहले देखा है कि हमने मनाली से लद्दाख तक का एक हमारा मार्ग तैयार हुआ है। देखिए ये कितनी बड़ी घटना है कि भारत का ही एक क्षेत्र लद्दाख
1: जी,
0: जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप देखेंगे तो लद्दाख जाने का भारत का सीधा कोई रास्ता नहीं था,
1: वो कोई सुगम रास्ता नहीं,
0: कोई सुगम रास्ता नहीं था
1: जी।
0: तो लद्दाख को भारत के मुख्य भूमि से जोड़ने का एक बहुत बड़ा जो कदम है
1: जी,
0: वो इस सुरंग से संभव हो पाया है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये चुनौतियां उस समय मैं देखता हूँ
1: जी। एक बात और है कि जैसे ये 12 सालों की यदि हम बात करें तो गरीब कल्याण जो है वो सरकार की प्राथमिकताओं में प्रमुख रहा है, फिर चाहे हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की, आयुष्मान भारत और जनधन जैसी जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से करोड़ों लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि इन 12 वर्षों में चाहे वो युवा हो, महिला वर्ग हो, किसान भाई बहन हो, इनको सशक्त बनाने में केंद्र सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपका क्या मानना है यदि हम विभिन्न वर्गों की बात करें?
0: देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक चुनौती जो बहुत बड़ी थी उस समय
1: जी,
0: वो भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी
1: जी,
0: एक पारदर्शिता बहुत बड़ी चुनौती थी
1: जी।
0: हमारे तो पूर्व के हमारे देश के नेताओं ने कहा कि 1 रुपए भेजते हैं तो 85 पैसा पहुंचता है
1: जी जी जी।
0: उनको ठीक करने के लिए जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी आई
1: जी,
0: उसमें हमने जो जनधन योजना को मोबाइल के साथ कनेक्ट करना
1: जी,
0: और उससे हम 50 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया हमने इस जनधन योजना के माध्यम से। देखिए इससे लाभ क्या हुआ, 4.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई
1: जी।
0: दूसरी चीज, कि जो हमारे जितने भी बल्ब लगते थे वो पहले के जो पीले रंग के जो बल्ब आते थे वो लगते थे जो 40 वाट के, 25 वाट के, 60 वाट के
1: जी।
0: जब टेक्नोलॉजी बदल गई तो एलईडी का जब उपयोग होने लगा
1: जी,
0: तो सरकार ने कहा कि भाई आप एलईडी बल्ब का उपयोग करिए।

0: जी
1: 65 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए
0: जी।
1: देखिए विकल्प जी, इनसे फायदा क्या हुआ
0: जी?
1: इनसे फायदा हुआ कि कम से कम 2025 लाख किलोवाट
0: जी,
1: इतनी बिजली की बचत हुई।
0: बिल्कुल,
1: पिछले अगर 12 वर्षों में देखेंगे ना तो बहुत सारे पावर प्लांट इस देश में नहीं लगे
0: जी,
1: क्योंकि उससे प्रदूषण बढ़ता है। तो हमने गैर परंपरागत सोर्स की तरफ गए, हमने ऊर्जा जो है वो सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाया
0: जी,
1: और पूरे देश में उत्तर प्रदेश बिहार सहित ऐसे हजारों लाखों गांव थे जहां पर बिजली की पहुंच नहीं थी, वहां तक हम बिजली की पहुंच तक लाए। तो गरीबों को जो चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती थी, सड़क, बिजली, पानी, उज्ज्वला योजना, हर घर में जो एलपीजी का सिलेंडर पहुंचा
0: जी,
1: गरीबों की समस्याओं को निराकरण करने की जो एक सोच और पहल होती है
0: जी,
1: वो हमको इन 12 सालों में दिखाई देता है
0: जी।
1: हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि उसका खुद का घर हो
0: जी।
1: तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये केवल एक मकान बनाकर देना नहीं है, मकान बनाकर देने की योजना तो बहुत पहले से चल रही
0: जी।
1: है, लेकिन एक ऐसा घर दे देना केवल एक कमरे का नहीं, मध्यम वर्ग के लोगों को भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना के, आपके पास जमीन होनी चाहिए
0: जी।
1: तो एक जो जमीन से जोड़ने, समाज से जोड़ने और अर्थव्यवस्था जिसे जोड़ने का जो उपक्रम पिछले 12 वर्ष में सरकार ने अलग अलग तरीके से किया है, उसका लाभ हमको इन 12 वर्षों में कहीं ना कहीं दिखाई देता है।
0: एक बात और शशांक जी, अभी आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है। यदि हम युवा कल्याण की बात करें, युवा वर्ग के कल्याण की बात करें, तो देखिए एक युवा जब पढ़ाई करता है तो शिक्षा वो हासिल करता है, ज्ञान हासिल करता है, लेकिन उसका उद्देश्य होता है कि वो रोजगार प्राप्त करे। इन 12 वर्षों में हमने देखा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से जो विनिर्माण क्षेत्र है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको मजबूती देने का प्रयास किया गया है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल निर्माण, रक्षा उत्पादन और अन्य क्षेत्रों में निवेश भी आकर्षित किए गए हैं। आपका क्या मानना है?
1: देखिए, अगर आप 12 साल में देखें कि भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी विकल्प जी?
0: जी,
1: कि हमने विनिर्माण क्षेत्र जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है
0: जी,
1: उन क्षेत्रों पर हमने काम नहीं किया जो भारत में उत्पादन ही नहीं होता था
0: जी।
1: 1991 में जब हमने उदारीकरण का जो काम शुरू किया था
0: जी,
1: तो हमने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की बात हमने की थी 1992 में
0: जी,
1: लेकिन इसमें बहुत काम नहीं हुआ
0: जी।
1: अब इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल का सबसे बड़ा बाजार आज भारत बना हुआ है
0: जी,
1: लेकिन 2014 में कितने मोबाइल भारत में बनते थे? आज 33 करोड़ मोबाइल केवल बन नहीं रहे हैं भारत से, वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं।
0: सिर्फ मोबाइल ही नहीं,
1: सेमीकंडक्टर तक
0: यूनिट सब लग रही हैं।
1: तो इसके लिए सोच क्या है
0: जी?
1: आप देखिए, रक्षा उपकरण
0: जी,
1: जो पहले हम केवल इंपोर्ट करते थे
0: जी,
1: आज भारत 23,000 करोड़ रुपए का जो रक्षा उपकरण है
0: जी,
1: वो दुनिया के अनेक देशों को बेच रहा है। तो आप मुझे बताइए, जब हम मोबाइल बना रहे हैं, जब हम रक्षा के उपकरण बना रहे हैं, तो रोजगार तो किसी ना किसी स्तर से मिल रहा है।
0: बिल्कुल,
1: इसके लिए सरकार ने बहुत सारे जहां पर रोजगार जनरेट हो ऐसे पीएलआई एक योजना लाई थी
0: जी।
1: उस पीएलआई योजना में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया था
0: जी,
1: और उससे मुझे लगता है कि लगभग 14 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला।
0: मतलब श्रोताओं को बता दें कि प्रोडक्शन लिंक्ड
1: इन्वेस्टमेंट,
0: उत्पादन आधारित
1: जी, जो ये मेक इन इंडिया है
0: जी,
1: और ये आत्मनिर्भर भारत की जो सारी चीजें हैं, हमने अपने वैक्सीन्स बनाए
0: जी।
1: तो ये भारत के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का एक जो बहुत बड़ा प्रकल्प शुरू हुआ
0: जी,
1: मुझे लगता है कि ये भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन लाने की दिशा में काम करता है, इससे रोजगार भी मिलता है। 12 साल कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता किसी भी देश के लिए
0: जी,
1: लेकिन 12 साल में जिस नैतिकता से, जिस ईमानदारी से जो काम हुए हैं
0: जी,
1: लेकिन अच्छा करने का जो मन से जो प्रयास हुआ है
0: जी,
1: उसका परिणाम दिखने लगा है
0: जी। एक बात और कि प्रधानमंत्री जी ने जब ये 12 वर्ष सरकार को पूरे हुए तो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा कि सरकार ने राष्ट्र प्रथम की भावना से काम किया है, और इन्हीं अथक जो प्रयास है उनका परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है, और विकसित भारत के संकल्प के साथ ये सरकार आगे बढ़ रही है। शशांक जी, विदेश नीति के मोर्चे की यदि हम बात करें तो भारत की जो वैश्विक पहचान है वो इन 12 वर्षों में मजबूत हुई है, आपका क्या विचार है?
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपने जो पहला प्रश्न पूछा उसमें मैं संक्षेप में आपको बता दूं
0: जी
1: कि जो राष्ट्र प्रथम की अवधारणा है
0: जी,
1: वो राष्ट्र प्रथम कैसे, तो संयोग से हमने अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे किए
0: जी।
1: इससे

0: जो एक उपनिवेशवादी मानसिकता है जी, उसको छोड़कर स्वदेश की मानसिकता, अपने देश के प्रति प्रेम करें, अपने देश के उत्पादों से प्रेम करें, ये भी भावना कहीं ना कहीं आपको पिछले 10-12 वर्षों में ज़्यादा प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देती है
1: जी।
0: तो आपका देश जब अपने ऊपर निर्भर होगा तो दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है
1: जी,
0: और उस लोकतंत्र में जब एक सर्वप्रिय और बहुमत से बनी हुई सरकार का मुखिया
1: जी,
0: और सरकार जब बनती है तो पूरी दुनिया आपकी तरफ सम्मान से देखती है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये विदेश नीति में आपको झलकता है
1: जी।
0: प्रधानमंत्री जी आज किसी भी देश में जाते हैं तो ये भारत जैसे एक बड़े लोकतंत्र, एक सफल लोकतंत्र का बहुमत से निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के रूप में एक सम्मान अपने आप बढ़ता है
1: जी।
0: तो भारत के अपने जो ताकत बनेगी
1: जी,
0: चाहे वो सामरिक हो, आर्थिक हो, अधोसंरचना हो, जब ये ताकत बढ़ेगी
1: जी,
0: तो दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करती है। G20 का सफल आयोजन होना हो
1: जी,
0: चाहे G7 हो
1: जी,
0: मुझे लगता है कि भारत ओवरऑल, और वो सब इसलिए हुआ है क्योंकि भारत की जनता ने एक बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार बनाई है
1: जी। शशांक जी, वैसे तो इस 12 वर्षों की जो उपलब्धि भरी यात्रा है उसको 15 मिनट में समेटना जो है वो सागर को गागर में भरने के समान है, लेकिन आपने कमाल भी कर दिखाया और श्रोताओं को बहुत समग्रता के साथ में सारगर्भित रूप में आपने इन 12 वर्षों के सफर को समेटा है। हम आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: बातों बातों में इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार श्री शशांक शर्मा से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करते थे विकल्प रंजन शुक्ला। मीडियम वेव पर
3: अभी हमारे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए सुनिए गुंजन कार्यक्रम।

उम्मीदों के नए आसमान और सुरों के खूबसूरत जहान में आप सभी का स्वागत है। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त तरुण, लेकर नई सुबह की नई उमंग, नई तरंग और बहुत सारा प्यार। नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। दिन की शुरुआत अगर शानदार गानों और मुस्कुराते चेहरों के साथ हो तो पूरा दिन बन जाता है। गुंजन कार्यक्रम में हम यही कोशिश करते हैं कि आपके चेहरे पर खुशी आ ही जाए। गुंजन, यह मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, किसी मीठी याद का भी हो सकता है, तो किसी प्यारी मुस्कान का भी हो सकता है। तो थाम लीजिए रेडियो का हाथ और संगीत के जादू में खो जाइए, क्योंकि सफर की शुरुआत बेहद हसीन होने वाली है। और जब सफर की शुरुआत होती है ना, तो सचमुच बहुत अच्छा लगता है। जब कभी हम सुरीली जगह जाते हैं, संगीत के जादू में खो जाते हैं और गुंजन में हम वही गीत आप तक पहुंचाते हैं।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।

0: शादी पार्टी मेरी
1: बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है
2: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: राहुल ये अपनी डायरी में बार बार 230 600 क्या लिख रहे हो, कोई लकी नंबर है क्या?
5: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
4: अच्छा वो कैसे?
5: अरे बाबा ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है, यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
4: ओ समझ गई, यानी 230 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
5: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230 600।
4: अरे वाह 07774 230 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की, अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
5: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

साथियों सच सच बताइए, हम रोज खुद से कितनी ही बातें करते हैं ना। हर रात सोने से पहले सोचते हैं कल से पक्का अपने लिए समय निकालेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे और अपनी सेहत पर ध्यान देंगे। लेकिन ये कल कभी आता ही नहीं है। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल जाता है और हम अपनी डायरी में बस तारीखें बदलते रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों 21 जून आने वाला है और 21 जून जैसे ही आता है ना, तब याद आता है हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल, अपना शरीर, क्योंकि आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हर साल 21 जून को हम सब टीवी देखकर, अखबार पढ़कर बड़े बड़े वादे करते हैं कि कल से योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, खुद को फिट रखेंगे, लेकिन अफसोस वादे सिर्फ वादे बनकर ही रह जाते हैं। तो इस बार बातों को सिर्फ बातों में मत रहने दीजिए, इस बार अपनी इस सोच को हकीकत का जामा पहनाइए, कदम बढ़ाइए, एक छोटी सी कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी सेहत से कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। साथियों कैलेंडर की तारीखें आगे बढ़ रही हैं और 21 जून अब बस करीबी है, योग दिवस आने वाला है। लेकिन दोस्तों सेहतमंद रहने के लिए किसी एक तारीख का इंतजार क्यों करना, आज से ही, अभी से ही, इसी समय से ही अपनी फिटनेस का दामन थाम लीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सबसे जरूरी बात, खुश रहिए। और रही बात खुश रहने की, तो उसके लिए हम तो है ही ना, हम आपके लिए प्यारा प्यारा संगीत लेकर आते हैं, गीत लेकर आते हैं और उस गीत से आप यही कहते हैं कि वाह आज तो बात कुछ जरूर है अच्छी सी।

खुशी की हो, आनंद की हो, तो संगीत सुनना सबसे अच्छा और बेहतर रहता है। और यही कोशिश हम गुंजन में करते हैं। जुड़े रहिए आकाशवाणी अंबिकापुर के साथ, जिसमें आज आपके साथ है ये आपका रेडियो दोस्त तरुण।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दोस्तों, कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। ऐसी ही लाइनों ने मुझे भी इम्प्रेस किया। वो लाइनें हैं, दिल को बहलाने के लिए एक स्टाइल तो है, दिल को बहलाने के लिए एक स्टाइल तो है, कुछ नहीं है हाथों में मोबाइल तो है। आज मोबाइल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। बातचीत, जानकारी, मनोरंजन और कामकाज सब कुछ इसी में समा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर दिन अनावश्यक फाइलें, फोटो, वीडियो और चैट का बढ़ता हुआ डेटा भी एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े सर्वर 24 घंटे चलते हैं, जिनमें काफी मात्रा में बिजली और पानी की खपत होती है, जो एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। यदि बिजली और पानी की खपत ज़्यादा बढ़ गई तो इससे हम सबको परेशानी हो सकती है, और इसका प्रमुख कारण

हमारा ये छोटा सा मोबाइल है। इसलिए साथियों, समय समय पर अपने मोबाइल की अनावश्यक फाइलें हटाइए, जरूरी डेटा ही संभाल कर रखिए और डिजिटल दुनिया का भी जिम्मेदारी से उपयोग कीजिए, क्योंकि स्मार्टफोन रखना अच्छी बात है, लेकिन स्मार्ट तरीके से उसका उपयोग करना उससे भी बड़ी बात है। और हम तो सब तो स्मार्ट हैं ही, क्योंकि समय समय पर हम अपने आप को बदलते रहते हैं और इस बदलाव में आपको बस यही करना है, जो आपके मोबाइल में अनावश्यक फाइलें, डेटा, फोटोज वगैरह हैं, उसे समय समय पर हटाते रहिए। ऐसा करने से आप बिजली और पानी की बचत करेंगे।

साथियों, कई बार दिल में कुछ करने की चाहत होती है और आसमान को देखकर लगता है कि मौसम में थोड़ी सी राहत होती है, लेकिन सच कहें तो इस मौसम का मिजाज भी बड़ा निराला है। अभी हल्की सी फुहारें राहत दे जाती हैं तो कुछ ही पलों बाद तीखी और तेज धूप अपना तेवर दिखाने लगती है। मौसम के इस बदलते मिजाज में जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। दोस्तों, प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जब तक प्यास लगती है शरीर पहले से ही पानी की कमी का इशारा दे चुका होता है। इसलिए समय समय पर पानी पीते रहिए और खुद को पूरी तरह हाइड्रेट रखिए। जब भी घर से बाहर निकलें अपने साथ पानी की एक बोतल ले जाना कभी मत भूलिए। आपकी ये छोटी सी आदत आपको इस उमस, गर्मी और थकान से बचाने में एक ढाल का काम करेगी, क्योंकि याद रखिए, जितना शरीर हाइड्रेट रहेगा उतना ही मन तरोताजा और तन स्वस्थ रहेगा। और साथियों, आज गुंजन की इस मंच से मैं उन सभी भाई बहनों की दिल से सराहना करना चाहता हूँ जो तपती धूप में भी इंसानियत को जिंदा रखे हुए, जो अपने घरों, दुकानों या मोहल्ले के बाहर राहगीरों के लिए ठंडे पानी का घड़ा या प्याऊ लगाते हैं। इसके अलावा जब भी घर पर कोई मेहमान आता है तो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाते हैं। ये एक अच्छी आदत है। और सिर्फ इंसान ही क्यों, हमारे कुछ दोस्तों अपनी छतों, आंगनों में नन्हे पंछियों के लिए भी सकोरे में पानी भर कर रखते हैं। तपती दोपहरिया में जब कोई प्यासा पंछी आकर उस पानी से अपनी चोंच गीली करता है, अपने परों को फड़फड़ाता है, तो वो नज़ारा, वो दृश्य अपने आप में एक रूह को सुकून देने वाला होता है। तो चलिए इस प्यारे से एहसास को दिल में समेटते हैं, खुद भी पानी पीते हैं और दूसरों की भी प्यास बुझाते हैं, क्योंकि हम बस वही संदेश आप तक पहुँचाते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा तब लगता है जब आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं। तो आज से ही अपने घर के बाहर एक घड़ा रखिए और अपनी छत पर सकोरे रखिए, ताकि कोई पंछी, कोई प्यासा उस घड़े से पानी पी सके।

आई जस्ट टू से बस इतना ही कि आप सब बहुत खुश रहें। साथियों, आज गुंजन में खास तौर पर अपने स्कूल जाने वाले युवा दोस्तों से एक बहुत छोटी लेकिन बेहद जरूरी बात पूछना चाहता हूँ। जरा सोचिए और बिल्कुल दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिएगा। जब आप अपने दादा दादी या नाना नानी से बात करते हैं तो आपका अंदाज कैसा होता है? क्या आप उनके पास जाकर कहते हैं, दादी टेक्नोलॉजी से मत डरिए, मैं हूं ना आपको स्मार्टफोन चलाना सिखा दूंगा, या फिर बात को टालते हुए कहते हैं, अरे दादी आपके बस की बात नहीं, रहने दीजिए। क्या आप कभी प्यार से कहते हैं, दादू चलिए आज थोड़ी देर बाहर घूमकर आते हैं, आपके दोस्तों से मिलकर आते हैं, या फिर कह देते हैं आप इस उम्र में कहाँ जाएंगे, घर पर ही आराम करिए। क्या आप अपनी स्कूल कोचिंग की लाइफ से ही कहते हैं, अरे हमारे पास स्कूल है, होमवर्क है, गेम्स है, बहुत बिजी हैं हम, या फिर कभी फुर्सत में बैठकर कहते हैं, दादी आज प्लीज अपनी वो बचपन वाली पुरानी कहानी सुनाइए ना। मेरे दोस्तों, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग सिर्फ हमारे परिवार का हिस्सा नहीं होते, बल्कि वो अनुभवों की चलती फिरती जीती जागती किताब हैं। उन्हें आपके महंगे उपहारों या पैसों से ज़्यादा खुशी आपके साथ बिताए गए उन खूबसूरत पलों से मिलती है। कभी उनके घुटनों के पास बैठिए, उनके कांपते हाथों को थामिए, उनकी पुरानी बातें सुनिए, उनके साथ खिलखिलाइए, हंसी और फिर देखिए आपको जिंदगी का कितना बड़ा सबक हंसते हंसते सिखा देते हैं वो। क्योंकि हमेशा याद रखिए, जिस घर में बुजुर्गों का दिल से सम्मान होता है, वहाँ खुशियाँ और संस्कार दोनों एक साथ बसते हैं। तो अंबिकापुर के मेरे प्यारे दोस्तों, अब ईमानदारी से बताइए, आप किस कैटेगरी में आते हैं? वो जो समय न होने का बहाना बनाते हैं, या वो जो अपने दादा दादी और नाना नानी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाने के लिए समय देते हैं? अपने दादा दादी से, नाना नानी से बहुत प्यार कीजिए। क्योंकि उनके पास अनुभव का वो खजाना है जो हमें जिंदगी का सबक सिखाता है, और प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में।

0: प्यार कर और प्यार करती रही। आज गुंजन कार्यक्रम में बस इतना ही। समय की कमी के कारण वो गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाए, जिसके लिए हमें खेद है। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: चार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले

0: विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन, प्रशिक्षण और नए उत्पाद विकास पर जोर दिया और शिक्षा विभाग में 16 जून से ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने रायपुर में रेशम, खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की समीक्षा की। उन्होंने बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन, प्रशिक्षण और नए उत्पाद विकास पर जोर दिया। स्थानीय उत्पादों को निर्यात एजेंसियों से जोड़कर वैश्विक बाजार तक पहुंच दिलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से आधुनिक डिजाइन तैयार करने की बात कही गई। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्र के उद्यमियों की वार्षिक आय 5 लाख रुपए तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। एक अन्य कार्यक्रम में श्री सिंह ने विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में विकास के कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने गरीब कल्याण, डिजिटल सेवाओं और आत्मनिर्भर भारत अभियान की उपलब्धियों का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सम्मेलन को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने भी संबोधित किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री सिंह अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन आज रायपुर में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वे ऑक्सीजोन गार्डन में पौधरोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में 16 जून से ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य होगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को डिजिटल माध्यम से हाजिरी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में VSK ऐप और कार्यालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज होगी। ऑनलाइन हाजिरी नहीं मिलने पर जून माह का वेतन रोका जा सकता है। वहीं अब ऑफलाइन छुट्टी आवेदन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्यगीत सहित विभिन्न गतिविधियां अनिवार्य रूप से कराई जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और अन्य गतिविधियां होंगी, जबकि मध्यान्ह भोजन के समय भोजन मंत्र और छुट्टी के समय राज्यगीत का सामूहिक वाचन कराया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को इसकी रोजाना निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष और महिला तथा सब जूनियर बालक बालिका चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय कायाकिंग कैनोइंग और छत्तीसगढ़ कायाकिंग एंड कैनोइंग के संयुक्त तत्वावधान में 14 जून तक किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव विक्रम सिंह सिसोदिया ने गुब्बारा छोड़कर प्रतियोगिता का आगाज किया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 24 राज्यों से करीब 800 खिलाड़ी और अधिकारी शामिल हो रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन, प्रशिक्षण और नए उत्पाद विकास पर जोर दिया और शिक्षा विभाग में 16 जून से ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी समाचारों का अनुप्रसारण हमारे रायपुर केंद्र से किया जा रहा था, जिसमें आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।

आइए श्रोताओं, आपको मौसम संबंधी सूचना दे दें। स्थानीय मौसम कार्यालय की सूचना के अनुसार पिछले 24 घंटों में अंबिकापुर नगर का अधिकतम तापमान रहा 35.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 25.8 डिग्री सेल्सियस।

आज रात्रि 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे कर्नाटका सैक्सोफोन वादन, कलाकार होंगे यूएस प्रसाद। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे अखिल भारतीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद सुबह 10 बजे आप सुनेंगे नए तराने कार्यक्रम। सुबह 11:05 पर श्रोताओं का पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम आपकी पसंद सुनेंगी। समय होगा सुबह 11:05 पर। दिन में 12 बजे आप सुनेंगे मिश्रित गीत संगीत कार्यक्रम सफरंग। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे कव्वालियां। दिन में 1:05 पर खेती की बात का पुनः प्रसारण किया जाएगा। दिन में 1:10 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। इसमें बातचीत होगी घर ही बच्चे की पहली पाठशाला। साथ ही आप सुनेंगे शक्ति अभिव्यक्ति क्रम, व्यंजन विधियां, गीत संगीत। दिन में 1:40 पर आप सुनेंगे ईमेल की गूंज कार्यक्रम। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे गीत गंधा कार्यक्रम। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी और फिल्मी भजन कार्यक्रम भजन संध्या में। शाम 5:30 पर युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे। इसमें आज आप सुनेंगे युवा सोच और एक कलाकार क्रम। शाम 6:05 पर विचार बिंदु कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम कोतली। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का माधुरी कार्यक्रम। शाम 7:05 पर सुनेगा सुगम संगीत का रजनी गंधा कार्यक्रम। किसान भाइयों की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। इसमें सामयिक चर्चा का विषय होगा राष्ट्रीय पशुधन मिशन, एक पेड़ माँ के नाम, जन अभियान से पर्यावरण संरक्षण पर कुछ बातचीत की।

जाएगी। इसमें शाम 7:30 पर आप सुनेंगे किसान वाणी। इसमें आप सुनेंगे आज किसान गोष्ठी, किसानों से उनके अनुभवों, विचारों व नवाचार पर विचार विमर्श कार्यक्रम। साथ ही आप सुनेंगे मंडी भाव, मौसम कर जानकारी और आज कर सवाल। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम। और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का चित्रपट संगीत कार्यक्रम। ये तो थी श्रोताओं हमारे केंद्र से आज की दूसरी और तीसरी सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

नैतरानी कार्यक्रम में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन, नमस्कार और जय जोहार। आज आपके साथ है ये आपका रेडियो दोस्त तरुण। नैतरानी का ये पहला गीत आप सबके लिए,

फिल्म का नाम था चुक चुक जियो, आवाज थी सिमरन कौर धातली की, गीत ध्रुवंशी ने लिखा था, संगीत था तनिष्क बागची का। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं

0: सब्दी हो गई बल्ले बल्ले।
1: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
2: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
1: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
2: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
1: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 0777423006000। नंबर एक बार फिर 0777।

0: 4230600.
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
2: बेबी को बेस पसंद है।
3: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

साथियों, नए तराने के सुहाने सफर पर मैं हूँ आप सभी के साथ तरुण। दोस्तों, आज का दौर बड़ा तेज है, हर कोई भाग रहा है, हर किसी को जल्दी है, और ऐसे में कई बार हम दूसरों की कामयाबी, दूसरों की गाड़ियां, दूसरों की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर खुद को छोटा समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हम पीछे छूट गए हैं। पर दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, हर पंछी के उड़ने का अपना एक समय होता है, अपनी एक दिशा होती है। बाज आसमान की ऊंचाई में उड़ता है तो गोरैया आंगन में चहचहाती है। इसका मतलब यह नहीं कि गोरैया कमजोर या बाज ही सब कुछ है, दोनों की अपनी खूबसूरती है, अपना अस्तित्व है। ठीक वैसे ही आपकी जिंदगी का सफर भी बिल्कुल अनोखा है, आपकी तुलना किसी और से हो ही नहीं सकती। अगर आज आपके रास्ते में थोड़ी मुश्किलें हैं या कोशिश अभी कामयाब नहीं हुई है तो निराश मत होइए, नया दौर नए तरीके आजमाइए, एक नई शुरुआत कीजिए, देखिए आपको मंजिल जरूर मिलेगी। और हम भी अपने कार्यक्रमों में ऐसे ही कोशिश करते हैं, नए नए गीत लाते हैं ताकि आपका समय बहुत अच्छे से बीते। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है मुसाफिर, आवाजें हैं सुनिधि चौहान की और इनका साथ दिया है साथियों ने।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: राम राम हो विष्णु भैया।
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगत दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगु तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 MHz में भी एला है दे सुन सकते हैं।
1: हाँ अभी तो शुरू है कि सा है।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

दोस्तों, नए तराने कार्यक्रम का कारवां आगे बढ़ रहा है, तो चलिए एक खूबसूरत बात करते हैं। दोस्तों, आज हम सब स्मार्ट जनरेशन के लोग हैं, हमारे पास 5G स्पीड है, हाथ में एक स्मार्टफोन है और उंगलियों पर सोशल मीडिया की पूरी दुनिया है। हम रोज सैकड़ों रील्स स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की लाइव के वीडियो देखते हैं, लाइक्स और कमेंट भी गिनते हैं। पर दोस्तों, जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, आखिरी बार आप कब फुर्सत के साथ बैठकर अपने दोस्तों के साथ बैठे थे? आखिरी बार कब आपने मोबाइल जेब में रखकर सरगुजा की इन खूबसूरत वादियों को आपने आंखों से देखा था? नया दौर होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि हम मशीनों के गुलाम बन जाएं। असली मजा तो तब है जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करें और अपनी रियल लाइफ को खुलकर एंजॉय भी करें। रील वाले फिल्टर से खूबसूरत आपकी वो असली और बेफिक्र हंसी होती है जो अपनों के बीच बैठकर आती है। और मुझे तो आपसे बातें करते ही बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी होती है और मेरे होठों पर भी एक हंसी आ ही जाती है। तो चलिए इसी बात पर हो जाए एक और गीत। फिल्म का नाम है धुरंधर। आवाजें हैं खान साहब और शाश्वत सचदेव की।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
3: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
2: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
3: क्या 230-600?
2: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
3: पक्का?
2: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
4: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।

आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं नए तराने कार्यक्रम। नए तराने कार्यक्रम का ये कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चलिए एक नई बात और करते हैं। ये बात बिल्कुल नई है लेकिन बेहद काम की भी है, और ये बात जुड़ी हुई है हमारे पैसों से। दोस्तों, आज का दौर स्मार्ट अर्निंग और डिजिटल मनी का है। एक क्लिक पर पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, एक स्वाइप पर ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया हमारे घर आ जाती है। नए जमाने के हमारे युवा दोस्त बहुत ही कम उम्र में शानदार कमाई भी कर रहे हैं, जो बिल्कुल बहुत गर्व की बात है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस नए दौर की चकाचौंध में कई बार हम दिखावे के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई को पानी की तरह बहाने लगते हैं। सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वो चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी हमें असल में ज़रूरत ही नहीं होती। याद रखिए, पैसा सिर्फ वो नहीं जो हम हर महीने कमाते हैं, बल्कि असली पैसा वो है जो हम मुसीबत के समय के लिए बचा कर रखते हैं। कमाई भले ही नए जमाने की हो, लेकिन बचत करने का हुनर हमारा पुराना होना चाहिए। जब जेब में बचत का बैकअप होता है ना, तो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में हमारा कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होता है। कमाई के नए तरीकों से अपनी जेब को जरूर भरिए, लेकिन आने वाले कल को सुरक्षित करने के लिए थोड़ी बचत की आदत भी जरूर डालिए। और अगला गीत भी कुछ ऐसा ही है जो हमें पैसों के बारे में

कुछ बता रहा है। फिल्म का नाम है सुपर 30, आवाज है विशाल दादलानी की। जिंदगी को जिंदगी बनाता है पैसा, लेकिन इस पैसे को, अपनी कमाई को अच्छे काम में लगाइए। फालतू की चीजें मत खरीदिए जो बिना काम की है।

0: रेखा जल्दी रेडियो लगा, मंगलवार है, घर आंगन मेल में मेरी चिट्ठी आने वाली है।
1: अरे पर दीदी मुझे तो फोन पर बात करनी थी, क्या आज फोन नहीं लगेगा?
2: अरे नहीं रेखा, फोन के लिए शनिवार सुबह 10:30 पर नंबर मिलाना है। फोन इन का प्रसारण तो रविवार दोपहर 1:10 पर ही होगा। आज मंगलवार को सिर्फ पत्र और ईमेल वाला मेल ही आएगा।
0: पर आरती रेडियो ठीक से सेट तो कर दे।
2: रेडियो एकदम सही सेट है, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: अच्छा और फोन नंबर क्या है?
2: नंबर है 231-917 और 231-918, कोड लगाओ 07774। और पत्रों के लिए ईमेल याद है ना, gharanganair@gmail.com।
3: समझ गए, मंगलवार को मेल और रविवार को फोन।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, घर आंगन, मंगलवार घर आंगन मेल, रविवार फोन इन बात करें, गीत सुने, सुनिए मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: घर आंगन, आपकी आवाज़ आपकी पहचान।

दोस्तों आज का दौर है ना, इसे अगर मैं विकल्पों का बाजार कहूँ तो गलत नहीं होगा। आज हमारे पास करियर चुनने के लिए हजारों रास्ते हैं, सीखने के लिए लाखों कोर्सेज हैं और इंटरटेनमेंट के लिए तो पूछिए ही मत। लेकिन इस चकाचौंध के बीच एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है और वो है भटकाव। हम आज एक चीज शुरू करते हैं, कल किसी दूसरे को देकर रास्ता बदल देते हैं, परसों कुछ तीसरा ही अपनाने लगते हैं। मेरे दोस्तों, नया दौर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम अपनी एकाग्रता खो दें। रास्ते भले ही नए और आधुनिक हो, लेकिन हमारी नज़र आज भी अर्जुन की तरह सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होनी चाहिए। अगर आप किसी एक चीज़ पर माहिर बनना चाहते हैं तो दुनिया भर के शोर को भूलकर अपनी पूरी एनर्जी उसी एक काम में झोंक दीजिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी, पर वो मिलती है उसी को जो बीच रास्ते से यू टर्न नहीं लेता। अपनी मेहनत, अपनी लगन सिर्फ और सिर्फ एक रास्ते पर अपनाता है, अपनी पूरी एनर्जी उसे सीखने में लगाता है। चलिए इसी बात पर सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है चॉकलेट, आवाज सोनू निगम की, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर से। बी द बीट।

0: अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।

साथियों, नेतरानी का सफर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और चलिए अब करते हैं आज की एक और बिल्कुल नई, दिल के बेहद करीब वाली बात। दोस्तों, आज हम सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव रहते हैं, हमारे पास सोशल मीडिया पर लाखों फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं, हमारी एक फोटो पर सैकड़ों लाइक्स आ जाते हैं, हम बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जरा ठहरिए और ठंडे दिमाग से सोचिए, जब कभी दिल उदास होता है या जब आधी रात को किसी की मदद की ज़रूरत होती है, तब क्या वो कमेंट्स वाले लोग काम आते हैं? नहीं ना। तब याद आता है वो पुराना हमारा सच्चा साथी, जो भले ही हमारी पोस्ट पर लाइक न करे, जो हमें सामने देखकर हमारा मजाक न उड़ाए, लेकिन जब ज़रूरत हो तब वो बिना पूछे सबसे पहले हमारे साथ खड़ा होता है। कौन? वही हमारा सच्चा दोस्त, जिसे हमने अपनी दोस्ती के समय बनाया था। नया दौर है, डिजिटल दुनिया का हिस्सा जरूर बनिए, लेकिन अपने उन रियल और सच्चे दोस्त को कभी पीछे मत छोड़िए। जो मजा दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर बेफिक्र ठहाके लगाने में आता है, वो दुनिया के किसी इमोजी में हमें नहीं मिलता। सच्चा आनंद सच्चे दोस्त के साथ ही मिलता है, जो जरूरत के समय हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है।

गीत के साथ ही नए तराने कार्यक्रम में बस इतना ही। अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं और गीतों की इस महफिल को यहीं थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। लेकिन याद रखिए, संगीत कभी रुकता नहीं, यादें कभी थमती नहीं, और आपसे हमारा ये आत्मीय रिश्ता भी यूं ही बना रहता है। कार्यक्रम में अब जो कार्यक्रम आने वाला है आपकी पसंद, जिसे लेकर आएंगी स्वाति उपाध्याय। उनके हाथों में बहुत सारे पत्र हैं आपकी फरमाइशों के, लेकिन उसके लिए कीजिए बस सुबह 11:05 का इंतजार। मीडियम और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इसका उद्देश्य इन दोनों यूरोपीय देशों के साथ भारत की साझेदारी को और प्रगाढ़ करना है। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री कल फ्रांस के नीस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी दक्षिण फ्रांस में भारतीय समुदाय से भी भेंट करेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे। वे स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ आपसी सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी

0: तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से मात दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद में, जहां आप सुनेंगे अपने मनपसंद गीत जिन्हें आपने लिख भेजा है हम तक अपने प्यारे प्यारे पत्रों के माध्यम से। आज कार्यक्रम आपकी पसंद में मैं हूं स्वाति। तो चलिए जानते हैं कि आज के पहले गीत की फरमाइश हमारे किन श्रोता साथियों की है।

इस गीत को सुनना चाहा है वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे, मिलिंद सरकटे। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, संगीता नेभवानी, आकाश नेभवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा, सीता, सागर, आयुषी, हनी और इनके परिवार के सभी सदस्य। साथ ही साथ कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू, वंदना और इनके परिवार के सदस्य। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। तो आइए आप सभी साथियों की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म मौसम का ये गीत, जिसमें आवाजें हैं भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत मदन मोहन का है।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद स्वाति के साथ। अब बढ़ते हैं अगली पसंद की ओर, जिसे लेख भेजा है हमारे श्रोता साथियों ने। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाणकर, राही सरिता गम्हाणकर, प्रिंस एकांश गम्हाणकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गम्हाणकर, प्रणीता गम्हाणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से

वैशाली शैलेश गम्हाणकर, श्वेता सुमित गम्हाणकर, कुमारी ध्वनि गम्हाणकर। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना चाहा है पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर, वंशिका दिवाकर। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। जुनवानी दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरीत, रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन साहू, सुनीता ऋषवंत साहू, हीरेंद्र नीलकंठ साहू, चंद्रहास, संजीव त्रिलोक, रणजीत सिंह, राजा जी। जिला बेमेतरा से रोहिणी डागेश्वरी साहू, खुलासा देवी साहू, देवव्रत, राघवेंद्र, राज साहू, हेमंत, बेबी विधि दीपिका, बेबी कविता, सृष्टि साहू। इसी गीत की फरमाइश हमारे इन साथियों की भी है। ये हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। तो आइए अपने इन सभी श्रोता साथियों की पसंद पर सुनते हैं फिल्म अखियों के झरोखे से का ये गीत, जिसमें आवाज़ है हेमलता की। गीत लिखा है रविंद्र जैन ने और संगीत भी रविंद्र जैन का है।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगू तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं
0: हाँ?
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं ए दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ
1: आए
0: हाँ
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसो हूँ बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नी बढ़ी नहीं।
0: हाँ
1: तहाँ
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्स पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते हैं।
1: हाँ अब ये तो शुरू होएगी साहेब।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और आइए अब जानते हैं अगले गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोताओं के नाम। अगली पसंद है मूर्तिजापुर विराहित से हारून शाह शाजिया बानो। श्रृंगिरीशी महानदी सिंहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन। साथ ही साथ धरसीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से हमारे श्रोता साथी हैं छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, रानू, खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना चाहा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत।

वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडूंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से नारायण भाऊ, विठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी संजना खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, ब्रोनो उषा सोना खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। तो आइए अपने इन श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद का ये अगला गीत फिल्म सनम रे से, जिसमें आवाजें हैं अरिजीत सिंह और अनिरुद्ध भोला की। गीत और संगीत है मिथुन का।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। और अब हम बढ़ते हैं अगली पसंद की ओर, जिसे लिख भेजने वाले हमारे श्रोता हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन,

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और अब हम बढ़ते हैं अगली पसंद की ओर, जिसे लिख भेजने वाले हमारे श्रोता हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अबान, बागबहरा भद्रसी से पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन, खुशबू सेन, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय, बेबी, अनिष्का, राधिका गजभिये, यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़ से, विनोद खड़ से। इसी गीत की फरमाइश हमारे इन साथियों की भी है। ये सभी साथी हैं हटरी चौक बिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, लक्ष्मी प्रसाद देवांगन, रजनी देवांगन, प्रियंका देवांगन, रेणु देवांगन, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से हमारे साथी हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और इनके परिवार के सभी सदस्य। साथ ही साथ खमरिया बिलासपुर से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, प्रतीक कुमार, बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवासेरे। तो आइए अपने इन सभी साथियों की पसंद पर सुनते हैं फिल्म अभिमान का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत एसडी बर्मन का है।

श्रोताओं, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद की अगली पसंद की ओर। इसे लिख भेजा है जरुण वरुण महाराष्ट्र से हमारे श्रोता साथी बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे आदि, युवराज, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन, खुशी रौनक सेन, साथ ही साथ बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबिका, लीना, अंशुमाला, आशुतोष अंगारे, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता साथी हैं रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही, पूजा, छुटकी, शरद कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य। साथ ही साथ सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत रॉय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल। तो आइए अपने इन सभी साथियों की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद का ये अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म निकाह का ये गीत, जिसमें आवाज़ थी सलमा आगा की। गीत लिखा था हसन कमाल ने और संगीत रवि का था। और आइए बढ़ते हैं अब अगली पसंद की ओर। अगली पसंद हमारे इन साथियों की है। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा। गड़िया मौजे उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना, पूजा, आरती, सुनीता देवी। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। इसी गीत को सुनना चाहा है यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। तो आइए अपने इन सभी श्रोता साथियों की पसंद पर सुनते हैं फिल्म हमराज का ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत है रवि का।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
3: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू।
4: बेबी को बेस पसंद है।
5: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम, इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपनी पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
4: बेबी को बेस पसंद है।
6: श्रोताओं, इस गीत के साथ आज का कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में हल्की वर्षा होने की संभावना जताई, वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने रायपुर में रेशम, खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की समीक्षा की। उन्होंने बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन, प्रशिक्षण और नए उत्पाद विकास पर जोर दिया। स्थानीय उत्पादों को निर्यात एजेंसियों से जोड़कर वैश्विक बाजार तक पहुंच दिलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से आधुनिक डिजाइन तैयार करने की बात कही गई। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्र के उद्यमियों की वार्षिक आय 5 लाख रुपए तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। एक अन्य कार्यक्रम में श्री सिंह ने विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में विकास के कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने गरीब कल्याण, डिजिटल सेवाओं और आत्मनिर्भर भारत अभियान की उपलब्धियों का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और गरीब

0: कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सम्मेलन को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने भी संबोधित किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री सिंह अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन आज रायपुर में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वे ऑक्सीजन गार्डन में पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में 16 जून से ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य होगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को डिजिटल माध्यम से हाजिरी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में वीएसके ऐप और कार्यालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज होगी। ऑनलाइन हाजिरी नहीं मिलने पर जून माह का वेतन रोका जा सकता है। वहीं अब ऑफलाइन छुट्टी आवेदन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण किया जाएगा। वहीं बोर्ड और स्थानीय परीक्षाओं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्यगीत सहित विभिन्न गतिविधियां अनिवार्य रूप से कराई जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और अन्य गतिविधियां होंगी, जबकि मध्यान्ह भोजन के समय भोजन मंत्र और छुट्टी के समय राज्यगीत का सामूहिक वाचन कराया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को इसकी रोजाना निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में मॉनसून छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के तापमान में लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के भीतर प्रदेश के अधिकांश जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं तेज हवा चलने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। महिला और बाल विकास विभाग, श्रम विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से लोगों को बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन, प्रशिक्षण और नए उत्पाद विकास पर जोर दिया। शिक्षा विभाग में 16 जून से ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य होगी और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में हल्की वर्षा होने की संभावना जताई। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ ही में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग।

श्रोताओं, कार्यक्रम सबरंग के आरंभ में आइए सुनते हैं सबसे पहले ये नुसरत फतेह अली खान की आवाज में ये गीत। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत उत्तम सिंह का है।

0: नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
0: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
0: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 077774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग। अब सुनते हैं अगला गीत कैलाश खेर की आवाज में। गीत को लिखा है नरेश कामत ने और संगीत भी कैलाश खेर का ही है।
3: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगत, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विनु भैया, ए दे आगु तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसो हूँ बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के।
1: हाँ।
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच।
1: हाँ।
0: और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। हाँ। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते
1: हैं। हाँ, अबे दे शुरू है कि साहेब।
0: हाँ। तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग स्वाति के साथ, और बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगले क्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में ये गजल, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत कुलदीप सिंह का है।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम सबरंग में सुनते हैं अब ये गीत। फिल्म का नाम है 1-2-4। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत AR रहमान का है।

श्रोताओं, आइए आप कार्यक्रम सबरंग का सुनते हैं ये अंतिम गीत। आवाज़ है सोनू निगम की, गीत लिखा है फैज़ अनवर ने और संगीत है निखिल विनय का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कव्वालियाँ ज़फ़र हुसैन खां बदाउनी और साथी के स्वरों में। दोपहर का एक बजने वाला है। हिंदी समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया।

0: पर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण। जानकारी का विषय है अरहर की खेती।
2: किसान भाइयों, खरीफ दलहनी फसलों में अरहर का विशेष स्थान है। चना के बाद अरहर दूसरी मुख्य दाल वाली फसल है। इसमें लगभग 22% प्रोटीन पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में इसकी खेती की जाती है। प्रदेश में अरहर उत्पादन बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं। इस फसल की काश्त उच्छन और भर्री भूमियों के अलावा धान के खेत की मेड़ों पर भी की जा सकती है। उन्नत तकनीक के माध्यम से किसान अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई, अरहर की फसल आर्द्र और शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु में की जा सकती है। फसल को प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि के लिए गर्म नम जलवायु तथा पौधों पर फूल आने से लेकर फली और दाने बनते समय तक शुष्क मौसम और तेज धूप की आवश्यकता होती है, जिससे उत्पादन अधिक मिलता है। इस फसल के लिए समुचित जल निकास वाली हल्की से लेकर भारी मिट्टी वाली खेती उपयुक्त रहती है। छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में भर्री यानी कन्हार भूमि में इस फसल की काश्त की जाती है। अरहर को धान की खेत के मेड़ों पर भी सफलतापूर्वक उगाया जाता है। किसान भाइयों, अरहर फसल के लिए भूमि की तैयारी मानसून प्रारंभ होते ही एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई और देसी हल या ट्रैक्टर द्वारा 2 बार जुताई करके पाटा लगाकर समतल कर देना चाहिए। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय मिला देना चाहिए। उसके बाद अंतिम जुताई के समय बुआई के पूर्व क्लोरोपायरीफास 1.5% चूर्ण 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाना चाहिए, जिससे दीमक आदि कीड़ों का प्रकोप नहीं होता है। बुआई के पहले जल निकास के लिए खेत में चारों ओर नालियां बना लेना चाहिए। किसान भाई, उन्नतशील किस्मों का ही चयन करना चाहिए। जमीन के प्रकार, बुआई का समय, संसाधन की उपलब्धता के आधार पर हमको किस्मों का चयन करना चाहिए। यदि हम किस्मों की बात करें तो

0: उपास 120 अरहर की एक किस्म है। यह किस्म 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उकठा रोग के लिए संवेदनशील है। मध्यम ऊंचाई होती है। उपज क्षमता 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। अरहर की दूसरी किस्म है आशा। इस किस्म की अवधि 160 से 180 दिन होती है। उकठा और बांझपन के लिए निरोधक किस्म है। खेत की मेड़ों होती उपयुक्त है। इसका उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह से नंबर 148, यह किस्म 160 से 180 दिन में पककर तैयार होती है। उकठा रोग के लिए सहनशील है और बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म है। इसकी उपज क्षमता 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। प्रगति, यह भी एक अरहर की किस्म है। यह किस्म 130 से 140 दिन में पक जाती है। उकठा रोग के लिए निरोधी और बोनी किस्म है। यह पेड़ी फसल हेतु उपयुक्त है। उपज क्षमता 15 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। लक्ष्मी, यह किस्म 180 से 200 दिन में पककर तैयार होती है। उकठा रोग के लिए निरोधक किस्म है। खेतों के मेड़ों होती यह उपयुक्त किस्म है। उपज क्षमता 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राजीव लोचन, इस किस्म की अवधि 180 से 190 दिन है। उकठा एवं बांझपन के लिए निरोधक किस्म है। इसकी उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई, अरहर की बुआई मानसून के ऊपर निर्भर करता है। साधारणतः बुआई का उपयुक्त समय जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के दूसरे सप्ताह तक रहता है। देर होने की स्थिति में इस फसल की बुआई अगस्त के प्रथम सप्ताह तक कर सकते हैं। अरहर की बुआई के लिए बीज की मात्रा, बीज के आकार और गुणवत्ता पर निर्भर करती है। सामान्यतः मध्यम आकार और उच्च गुणवत्ता वाली बीज 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कतार से कतार बोने के लिए लगता है। अरहर के साथ सहफसली खेतों में अरहर की बीज दर शुद्ध फसल के बराबर रखनी चाहिए। बुआई के पूर्व बीज को कवकनाशी दवा बावस्टिन या थायरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद राइजोबियम तथा पीएसबी कल्चर की मात्रा 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। अरहर के बीज कतारों में 406 सेंटीमीटर गहराई पर बोनी चाहिए। शीघ्र पकने वाली जातियों को 30 सेंटीमीटर कतार से कतार और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधों की दूरी पर बोना चाहिए। मध्यम और देर से अवधि वाली किस्मों के लिए कतारों के बीच 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण। जानकारी का विषय था अरहर की खेती। श्रोताओं, दोपहर के 1:10 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

नमस्कार बहनों, कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो सखी अनीता। बहनों, आज हम आपसे बातचीत के लिए एक ऐसा विषय लाए हैं जो हर परिवार, हर माता पिता और हर बच्चे के जीवन से जुड़ा है। कहते हैं घर ही बच्चे की पहली पाठशाला है। बहनों, हम अक्सर यह मानते हैं कि बच्चे की शिक्षा विद्यालय से शुरू होती है, लेकिन वास्तव में उसकी सीखने की यात्रा जन्म लेते ही आरंभ हो जाती है। बच्चे का पहला विद्यालय उसका घर होता है और उसके पहले शिक्षक उसके माता पिता होते हैं। बहनों, बच्चा एक कोरे कागज़ की तरह होता है। वह अपने आसपास के वातावरण को देखकर, सुनकर और महसूस करके सीखता है। वह माता पिता की बोली, उनके व्यवहार, उनके संस्कार और उनकी आदतों को अपनाने लगता है। इसलिए घर का वातावरण बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों, बहनों, आज के आधुनिक युग में तकनीक ने हमारे जीवन को सरल बनाया है, लेकिन इसके साथ ही बच्चों के सामने आई कई नई चुनौतियाँ भी आई हैं। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में बच्चों को सही दिशा देना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। ऐसे में परिवार की भूमिका और भी बढ़ जाती है। बहनों, बच्चों को उपदेश देने से अधिक आवश्यक है

कि हम स्वयं उनके सामने अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करें। बहनों, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए घर में कुछ सरल लेकिन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जा सकता है। बच्चों के साथ प्रतिदिन कुछ समय अवश्य बिताएं, उनकी बातों को ध्यान से सुनें, अच्छी पुस्तकों और प्रेरणादायक कहानियों से उन्हें जोड़ें, परिवार में बड़ों के सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करें। बच्चों की छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करें, उन्हें जिम्मेदारियां निभाने का भी अवसर दें। जब घर में प्रेम, अनुशासन और संस्कारों का संतुलन होता है, तब बच्चा आत्मविश्वासी, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनकर उभरता है। माँ की गोदी पहला अक्षर, पिता का जीवन पहला ज्ञान, घर की छांव में खिलता बचपन, यहीं बनता है इंसान। संस्कारों की नींव जहाँ हो, प्रेम जहाँ का हो आधार, वही पाठशाला सबसे सुंदर, जो करती जीवन साकार। तो बहनों, इन्हीं भावनाओं को समेटे हुए आइए सुनते हैं एक अच्छा सा गीत।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।

0: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
0: अच्छा,
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: बहनों, इस संदेश के बाद अब क्रम है शक्ति अभिव्यक्ति, तो आइए सुनते हैं शक्ति अभिव्यक्ति क्रम। नमस्कार बहनों, आप सुन रही हैं विशेष क्रम शक्ति अभिव्यक्ति क्रम, और मैं हूं आपकी अपनी रेडियो सखी अनीता मंदिलवार। बहनों, वर्तमान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी महिला व्यक्तित्व अपनी उपलब्धियों, नेतृत्व और सामाजिक कार्यों के कारण चर्चा में हैं। इसी क्रम में हम बात करेंगे एक ऐसी भारतीय बेटी की जिसने अपने ज्ञान, परिश्रम और लगन से अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों को छुआ है। जी हाँ बहनों, हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर अक्षता कृष्ण। बहनों, सपने वही सच होते हैं जिनके पीछे मेहनत और दृढ़ संकल्प का साथ हो। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण है। भारत में जन्मी और पली बढ़ी अक्षता ने बचपन से ही आकाश और तारों के रहस्यों को जानने का सपना देखा। यही सपना उन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में ले गया। उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर नासा के महत्वपूर्ण अभियानों से जुड़ी, विशेष रूप से मंगल ग्रह के लिए संचालित परसेवरेंस रोवर मिशन में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही। उनकी यह उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय। बहनों, डॉक्टर अक्षता भारत की एक प्रतिष्ठित अंतरिक्ष वैज्ञानिक और एयरोस्पेस इंजीनियर हैं। वे नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में कार्यरत हैं, साथ ही अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उन्होंने नासा के कई महत्वपूर्ण मिशनों में योगदान दिया है, जिनमें मंगल अन्वेषण और पृथ्वी अवलोकन से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। बहनों, उनकी सफलता का मार्ग आसान नहीं था। अमेरिका पहुंचने के बाद उन्हें अनेक चुनौतियों और अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं किया। डॉक्टर अक्षता ने MIT से वैज्ञानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की। उनके PhD शोध का ध्यान अंतरिक्ष आधारित दूरबीन मिशनों के लिए उपकरण अंशांकन और प्रदर्शन सुधार पर केंद्रित था, जिनका उद्देश्य बाह्य ग्रहों का पता लगाना था। उनके शोध के परिणाम कई मिशनों में योगदान दिया। सहयोगियों के साथ बाह्य ग्रहों की खोज और HD 49640 को ज्वालाओं के साथ एक विस्फोटक परिवर्तनशील तारे के रूप में परिभाषित करने में योगदान दिया। अन्य परियोजनाओं में मार्स 2020 मार्स ऑक्सीजन ISRU प्रयोग शामिल है। उन्हें कई सारे पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसमें 2017 में अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन से लुइगी नेपोलिटानो पुरस्कार, डॉक्टर रॉबिन चैपमैन एक्सीलेंस थ्रू एडवर्सिटी अवार्ड 2018 में मिला, MIT ग्रेजुएट वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड भी शामिल हैं। वे युवा पीढ़ी, विशेषकर विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में करियर बनाने वाली छात्राओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति का जीवन हमें सिखाता है बहनों कि बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए अथक परिश्रम, धैर्य और आत्मविश्वास आवश्यक है। उनकी उपलब्धियां भारत के लिए गौरव का विषय है और आने वाली पीढ़ियों को विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुसंधान की ओर प्रेरित करती है। तो बहनों, शक्ति अभिव्यक्ति में आज यहीं तक।

बहनों, इस गज़ल के बाद अब चलते हैं रसोई की तरफ और क्रम है व्यंजन विधियाँ। तो सबसे पहले जो मैं व्यंजन बताने जा रही हूँ, लौकी कोफ्ता। बहनों, सामग्री है लौकी एक कप, ले लें आप काट कर और उसे कद्दूकस करके उसका पानी निकाल लें, और बेसन 3 चम्मच लें, हरी मिर्च 1 बारीक कटी हुई, नमक स्वाद के अनुसार और तेल अब तलने के लिए ले लें। इसके लिए ग्रेवी तैयार कर लें बहनों। प्याज 2 और टमाटर 2 लेकर उसे पेस्ट बना लें। अदरक लहसुन का पेस्ट आप 1 चम्मच ले लें, हल्दी 1/4 चम्मच, लाल मिर्च 1/2 चम्मच और धनिया पाउडर 1 चम्मच आप ले लें। और विधि है बहनों, लौकी में बेसन और मसाले मिलाएं, कोफ्ते बनाकर तल लें और ग्रेवी को भुनें और उसमें पानी डालें, कोफ्ते डालकर इसे 5 मिनट तक पकाएं। तो लीजिए, लौकी कोफ्ता बिल्कुल तैयार है। और बहनों, एक और विधि है बैंगन कलौंजी बनाने की। विधि मैं बताने जा रही हूँ। सामग्री है 5 छोटे आकार के बैंगन आप ले लें और इसमें बीच से लंबाई में चीरा लगा लें। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कसा हुआ नारियल ले लें आप, और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, इमली के 2 टुकड़े गर्म पानी में भिगोए हुए, और सरसों के दाने लगभग 1/2 चम्मच जैसे आप ले लें, और 6-8 करी पत्ता, 2 सूखी साबुत लाल मिर्च, नमक आप स्वाद के अनुसार ले सकती हैं, 3-4 चम्मच आप तेल ले लें, और सजाने के लिए हरा धनिया ले लें आप। विधि है बहनों, एक बाउल में धनिया, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नारियल और लहसुन डालकर इसे मिलाएं। इमली के गुदे को दबाकर पानी छानकर अलग कर लें और इसे नमक के साथ मसाले में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें, और सभी बैंगन में इसे एक पैन ले लें आप और उसमें तेल डालकर उसे गर्म करें, फिर सरसों के दाने, साबुत लाल मिर्च और करी पत्ता डालकर उसे चटकाएं और बैंगन डालकर इसे धीरे से चलाएं और इसे गलने तक आप पका लें। और बहनों, इसे सावधानी से चलाना है ताकि मिश्रण बाहर ना निकलने पाए। हरी धनिया से सजाकर आप इसे सर्व कर सकती हैं। और बहनों, देखिए अभी आम का मौसम है और कढ़ी तो आप बनाती होंगी अपने घर में, लेकिन आप इस बार थोड़ा सा नया भी ट्राई कर सकती हैं। मैंगो कढ़ी बनाने की विधि बता रही हूँ बहनों। सामग्री है उबले हुए आम 4, बेसन 2 बड़े चम्मच, मक्खन 1 छोटा चम्मच, हींग चुटकी भर, जीरा 1 छोटा चम्मच ले लें, लाल मिर्च आप ले लें 2, और हरा धनिया और कड़ी पत्ता थोड़ा सा ले लें, और नमक और गुड़ स्वाद के अनुसार आप इस्तेमाल कर सकती हैं। विधि है बहनों, सबसे पहले उबले हुए आम को छिलका निकाल कर मैश कर लें और उसमें पानी मिलाएं। अब बेसन डालकर पतला घोल बना लें। एक कढ़ाई में मक्खन गर्म करके हींग, जीरा, कड़ी पत्ता और खड़ी लाल मिर्च डालकर छौंक लगाएं। इसमें बेसन का घोल डाल दें और एक उबाल आने पर नमक और गुड़ मिलाएं। हरा धनिया डालकर इसे गर्मा गर्म सर्व करें। मैंने ये कढ़ी स्वादिष्ट होने के साथ बेहद पौष्टिक है। कच्चे आम का पल्प होने के कारण इसे

खाने से लू नहीं लगती। हींग और कड़ी पत्ते के कारण ये आसानी से पच भी जाती है। आम और गुड़ के खट्टे मीठे स्वाद के कारण इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा है। तो बहनों, आप ज़रूर इन व्यंजन विधियों को बनाकर देखें। और आइए सुनते हैं एक और अच्छी सी गज़ल।

इसी गज़ल के साथ हमारा भी चलने का समय हो रहा है और चलने से पहले कार्यक्रम का पता बता देते हैं। कार्यक्रम घर आंगन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27 और पिन कोड है 497001। और बहनों, प्रत्येक मंगलवार को घर आंगन मेल के लिए मेल भेजने का पता है ghar.aangan@gmail.com। और बहनों देखिए, प्रत्येक शनिवार को फ़ोन इन कार्यक्रम बात करें गीत सुने का भी रिकॉर्डिंग यहाँ पे किया जाता है और समय है प्रत्येक शनिवार को 10:30 से 11 बजे के बीच प्रातः। तो आप भी इसमें शामिल हो सकती हैं। इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर है 231-917, 231-918। और इसके पहले आप ज़रूर पिन लगाएं 077774। तो हमें आपके फ़ोन कॉल्स का और मेल का भी इंतज़ार रहेगा। तो दीजिए आज के कार्यक्रम से हमें विदा। कल फ़ोन इन क्रम बात करेंगे सुने के साथ पुनः मिलेंगे। आप सभी को अनीता का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

स्वागत है श्रोताओं आप सभी का आपके ही मनपसंद कार्यक्रम ईमेल की गूंज, जो है आपके ही ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज के आपके ईमेल की गूंज में आपके साथ मैं हूं स्वाति। आपके प्रेम, स्नेह और पसंद के गीतों के साथ आज का अंक आरंभ करते हैं और जानते हैं कि आज ईमेल की गूंज की पहली फरमाइश हमारे किन साथियों की है। ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिवकुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबिका, पीहू, लीना, आशुतोष। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा। ग्राम बेवरा संबलपुर से शिवदयाल वर्मा, नरोत्तम वर्मा। मित्रनगर बीड शहर से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना चाहते हैं जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। ये श्रोता साथी हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। साथ ही साथ पाकुड़ झारखंड से हमारे श्रोता हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किंसु, तासु, अर्णव, सत्यम। पश्चिम बंगाल बोड़ागाछी से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री, अन्विका। और पीहरा बाजार झुमरी तलैया गिरिडीह झारखंड से हमारे श्रोता हैं अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका मुन्नी, जयप्रकाश साव, वसंत लाल साव, रिया, जिया, टूसी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना चाहा है आप सबने सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र

बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मानाज अंसारी, शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से हैं राज एसडी अंसारी और फातिमा नाज। तो आइए अपने इन सभी श्रोता साथियों की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम ईमेल की गूंज का ये पहला गीत।

राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में। गीत लिखा है तनवीर गाज़ी ने और संगीत अनुपम रॉय का था। और चलिए आज अब बढ़ते हैं अगली पसंद की ओर और जानते हैं हमें अगले गीत की फरमाइश किन साथियों ने लिख भेजी है। मोताला महाराष्ट्र से हमारे श्रोता साथी हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर। पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, बाबू भाई। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, सना और अदीबा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, अनुराग मोहन। वैष्णव कॉलोनी सनावत से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री। आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शुभम बेंडे। आइए इन सभी साथियों की पसंद पर सुनते हैं फिल्म पा का ये गीत शिल्पा राव की आवाज़ में। गीत लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत है इलैया राजा का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल की गूंज और अब हम बढ़ते हैं अगले गीत की फरमाइश की ओर, जिसे लिख भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। राजकोट से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, बलौदा छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता साथी हैं दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने, तुषार करांगले, पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर,

नारायण इंगले नंदेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हमारे श्रोता हैं, मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी। अकोला से हमारे श्रोता हैं सुयश रॉय, अलका रॉय, दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा, चुटकी, शरद कुमार डोडवानी, आदर्श नगर मालौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना, मैंडी शर्मा, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हमारे श्रोता साथी हैं अभिजीत गम्हाणकर, राही, सरिता गम्हाणकर, प्रणिता, सिद्धांत गम्हाणकर, अर्जुन गम्हाणकर, टुकटुक, मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमारी, ये सभी साथी बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से हैं। और आइए इन सभी साथियों की पसंद पर सुनते हैं फिल्म चमेली का ये गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत है संदेश शांडिल्य का।

श्रोताओं, कार्यक्रम ईमेल की गूंज में बने रहिए स्वाति के साथ, और आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर, जिसे भेजा है हमारे साथियों ने सनावत से शेख मूसा मोहसिन, बुड़ाना से अशोक वर्मा राजकुमार, ग्राम पहरा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर चंद्र किरण प्रीति और छाया बंछोर, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब राम चबूतरा कालपी से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, पलक, लुबना और यश मंसूरी, बेरड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची, तनु करमरकर। इसी गीत को सुनना चाहा है जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां और जीनत जहां ने, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, और सतना एमपी से हमारे श्रोता साथी हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, माँ बमलेश्वरी धाम सांकरा जिला राजनांदगांव से हमारे श्रोता हैं नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू। साथ ही साथ गांधीबाग अंकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम। इसी गीत को सुनना चाहा है बुलढाणा वड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा मानकर, दीपाली और श्लोक ने। तो आइए अपने इन सभी श्रोता साथियों की पसंद पर सुनते हैं फिल्म बस इतना सा ख्वाब है का ये गीत। आवाजें हैं इसमें अलका याग्निक और शान की, गीत लिखा है गोल्डी बहल ने और संगीत है आदेश श्रीवास्तव का।

आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे साथी हैं जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई, यामिनी तिवारी और उमा तिवारी। रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता साथी हैं नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, उमा जाटव और कशिश जाटव। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा। जेल रोड बक्सर से असलम अंसारी, शमसुल हक और राजेश।

डी अंसारी, मधुबनी से मोहम्मद साबिर परवान, मेन रोड तिलहारा से हमारे श्रोता साथी हैं जिन्होंने इस अगले गीत की फरमाइश की है। प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, कुमारी सुजाता पोहरकार, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेबवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता। साथ ही साथ कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालौत से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानु पवार, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगराडे, साफिया अरहान खोकर और मोहम्मद हसनैन पवार। इसी गीत को सुनना चाहा है जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान ने। तो आइए अपने इन सभी श्रोता साथियों की पसंद पर सुनते हैं फिल्म पद्मावत का ये अगला गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म पद्मावत का ये गीत शिवम पाठक की आवाज में। गीत लिखा था एम तुराज ने और संगीत संजय लीला भंसाली का था। और आइए कार्यक्रम ईमेल की गूंज के आज के अंक में बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। और अगली फरमाइश हमारे इन सभी साथियों की है, जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। शाहजी नगर देगलूर से ये सभी साथी हैं। और अकलतरा से हमारे श्रोता साथी हैं दिलीप चंदन, निखिल चंदन, वसुंधरा चंदन, प्रांजल चंदन। चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू। जगदलपुर बस्तर से हमारे साथी हैं पुष्पांजलि नायडू, प्रीतम, अमृता, संतोष, दुर्गेश। राजौरी गार्डन नई दिल्ली से ध्वनि और सानवी। बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली। लोरमी चचेड़ी से हमारे श्रोता हैं जिन्होंने इस अगले गीत की फरमाइश की है, शंकर कोलाम, संतोषी कोलाम, संजय कोलाम, संध्या कोलाम, शिवम कोलाम। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, प्रणय, प्रसिद्धि, हीरामण शेंडे। जिला समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, सोनम सिंह। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हमारे श्रोता हैं अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना, कहा यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की, कहा पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया, हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
3: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
2: राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
4: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी

0: को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
3: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
2: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
4: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और CCTV तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
1: समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों

0: पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर

0: समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।
2: दोपहर समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गीत कंधा में। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की स्वरों में गाई इस गजल से। इस गजल को लिखा और इसका संगीत तैयार किया है जगजीत सिंह ने।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कार्यक्रम गीत गंथा में अब बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं स्टेबिन बैंड की आवाज में ये गीत। गीत लिखा है मीर ने और संगीत है हरीश सगने का।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है।

0: गिरवी रखने से बचा है तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर। कार्यक्रम है गीत गंधा और बढ़ते हैं गीत गंधा की अगली कड़ी की ओर। इस कड़ी में हम सुनते हैं, आइए, अभिजीत सावंत की आवाज़ में ये गीत। गीत लिखा है समीर अंजान ने, संगीत है हरदीप सिद्धू का।

0: संख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आबिदा परवीन की आवाज में ये गजल।

आइए पढ़ते हैं कार्यक्रम गीत गंधा की अगली कड़ी की ओर। कार्यक्रम गीत गंधा में अगला गीत हम सुनना चाहते हैं जो अंतिम गीत है उदित नारायण की आवाज़ में। गीत लिखा है फैज़ अनवर ने और संगीत है निखिल विनय का।

इस गीत के साथ कार्यक्रम गीत कंधा यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी कि 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर।

श्रोताओं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे से। शाम 5 बजे आप कार्यक्रम के आरंभ में सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। शाम 5:05 पर आप आनंद लेंगे गैर फिल्मी गीतों और भजन का, भजन संध्या में। शाम 5:30 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी आप सुन सकेंगे। शाम 6 बजे दिल्ली से हिंदी समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे विचार बिंदु का पुनः प्रसारण। शाम 6:10 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। शाम 6:20 पर आप आनंद ले सकेंगे लोकगीतों के कार्यक्रम गोधूली का। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर, और शाम को 6:45 पर आकाशवाणी केंद्र रायपुर से प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण किया जाएगा। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुन सकेंगे शाम 7:05 पर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल आप सुनेंगे शाम 7:20 पर, जिसमें सामान्य चर्चा होगी राष्ट्रीय पशुधन मिशन पर, एक पेड़ माँ के नाम, जन अभियान से पर्यावरण संरक्षण, इन विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही शाम 7:30 पर आप आनंद ले सकेंगे किसान वाणी कार्यक्रम का, जिसमें किसान गोष्ठी के अंतर्गत किसानों से उनके अनुभवों, विचारों और नवाचारों पर विचार विमर्श का आप लाभ उठा सकेंगे। साथ ही मंडी भाव और मौसम की जानकारी का भी आपको ज्ञान होगा। रात 8 बजे सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश का आनंद आप ले सकेंगे। रात 8:45 पर दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या का प्रसारण होगा हिंदी समाचारों का। इसके बाद रात 9 बजे आप अंग्रेजी समाचारों का प्रसारण सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से। रात 9:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा। रात 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अखिल भारतीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 10 बजे संगीत

का अखिल भारतीय कार्यक्रम कर्नाटक सैक्सोफोन यूएस प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। रात्रि 11 बजे दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी समाचार और रात 11:05 पर अंग्रेजी समाचार और इसके पश्चात हमारी सांध्यकालीन सभा 11:10 पर समाप्त होगी।

श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3:04 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। इस दौरान एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 1260 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे से आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे।

ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: ಶಿವನೆ ಗಜಿರಾಜ
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा, खड़गवा, रामेश्वरपुर, जाम दोहर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये सकालो, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, किशुनपुर, जमीरा, डांडपारा, दांतीढाब, घटगांव, बरवाली, कंडराजा, बरिमा, पेंट, घोड़ा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टान पारा, साजा पानी, कुदरा झरिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, सिंघीछा, बेहरामार, इंचपारा, कंचीरा, कोयलार, सागरपुर, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा और करतला में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये चचिया, बैगामार, तौलीपाली, गेराव, बताती, कोरकोमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गडरा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमा टिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 61 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राठरोड, झिंगोल, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तालदादर, हरदी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर। शाम के 5:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। ईश्वर की कृपा, भक्ति की मधुरता और संगीत की पवित्र नदी लेकर हम एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हैं कार्यक्रम भजन संध्या में। श्रोताओं, जीवन की भाग दौड़ तो चलती ही रहती है, लेकिन कुछ पल ठहर कर भक्ति भाव में डूबना और प्रभु का स्मरण करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा जीवन, पूरी दुनिया उसी प्रभु की कृपा पर ही टिकी हुई है।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या। कहा जाता है कि अगर सच्ची भक्ति है तो हमारे विचार, व्यवहार और कर्म में भी वो भक्ति जरूर दिखाई देती है। जब मन में श्रद्धा और हृदय में प्रेम हो तो हर कार्य पूजा बन जाता है। फिर क्यों ना इसी व्यवहार और विचार के जरिए हम हर किसी के सुख दुख के साथी भी बने।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या। श्रोताओं, जहां भगवान की भक्ति है वहां सुकून है। कहते हैं भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। ये भक्ति किसी शक्ति से कम नहीं होती।

हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। इस प्रेरक भक्ति रचना के साथ ही कार्यक्रम भजन संध्या समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। युवा श्रोताओं के लिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, आज के युवाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियम और आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। दोस्तों, ज़िंदगी में शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जिसने कभी किसी का इंतज़ार ना किया हो, कभी किसी अपने के लौट आने का, कभी किसी सपने के पूरे होने का, कभी एक अच्छी खबर का और कभी सिर्फ एक मुस्कान का। लेकिन क्या इंतज़ार केवल घड़ी की सुइयों से मापा जा सकता है? क्या इंतज़ार सिर्फ दिनों, महीनों और सालों का नाम है? शायद नहीं, क्योंकि कई बार इंतज़ार समय का नहीं, एहसासों का होता है। एक ऐसा एहसास जो दिल को सुकून दे, एक ऐसा एहसास जो यह यकीन दिलाए कि कोई हमारा है। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है, कुछ इंतज़ार कैलेंडर नहीं गिनते, वे दिल की धड़कनों में दर्ज होते हैं। दोस्तों, बचपन को याद कीजिए, जब स्कूल से लौटते समय हम घर पहुंचने का इंतज़ार करते थे। क्यों? क्योंकि वहां माँ की आवाज़ हमारा इंतज़ार कर रही होती थी। वह इंतज़ार समय का कम और अपनापन महसूस करने का ज़्यादा होता था। फिर हम बड़े हुए और इंतज़ार के मायने भी बदल गए। अब हम किसी संदेश का इंतज़ार करते हैं, किसी कॉल का इंतज़ार करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का इंतज़ार करते हैं जो हमारे लिए खास हो। कभी कभी मोबाइल स्क्रीन बार बार देखने के बावजूद कोई संदेश नहीं आता, लेकिन दिल फिर भी उम्मीद लगाए रखता है, क्योंकि उसे उस शब्दों का नहीं, उस व्यक्ति के एहसास का इंतज़ार होता है, और यही एहसास इंतज़ार को ज़िंदा रखते हैं। ज़िंदगी का हर बड़ा सपना भी एक इंतज़ार मांगता है। एक छात्र परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार करता है, एक कलाकार अपनी मेहनत को पहचान मिलने का इंतज़ार करता है, एक किसान बारिश का इंतज़ार करता है। लेकिन इन सब के पीछे सिर्फ समय नहीं होता, पीछे होता है विश्वास कि एक दिन मेहनत रंग लाएगी। दोस्तों, जब हम किसी मंजिल का इंतज़ार करते हैं तो दरअसल हम उस खुशी का इंतज़ार कर रहे होते हैं जो मंजिल मिलने पर महसूस होगी। यानी हम समय नहीं, एक एहसास का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कभी कभी इंतज़ार बहुत लंबा हो जाता है, इतना लंबा कि लगता है जैसे सब कुछ थम गया हो। लेकिन सच तो ये है कि इंतज़ार हमें बहुत कुछ सिखाता है, धैर्य सिखाता है, उम्मीद सिखाता है, और सबसे बड़ी बात, ये हमें खुद से मिलवाता है। क्योंकि जब कोई हमारे पास नहीं होता, तब हम अपने भीतर झांकना सीखते हैं। हम समझते हैं कि हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, और हमारी इच्छाएं कितनी सच्ची हैं। इसलिए हर इंतज़ार बुरा नहीं होता, कुछ इंतज़ार हमें बेहतर इंसान बना देते हैं। आज अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई इंतज़ार है तो उसे सिर्फ बीतते हुए समय की तरह मत देखिए। हो सकता है वो इंतज़ार आपको कुछ सिखाने आया हो सकता है वो आपको और मजबूत बना रहा हो, और हो सकता है कि जिस एहसास का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। याद रखिए, इंतज़ार सिर्फ घड़ी की सुइयों का नहीं होता, इंतज़ार उन भावनाओं का भी होता है जो हमें जीने की वजह देती है, उन रिश्तों का भी होता है जो दिल में बसे होते हैं, और उन सपनों का भी होता है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों, आज की चर्चा बस यहीं तक। अब आइए सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म सुरमा से, जिसमें आवाज़ है दिलजीत दोसांझ की, गीतकार हैं गुलजार और संगीत से सजाया है शंकर एहसान ने।

स्वागत है दोस्तों आपका क्रम एक कलाकार में। आज के हमारे खास कलाकार हैं 90s के मशहूर गायक। अपनी मधुर और भावपूर्ण आवाज़ से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले कुमार सानू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुमार सानू का असली नाम केदारनाथ भट्टाचार्य है? संगीत उन्हें विरासत में मिली क्योंकि उनके पिता स्वयं संगीत से जुड़े थे। बचपन से ही सुरों के बीच पले बढ़े कुमार सानू ने आगे चलकर अपनी अलग पहचान बनाई। दोस्तों, इनके बारे में आगे बात और भी करेंगे, पर उससे पहले आइए सुनते हैं इनकी आवाज़ में ये प्यारी सी।

दोस्तों, कुमार सानू पर महान गायक किशोर कुमार का गहरा प्रभाव रहा। शुरुआती दौर में उनकी गायिका में किशोर कुमार की झलक भी सुनाई देती थी। कुमार सानू के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड भी दर्ज है। उन्होंने एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड किए थे। ये उनकी मेहनत, लगन और संगीत के प्रति समर्पण को दर्शाता है। दोस्तों, इनके बारे में आगे और भी बात करेंगे, पर उससे पहले आइए सुनते हैं उनकी आवाज़ में एक और प्यारी सी गीत।

दोस्तों 90s में अगर प्यार भरे गानों की बात हो और कुमार सानू का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। उनकी आवाज़ प्यार दर्द जज्बातों को बेहतर खूबसूरती से बयां करती है। इन्होंने लगातार 5 वर्षों तक फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड जीतकर इतिहास रचा। ये उपलब्धि आज भी उन्हें भारतीय संगीत जगत में सबसे सफल गायकों में शामिल करता है। इसी के साथ आइए दोस्तों सुनते हैं इनकी आवाज़ में एक और प्यारी सी गीत।

दोस्तों ये थे कुमार सानू जी से जुड़ी कुछ खास बातें और उनके कुछ यादगार गीत। फिर मिलेंगे एक नए कलाकार और उनसे जुड़ी कुछ खास बातों के साथ। इसी के साथ क्रम एक कलाकार बस यहीं तक।

दोस्तों वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। जाने से पहले मैं बता दूं आपको कल के मुख्य आकर्षण। कल आप सुनेंगे एक नए विषय पर युवा सोच और क्रम युवा पसंद। तो दोस्तों अब इजाजत दीजिए मुझे यानी आपकी दोस्त प्रियम को। नमस्कार।

0: युवा साथी सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। शाम के 6 बजने वाले हैं समाचार, कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय

0: छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। देश भर में इस तरह के 1600 केंद्र स्थापित किए जाने हैं और अब तक 24 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों में अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्चा कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में 1 विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं और अब प्रस्तुत है विचार बिंदु का पुनः प्रसारण। विषय है मन, संकलन और वाचन स्वर विजय कुमार का।
3: हमारे जीवन में यदि किसी एक शक्ति का सबसे अधिक प्रभाव है तो वो है मन। मन दिखाई नहीं देता, उसे छुआ नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को हर पल महसूस किया जा सकता है। हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं, सपने, निर्णय और कर्म सब मन से ही संचालित होते हैं। मन कभी हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है तो कभी निराशा और भ्रम में भी डाल देता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में मन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। संत कबीर ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।

0: ये छोटी सी पंक्ति मन की अपार शक्ति को बहुत सरलता से समझा देती है। मन एक ऐसा दर्पण है जिसमें हमारे व्यक्तित्व की पूरी तस्वीर दिखाई देती है। यदि मन स्वच्छ है तो जीवन सुंदर लगता है, यदि मन अशांत है तो सारी सुविधाएं होने के बाद भी सुख का अनुभव नहीं होता। आज के आधुनिक युग में विज्ञान ने अद्भुत प्रगति की है, मनुष्य चांद और मंगल तक पहुंच गया है, लेकिन अपने मन को समझना और नियंत्रित करना अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। मन की स्थिति ही जीवन की दिशा तय करती है। जब हम छोटे होते हैं तब हमारा मन बिल्कुल निर्मल होता है, उसमें न कोई छल होता है न कोई द्वेष। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अनुभवों, परिस्थितियों और समाज के प्रभाव से मन में अनेक प्रकार के विचार जन्म लेते हैं। कुछ विचार सकारात्मक होते हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जबकि कुछ नकारात्मक विचार हमें पीछे खींचने लगते हैं। इसलिए ये भी बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को सही दिशा दें। मन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी चंचलता है, वो एक स्थान पर टिकना नहीं चाहता। कभी वो अतीत की यादों में खो जाता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में भटकने लगता है। वर्तमान में रहना मन के लिए सबसे कठिन कार्य माना जाता है। यही कारण है कि योग और ध्यान की परंपरा में मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करने पर विशेष बल दिया गया है। जब मन वर्तमान में रहता है तब व्यक्ति अधिक शांत, संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। मन का हमारे स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि मन प्रसन्न हो तो शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, छोटी छोटी समस्याएं भी आसानी से सुलझ जाती हैं। इसके विपरीत यदि मन चिंता, तनाव और भय से घिरा हो तो शरीर भी बीमार पड़ने लगता है। मन और विचारों का संबंध बहुत गहरा है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनता जाता है। यदि हम हर परिस्थिति में अच्छाई देखने का प्रयास करें तो हमारा मन सकारात्मक बना रहता है। सकारात्मक सोच हमें कठिन समय में भी उम्मीद देती है। जीवन में सफल होने वाले अधिकांश लोग सकारात्मक सोच के महत्व को समझते हैं। वो समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधानों पर विशेष ध्यान देते हैं। मन का संबंध भावनाओं से है। प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और अहंकार जैसी भावनाएं मन में ही जन्म लेती हैं। प्रेम और करुणा मन को विशाल बनाते हैं, जबकि क्रोध और ईर्ष्या मन को संकीर्ण बना देते हैं। जब मन में प्रेम और अपनापन होता है तब रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन में खुशियां बढ़ती हैं। इसलिए हमें अपने मन में अच्छे भावों का विकास करना होगा। मन की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण कठिन परिस्थितियों में देखने को मिलता है। कई लोग विपरीत हालात में भी हार नहीं मानते और अपने मनोबल के बल पर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। इसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है।
1: विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे मन विषय पर विजय कुमार का संकलन, वाजन स्वर भी विजय कुमार का था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग वसुधा सेन के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाछू 12 में नवा समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण हुए है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह अपन छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में स्वच्छता मित्र मन के सम्मान करीन और उनला मेडिकल किट प्रदान करीन और प्रदेश के सबो सरकारी और निजी स्कूल मन में अवैया 16 ले साला प्रवेश उत्सव मनाए जाहे। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 पूरा होय ऊपर आज रायपुर में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 के ये कार्यकाल ऐतिहासिक रहे है। उखर नेतृत्व में नवा समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण हुआ थे। उमन कहिन कि जनजातीय वर्ग बरघलो ये 12 स्वर्णिम रहे है। ये दौरान 58 करोड़ ले ज्यादा जनधन खाता खोले गए है।

0: छत्तीसगढ़मा पाछू ढाई बच्छरमा 10 लाख ले ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बने हैं। ये मौकामा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह विकास के संग विरासत लघलो बढ़ाए के काम करे है। उमन कहिन कि पाछू 12 बच्छरमा भारत के अर्थव्यवस्था मजबूत होए है। 25 करोड़ लोगन मन ह गरीबी रेखा ले ऊपर आए हैं। एखरे संग दुनिया में भारत के सम्मान घलो बढ़े है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह अपन छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में स्वच्छता मित्र मन के सम्मान करीन और उनला मेडिकल किट प्रदान करीन। ये मौका में ओमन स्वच्छता कर्मी मन ले संवाद करत हुए स्वच्छ भारत अभियान में उखर समर्पण परिश्रम और योगदान के सराहना करीन। श्री सिंह कहिन कि स्वच्छता केवल अभियान न है बल्कि जन भागीदारी ले राष्ट्र निर्माण के सशक्त माध्यम हरय। ये मौका में केंद्रीय मंत्री भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा ऊपर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। एकर बाद केंद्रीय मंत्री श्री सिंह कलेक्ट्रेट परिसर करा स्थित ऑक्सीजोन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण घलो करें। उन्हें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय ले रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात करें। इबेरा में मुख्यमंत्री कहिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय और निरंतर संवाद की भावना विकास काम मल्ला नवा गति प्रदान करे है। एकर पहले केंद्रीय मंत्री श्री सिंह काली रायपुर में रेशम खादी ग्रामोद्योग हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के समीक्षा करीन। केंद्रीय मंत्री अधिकारी मल्ला निर्देशित करीन कि अलग अलग योजना मन के माध्यम ले ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्र के उद्यमी मन के वार्षिक आय 5 लाख रुपया तक पहुंचाए बर विशेष प्रयास करे जाए। मुख्यमंत्री विष्णु देसाय आज रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुईन। ये मौका में मुख्यमंत्री NHM कर्मचारी मन के 33 दिन के हड़ताल अवधि के वेतन दे जाए के घोषणा करीन। उमन NHM कर्मचारी मनला स्वास्थ्य सेवा के रीढ़ बतावत हुए कहिन कि प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र मन में घलो स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाए में उखर अहम भूमिका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों शौर्य चक्र ले सम्मानित सुरक्षा बल के जवान मन ले आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा नवा रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय में मुलाकात कर उनला बधाई और शुभकामना दीन। ये दौरान उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा शौर्य चक्र ले सम्मानित इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट, इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख और राइफलमैन भोजराम साहू के साहसिक काम मन के सराहना करीन। गरियाबंद जिला में सुरक्षा बल के टीम तलाशी अभियान के दौरान माओवादी मन के एक ठन बड़े हथियार डंप बरामद करे हैं। मिले जानकारी के अनुसार CRPF और जिला पुलिस के संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकले रहीन। इसी दौरान दंडई पानी के जंगल में माओवादी मन डहार ले लुका के रखे 4 किलो के IED कुकर बम टिफिन बम हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद करे हैं। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बाकी समाचार को ती। प्रदेश के सबो सरकारी और निजी स्कूल मन में अवैया 16 जून ले साला प्रवेश उत्सव मनाए जाहि। प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचैया नव प्रवेशी लयिका मन के तिलक लगा के स्वागत करे जाहि। ये मौका में विद्यार्थी मनला निःशुल्क पाठ्य पुस्तक यूनिफॉर्म और साइकिल के वितरण करे जाहि। उन्हें बोर्ड और स्थानीय परीक्षा में टॉप करैया लयिका मनला घलो सम्मानित करे जाहि। स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश के स्कूल मन में नवा शिक्षा सत्र ले राष्ट्रगान राष्ट्रगीत और राज्यगीत समेत अलग अलग गतिविधि मनला अनिवार्य रूप ले कराए जाए के निर्देश जारी करे हैं। निर्देश में कहे गए है कि बिहनिया के प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान राष्ट्रगीत और आने आने गतिविधि होगी जबकि मध्यान्ह भोजन के बेरा भोजन मंत्र और छुट्टी के बेरा राज्य गीत के सामूहिक वाचन कराए जाए। इसी बीच लोक शिक्षण संचालनालय 16 जून ले ही

ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य करे जाए के निर्देश दे हैं। संचालनालय ह अधिकारी कर्मचारी और शिक्षक मन ल डिजिटल माध्यम ले हाजिरी दर्ज करे बर कहे हैं। स्कूल मन में VSK ऐप और कार्यालय मन में बायोमेट्रिक प्रणाली ले उपस्थिति दर्ज होही। ऑनलाइन हाजिरी नहीं मिले ऊपर जून माह के वेतन रोके जा सकत है। उन्हें अब ऑफलाइन छुट्टी आवेदन पूरी तरह ले प्रतिबंधित रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है आज रायपुर में राजनांदगांव के प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटर महक नरवासे ले सौजन्य मुलाकात करें। ये मौका में श्री साय है भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम के आगामी श्रीलंका दौरा पर T20 और वनडे टीम के उपकप्तान नियुक्त करे जाए ऊपर सुश्री नरवासे ला बधाई और शुभकामना दें। रायपुर में आज देवर्षि नारद जयंती पत्रकार सम्मेलन सम्मान समारोह आयोजित करेगी। ए बच्छर के देवर्षि नारद सम्मान वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत शर्माला प्रदान करेगे है। उन्हें बब्बन प्रसाद मिश्र सम्मान महिला पत्रकार आकांक्षा तिवारी ला और रमेश नैयर सम्मान फोटो जर्नलिस्ट रूपेश यादव ला प्रदान करेगे है। ये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवा रायपुर स्थित IIIT के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश व्यास और मुख्य वक्ता DD News के वरिष्ठ सलाहकार संपादक प्रखर श्रीवास्तव रहीन। जांजगीर चांपा जिला के पतोरा थाना क्षेत्र में आज भारतमाला सड़क कर एक ठन ट्रेलर और पिकअप के बीच हुए टक्कर में पिकअप सवार दो जन युवक मन के मौत हो गए। उन्हें 3 जन घायल हो गए। घायल मल्ला अस्पताल में भर्ती कराए गए है। राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में 36वां राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष महिला और सब जूनियर बालक बालिका प्रतियोगिता शुरू हो गए है। एकर आयोजन भारतीय कायाकिंग कैनोइंग और छत्तीसगढ़ एंड कैनोइंग के संयुक्त तत्वाधान में करे जाते है। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहाल ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिला के चिट्ठी के प्रसारण काली संध्या 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के सब्बो आकाशवाणी केंद्र एके संग्रह रिले कर ही ये बखत के अंक मा गरियाबंद जिला के बारे में जानकारी दे जाही। और अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 1-2 दिन के भीतर मानसून के छत्तीसगढ़ में प्रवेश की संभावना जताए है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड और उड़ीसा पहुंच गए है। मानसून के आगू बढ़े पर परिस्थिति सामान्य बने हुए है। उन्हें एक ठन द्रोणिका मध्य प्रदेश उत्तर छत्तीसगढ़ और झारखंड के ऊपर बने हुए है। एकर असर ले अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कुछ एक जगह में हल्का ले मध्यम वर्षा हुए और गरज चमक के संग छीटा पड़े के संभावना है। उन्हें 1-2 जगह में अंधर चले और गाज गिरे के चेतावनी दे गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घों फिर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाछू 12 बच्छर में नवा समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण हुए है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह अपन छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में स्वच्छता मित्र मन के सम्मान करीन और उनला मेडिकल किट प्रदान करीन और प्रदेश के सब्बो सरकारी और निजी स्कूल मन में अवैया 16 जून ले साला प्रवेश उत्सव मनाए जाहे। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सरगुजिया और सादरी लोकगीत। कलाकार हैं कुमिता दास और तिलन साय तिग्गा और साथी। पहले सुनिए कुमिता दास और साथियों के स्वर में ये देवी भजन।

कुमिता दास और साथियों को अभी आप सुन रहे थे इस सरगुजिया देवी भजन में। लोकगीतों के कार्यक्रम गोधूली में अब आप सुनेंगे तिलन साय तिग्गा और साथियों के स्वर में ये सादरी लोकगीत।

इस डोमकेज सादरी लोकगीत के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं और अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी।

जी हाँ श्रोताओं, रोज़ शाम आती थी मगर ऐसी न थी। शाम अपने साथ कई रंग लेकर आती है, कहीं यादें, कहीं एहसास और कहीं ढेर सारी उम्मीदें। ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म इम्तिहान से। मजरूह के बोल थे, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज़ थी लता मंगेशकर की। माधुरी कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे गुलजार का लिखा और हेमंत कुमार का संगीतबद्ध किया फिल्म खामोशी से ये गीत। आवाज़ है किशोर कुमार की।

हर रोज़ के तीनों पहर में, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, या फिर शाम के बाद आने वाली घनी रात हो, कुछ न कुछ अलग तो होता ही है साथियों। और जब पुरसुकून शाम हो और उसमें कुछ ख्वाहिशें दिल की शामिल हो जाएं, तो फिर शाम हसीन हो जाती है, कुछ इस गीत की तरह।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म दुल्हन एक रात की से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खां के बोल थे, संगीत दिया था मदन मोहन ने। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का माधुरी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: अरे यार, ये रेडियो को क्या हुआ? आवाज साफ ही नहीं आ रही। ये खर खर की आवाज कैसी है?
2: अरे बुद्धू, एंटीना नहीं, अपना अंदाज बदलो। अब अंबिकापुर रेडियो पुरानी यादों से निकलकर आपके कानों में जादू करने आ गया है।
1: मतलब?
2: मतलब अब आकाशवाणी अंबिकापुर सुनिए 100.2 FM पर।
3: यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे पंगा मत लेना मेरी जान।
1: अरे वाह, ये तो एकदम साफ है, जैसे कोई कान में गा रहा हो।
2: यही तो है FM 100.2 की स्टीरियो क्वालिटी। अब सुबह की भक्ति हो या शाम के गाने, आवाज मिलेगी बिल्कुल मक्खन जैसी साफ।
4: अच्छा, तो अभी ट्यून करता हूँ
5: आकाशवाणी अंबिकापुर 100.2 FM। आवाज वही, अंदाज नया।
0: मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
6: रहे कुछ ही पलों प्रादेशिक समाचार।
7: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
8: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
9: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
8: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
10: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
11: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
12: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
11: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
12: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
11: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
12: क्यों?
11: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
13: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
14: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
15: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
14: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
15: आएंगे कैसे मालिक,

0: हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 12 वर्षों के कार्यकाल में नए समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण हुआ है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया तथा उन्हें मेडिकल किट प्रदान किए। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आगामी 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा और मौसम विभाग ने आगामी 1-2 दिनों के भीतर मानसून के छत्तीसगढ़ में प्रवेश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आज रायपुर में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्षों का ये कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है। उनके नेतृत्व में नए समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है।
6: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है और 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए अद्भुत काम किया है। आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सबका जनधन खाता हो, सबके घर में शौचालय हो, सबका पक्का मकान हो, सबके घर में बिजली हो, उसी तरह से सबके घर में नल द्वारा पानी पहुंचे, इसके लिए भी जल जीवन मिशन की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है।
5: इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के साथ विरासत को भी बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं।
7: प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि कहा, विरासत के साथ विकास या विकास के साथ विरासत, दोनों को लेने का काम किया। और वही नहीं, दुनिया में भारत के सम्मान को ऊंचा किया। 32 देशों ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया, भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया। नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र से काम किया है।
5: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया तथा उन्हें मेडिकल किट प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छता कर्मियों से संवाद करते हुए स्वच्छ भारत अभियान में उनके समर्पण, परिश्रम और योगदान की सराहना की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने कलेक्टोरेट परिसर के समीप स्थित ऑक्सीजोन में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने कल रायपुर में रेशम, खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्र के उद्यमियों की वार्षिक आय 5 लाख रुपए तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने NHM कर्मचारियों के 33 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन दिया।

0: जाने की घोषणा की। उन्होंने एनएचएम कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बताते हुए कहा कि प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका है।
1: सरकार आप लोगों के साथ हम सब लोग खड़े हैं। आप लोग लंबे समय से हड़ताल में थे, उसका वेतन रुका हुआ है, तो मैं आज उसकी घोषणा करता हूं। आप लोगों के हड़ताल समय का जो वेतन है उसको सरकार देगी और आप सब लोग इसी तरह से आगे भी सेवा का काम करते रहें, आप सभी लोगों से यह अपेक्षा है।
0: प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आगामी 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण किया जाएगा। वहीं बोर्ड और स्थानीय परीक्षाओं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्यगीत सहित विभिन्न गतिविधियां अनिवार्य रूप से कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और अन्य गतिविधियां होंगी, जबकि मध्यान्ह भोजन के समय भोजन मंत्र और छुट्टी के समय राज्य गीत का सामूहिक वाचन कराया जाएगा। इस बीच लोक शिक्षण संचालनालय ने 16 जून से ही ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य किए जाने के निर्देश दिए हैं। संचालनालय ने अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को डिजिटल माध्यम से हाजिरी दर्ज करने को कहा है। स्कूलों में वीएसके ऐप और कार्यालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज होगी। ऑनलाइन हाजिरी नहीं मिलने पर जून माह का वेतन रोका जा सकता है। वहीं अब ऑफलाइन छुट्टी आवेदन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में राजनांदगांव की प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटर महक नरवासे से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर श्री साय ने भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम के आगामी श्रीलंका दौरे के लिए T20 और वनडे टीमों का उपकप्तान नियुक्त किए जाने पर सुश्री नरवासे को बधाई और शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों शौर्य चक्र से सम्मानित सुरक्षा बल के जवानों से आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नवा रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने शौर्य चक्र से सम्मानित इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट, इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख और राइफलमैन भोजराम साहू के साहसिक कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन जवानों की बहादुरी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने तलाशी अभियान के दौरान माओवादियों का एक बड़ा हथियार डंप बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम तलाशी अभियान के लिए निकली थी। इसी दौरान दंडई पानी के जंगल में माओवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए 4 किलो का आईईडी, कुकर बम, टिफिन बम, हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया। रायपुर में आज देवर्षि नारद जयंती पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस वर्ष का देवर्षि नारद सम्मान वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत शर्मा को प्रदान किया गया। वहीं बबन प्रसाद मिश्र सम्मान महिला पत्रकार आकांक्षा तिवारी को और रमेश नैयर सम्मान फोटो जर्नलिस्ट रूपेश यादव को प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवा रायपुर स्थित IIIT के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश व्यास और मुख्य वक्ता DD न्यूज के वरिष्ठ सलाहकार संपादक प्रखर श्रीवास्तव थे। राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष और महिला तथा सब जूनियर बालक बालिका प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इसका आयोजन भारतीय कायाकिंग कैनोइंग और छत्तीसगढ़ कायाकिंग एंड कैनोइंग के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 24 राज्यों से करीब 800 खिलाड़ी और अधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का समापन कल 14 जून को होगा। जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा थाना क्षेत्र में आज भारतमाला मार्ग के पास एक ट्रेलर और पिकअप के बीच हुई टक्कर में पिकअप सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कोरबा जिले के केरवा गांव से पिकअप से 5 लोग भिलाई जा रहे थे। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में गरियाबंद जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी एक दो दिनों के भीतर मानसून के छत्तीसगढ़ में प्रवेश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून

0: झारखंड और ओडिशा पहुंच चुका है। मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां सामान्य बनी हुई हैं। वहीं एक द्रोणिका मध्यप्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़ और झारखंड के ऊपर बनी हुई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।
1: आज मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये मेघ गर्जन का गतिविधि और वर्षा का गतिविधि जो है आगामी 7 दिन तक भी रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों में लगभग 1 से लेकर 3 डिग्री का गिरावट आ चुका है और दक्षिण छत्तीसगढ़ में मॉनसून का एंट्री आगामी 2 से लेकर 3 दिन में होने की कंडीशंस फेवरेबल बन रहे हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 12 वर्षों के कार्यकाल में नए समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण हुआ है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया तथा उन्हें मेडिकल किट प्रदान किए। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आगामी 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा और मौसम विभाग ने आगामी 1-2 दिनों के भीतर मानसून के छत्तीसगढ़ में प्रवेश की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले हम आपको बताएंगे हमारी इसी सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से बस कुछ ही पलों बाद यानी शाम 7:05 पर पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल शाम 7:20 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का प्रसारण समय है शाम 7:30। सोशल मीडिया की गूंज कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आपके लिए लेकर आएंगे रात 8 बजे। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर। अखिल भारतीय संस्कृति पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती रात 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले करेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 बजे।

अभी हमने आपको बताया हमारी इसी सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब जाने हमारे केंद्र से कल दिनांक 14 जून को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है 5:53 पर। सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना प्रकाश किरण। ये कार्यक्रम सुबह 6:30 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। रामचरितमानस का गायन आप सुनेंगे सुबह 6:35 पर। खेती की बात में सामायिक सुझाव दिए जाएंगे सुबह 6:45 पर।

लोक गीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। भारतीय प्रसारण की 90 साल की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर विशेष कार्यक्रम देश की आवाज आकाशवाणी पर आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे सुबह 7:10 पर। जनसंपर्क से प्राप्त सूचना और फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का प्रसारण समय है सुबह 7:30।

सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे गांव कर कहनी। कल का शीर्षक है परीक्षा, आलेख शिवव्रत सिंह पावले का, प्रस्तुतकर्ता हैं प्रमेंद्र कुमार। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे सामुदायिक गीत प्रशिक्षण पाठ के अंतर्गत कन्नड़ भाषा के गीत का प्रशिक्षण पाठ। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन पेश करेंगे सुबह 9:00।

कार्यक्रम नए तराने आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 10 बजे। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद पेश करेंगे सुबह 11:05 पर। मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग पेश करेंगे दिन में 12 बजे। लोक गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे दिन में 12:30 पर। खेती की बात का पुनः प्रसारण किया जाएगा दिन में 1:05 पर। बहनों के लिए घर आंगन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा दिन में 1:10 पर।

फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज पेश करेंगे। दिन में 1:40 पर गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। अब पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मेहदी हसन की गाई इस प्यारी सी गजल से।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
3: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी अंबिकापुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे गुलाम अली की आवाज में ये गजल।

0: गुलाम अली की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गजल।
1: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
2: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
1: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
2: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
1: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी अंबिकापुर से। संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07774230600।
0: और इसी के साथ सुगम संगीत का रजनीगंधा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। किसान भाइयों के लिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

0: अग्नु भैया राम राम।
1: राम राम परसु भैया।
0: अग्नु भैया देखा शनिवार के दिन में तो हमन विशेष कार्यक्रम करथन और एकर अलावा जो पशुपालन के संबंध में हमन बातचीत करथन।
2: हाँ भाई देखा हमन सप्ताह में एक दिन पशुपालन पर रखे ही और ये दिन हमन पशुपालन से संबंधित बातचीत करती काबर की खेती बाड़ी से जुड़ल चीज है। और अगर कोई किसान है तो मान के चला कि ओकर यहाँ पशुधन हो ही और आजकल तो देखा पशुधन के जो लगातार गिरावट आत रही उमें अचानक के को बढ़ोतरी दिखत है कहे कि रासायनिक खाद के किल्लत ला भी किसान भाई मन समझता है और दूध कर उपयोगिता ला भी समझता है तो ये दोनों चीज समझ गए हैं किसान भाई मन तेकर से हर किसान हर अपन घरे कम से कम एगो दूगो चारगो गाय रखता है
0: और दोनों साथ साथ में भी चले लगनो भी है खेती बाड़ी और पशुपालन दोनों एक दूसर कर पूरक हवे और हमन देखथन कि एक बड़ा महत्वपूर्ण योजना है राष्ट्रीय पशुधन मिशन और पशुपालन और डेयरी विभाग कर प्रमुख योजना एला कहल जाते एकर उद्देश्य सरकार बतायल कि पशुपालन ला लाभकारी व्यवसाय बनाना है रोजगार बढ़ाना है पशु मन कर नस्ल सुधारना है चारा उपलब्धता बढ़ाना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला यही के माध्यम से हमन ला मजबूत करना है। तो 2021 से लागू हो रही और अभी के हालत में पूरा देश भर में योजना संचालित है।
2: एक आंकड़ा के अनुसार पूरा देश भर में एक जो अलग अलग परियोजना एक बनाई है तो वो

0: परियोजना के तहत लगभग 3800 से अधिक पशुपालन परियोजना स्वीकृत करल जा चुकी से एकर से अनुमान लगाया कि लगभग 1200 करोड़ रुपया से अधिक एकर पर सब्सिडी भी दिल जा चुकी से।
1: एमे जो अगनो भैया पशुपालन में उद्यमिता पर विशेष जोर है, उद्योग के रूप में रोजगार के रूप में हमन पशुपालन कर सकी, जैसे बकरी पालन करत हन, भेड़ पालन, सुकर पालन, ग्रामीण कुक्कुट पालन, चारा उत्पादन इकाई बर भी एमे हमला सरकार मदद करे।
0: एकर संगे संगे एमे ये भी है कि नस्ल सुधार कार्यक्रम जो चलते आए, उच्च गुणवत्ता वाला जो नस्ल है जिनमें ज़्यादा दूध देते हैं उमल का संरक्षण करल जाता है, संवर्धन करल जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि वो जो प्रजाति है, वो जो नस्ल है वह बने रहे और कृत्रिम गर्भाधान करके आधुनिक प्रजनन तकनीक ला बढ़ावा दिया जाता है। इसमें एक चीज़ और देखल जाता है कि जो कृत्रिम गर्भाधान करता है तेमें बछिया ही जन्मता है, 90% से अधिक बछिया जन्म लेता है, तेमें गाय का संख्या में ही बढ़ोतरी होते है। संगे संगे चारा और पशु आहार विकास कर भी हमें योजना है। ऐसा नहीं कि खाली पशुधन विकास में खाली पशुपालन कर बात है, पशु मन चारा कैसे खाई ओकर भी व्यवस्था करल गई से, चारा पौष्टिक चारा और किसान भाई मल्ला दे चारा उत्पादन करे पर जो चारा है ओकर बीज उपलब्धता, चारागार चारागाह विकास करे कर व्यवस्था करल जाता है।
1: एमे जो पूंजीगत अनुदान के बारे में भी व्यवस्था देल गई से अग्नु भैया, राष्ट्रीय पशुधन मिशन में हमन बात करत हन उद्यमिता विकास कार्यक्रम एकर अंतर्गत संचालित होयल, ओकर तहत में जो पात्र लाभार्थी मन है वो उमन ला परियोजना लागत कर 50% तक कम से कम अनुदान देहल जाए। अधिकतम जो अनुदान है जरूरत से ज़्यादा हम अगर देखब तो कोई बढ़िया उद्यमिता के रूप में काम करता है तो 50 लाख रुपया तक कर अनुदान में मिल सकता है। तो व्यक्तिगत जो पशुपालक मन है, किसान उत्पादक संगठन है, स्वयं सहायता समूह के लोग मन है, संयुक्त देयता समूह है जिमन ला JLG कथे, सहकारी संस्था मन है, सेक्शन 8 कर जो कंपनी मन है, ये सब अपना ऑनलाइन रूप में आवेदन कर सकते हैं।
0: और सब्सिडी मिलता है किसान भाई मिला तो हर भी लाभ का दायक है कि 4 इकाई से शुरू करता है कि 6 इकाई से शुरू करता है कि 12 इकाई से शुरू करता है, अलग अलग व्यवस्था है। हम तो देखती कि सरगुजे में कई जगह ऐसा गए ही कि 50 गाय से लेकर 100 गाय मतलब पालता है और दूध उत्पादन करता है, चारा कर विकास करता है, सब काम ले एक संगे करता है।
1: हम बातचीत भी करे हैं अलग अलग प्रोग्राम में।
0: और एक चीज देखते कि जो गोबर निकलता है वोला अपन खेत में डालते हैं और जैविक खेती करता है।
1: और यही में योजना हर अग्नोभिया अनुसंधान नवाचार विस्तार और पशुधन बीमा तक बढ़ी से आगे एक विस्तारीकरण हुई से, पशु आहार विकास कार्यक्रम भी हमें शामिल करल गई से, तो कुल मिला के कई तरफ से हमन देखत हन तो अतिरिक्त आय कर स्रोत विकसित करे कर सरकार का जो मंशा है ओमे पूरा ये योजना हर खरा उतरेल, ग्रामीण युवा मन ला भी स्वरोजगार मिल सकता है, महिला स्वयं सहायता समूह के लोग मन आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, अभी काम करत भी है ओमन। एकर अलावा सबसे बड़ा चीज़ है कि कुपोषण कम करने में मदद मिले, काबर की दूध उत्पादन भी होयल, अंडा उत्पादन भी होयल, मांस उत्पादन से भी इला जोड़ल गई से।
0: तो सब तरीका से देखा फायदा ही फायदा है, बस जाने की जरूरत है कि भाई पशुधन मिशन का है। किसान भाई मन जमन अभी शुरू नहीं भी करना है उमन भी चाहें तो एकर राशि लेके अनुदान लेके ऋण लेके और ये जो मिशन है इनमें भागीदारी निभा के और अपन आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं।
1: अग्नु भैया एक और बड़ा महत्वपूर्ण चीज के बारे में हमन गोट कर ले थी, एक पेड़ माँ के नाम, यह अभियान संचालित है और कर तीसरा चरण अब शुरू होने वाला है और शुरू हो चुकी से, तो हमारे प्रधानमंत्री जी अभियान ला शुरू करे रहीन और सीधे माँ से जोड़ करके एक संवेदना के साथ इला शुरू करे रहीन, काबर की पर्यावरण संरक्षण और मातृत्व सम्मान ला जोड़े कर उद्देश्य से योजना शुरू हुई और अभी हम देखत हन कि पूरे देश में करोड़ों पेड़ लग चुकी से एकर माध्यम से।
0: हाँ बस अब जगह मतलब सुरक्षा करे के जरूरत है, हम देखते कि पेड़ तो लगाते हैं लेकिन उसका सुरक्षा नहीं होत रही, तो निश्चित रूप से योजना में माँ ला जुड़ल गई से एक पेड़ माँ के नाम। तो कोई भी आदमी है अगर एक पौधा ला लगा ही अपने माँ के नाम से तो कर भावना है जुड़े रही, ओकर मन है जुड़े रही, दिल से वाला लगाही तो ओकर सुरक्षा भी करी। 10 गो 15 गो 20 गो पेड़ लगाए की जरूरत नहीं है, दिखाए बर एक ठो पौधा लगाए वाला पेड़ बनाए और माँ की तरह वाला देखभाल करें और ओकर सम्मान करें तभी और पेड़ बन के निकल पाए।
1: पर्यावरण संरक्षण ला जन भागीदारी से जोड़े बर अभियान शुरू हो रही और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ला कम करे में बहुत योगदान देहत है। लोग मन ला वृक्ष के प्रति जिम्मेदारी के कर भावना विकसित करता है। मातृत्व प्रकृति और जीवन के बीच संबंध ला योजना बहुत बढ़िया से रेखांकित करत है। हमन देखत हन कि देश भर में विद्यालय मन में, महाविद्यालय कॉलेज मन में, पंचायत भवन में, सरकारी संस्थान में, स्कूल में, सब जगह योजना चलता है और देश भर में लोग पौधा लगाते हैं, ओकर सुरक्षा भी करते हैं और धीरे धीरे जो नहीं भी लगाते हैं ना अग्नुभिया, वो सोचते हैं कि हमन ला भी इसमें योगदान देना चाहिए।
0: हाँ, जरूर देना चाहिए। हम देखत भी है कि लगातार पेड़ मन दिखत भी हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से कमी आई से जहाँ जहाँ उजाड़ रही। हमन भी शहर के आसपास देखते नहीं तो जहाँ जहाँ खाली जमीन रही सो जगह पेड़ पौधा मन दिखते हैं, तो यही बात ला बताना रही समझ ला और यही उद्देश्य से योजना हर चलता है कि जहाँ पेड़ लगे और वह सुरक्षित रहे और देखभाल भी हो बराबर।
1: उत्तर प्रदेश हमन कहब तो ये अभियान में सबसे अग्रणी राज्य, सबसे आगू आगू रहते हैं। हमार छत्तीसगढ़ कर भी नाम हुई, हमें छत्तीसगढ़ में भी बहुत पेड़ लगी से, सरगुजा क्षेत्र हो चाहे अंबिकापुर हो, सब जगह लगी से। तो पेड़ मनकर भूमिका तो बहुत हमार जीवन में रहल अग्नुभिया, और हमन भी लगाब, सब कोई लगाब, संकल्प लेकर लगाब तो जरूर कोई ना कोई रास्ता बनी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बढ़िया सकारात्मक हमन के परिणाम दिखी। तो मैं कहत रहन कि अब बेरा हो गई से हमारे प्रायोजित कार्यक्रम कर। ये कार्यक्रम सुनत ही कार्यक्रम है किसान वाणी और आज के दिन हमने एक अंतर्गत विशेष कार्यक्रम सुनब किसान गोष्ठी
0: लगे तो सुनल जाए।

0: हमन भी शहर के आसपास ले देखते नहीं, तो जहाँ जब खाली जमीन रही सोचा कि पेड़ पौधा मन दिखत है, तो यही बात ला बताना रही समझला। और यही उद्देश्य योजना हर चलाता है कि जहाँ पेड़ लगे और वह सुरक्षित रहे और देखभाल भी हो बराबर।
1: उत्तर प्रदेश हमन कहब तो ये अभियान में सबसे अग्रणी राज्य, सबसे आगू आगू रहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ कर भी नाम हुई, हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत पेड़ लगी से, सरगुजा क्षेत्र हो चाहे अंबिकापुर हो, सब जगह लगी से। तो पेड़ मनकर भूमिका तो बहुत हमारे जीवन में रहल अग्नु भैया, और हमन भी लगाब, सब कोई लगाब, संकल्प लेकर लगाब, तो जरूर कोई ना कोई रास्ता बनही और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बढ़िया सकारात्मक हमन के परिणाम दिखी। तो मैं कहत रहन कि अब बेरा हो गई से हमारे प्रायोजित कार्यक्रम कर, एक कार्यक्रम सुनत ही, कार्यक्रम है किसान वाणी, और आज के दिन हमने एक अंतर्गत विशेष कार्यक्रम सुनब किसान गोष्ठी
0: लगे तो सुनल जाए।

0: किसान गोष्ठी कार्यक्रम में राउर मनकर बहुत बहुत स्वागत करत ही। आज फिर से हमारे साथ में दूठो बड़का किसान मन है और एक जन युवा किसान दिखते हैं, एक हमारे पास बड़ा अनुभवी किसान है। अगनु भैया एक बार हमन परिचय करा दे थी सुनोइए भैया बहनी मन से, ओकर बाद में हमन बातचीत विस्तार पूर्वक करब।
1: परसों भैया देखा है हमारे जो किसान मनाई न है वह है श्री श्याम सुंदर राजवाड़े बकना खुर्द विकासखंड अंबिकापुर कर, और एक वह किसान है श्री परमेश्वर राम राजवाड़े, ये भोकुरा नावा पारा कर है अंबिकापुर।
0: दोनों जन कर बहुत बहुत स्वागत करत हैं हमारे कार्यक्रम में, और हमन बातचीत शुरू करब श्याम सुंदर जी से। श्याम सुंदर जी, राउर बताते हैं अपन खेती बाड़ी के बारे में, बकना खुर्द में राउर के घर भी है, खेती बाड़ी भी है
2: जी।
0: तो कब से खेती बाड़ी शुरू करें, कितना अनुभव है, का का चीज के खेती बाड़ी कर थी, कैसे लागत है राउर की बताई पूरा।
2: खेती बाड़ी हमार मुख्य धंधा है, हमन शुरू ले खेती बाड़ी करत रहन। आगू तो बहुत कष्ट होत रहिस, नांगर बैला मन है जोतत रहन, घास पैड़ा उखाड़े में सड़ाए गलाए में ढेरे दिक्कत होत रहिस। तो जैसे जैसे खेती बाड़ी में विकास होत गईस, बढ़िया बढ़िया बीज मिलत गईस, अब तो खेती करें तो वहाँ कुछ मुनाफा मिलिस, तो नांगर उंगर का साधन बनाएल हैं, ट्रैक्टर उक्टर, तो वहाँ जोताई कोड़ाई में आसान होगी, सब बढ़िया पानी उनी का सुविधा, बोर उर

0: आहे तो वहाँ सिंचाई उचाई बढ़िया कर लेथन तो साग भाजी के खेती वहाँ बहुत अच्छा होल। बरसात में तो धान के खेती होबे करेल लेकिन ओकर बाद में भी साग भाजी के खेती तो एकस करके मतलब खेती बाड़ी में बहुत ही अच्छा ढंग से खेती हुआ था है और विकास हुआ थे। और पहले जो कष्ट रही सो कष्ट हल्का होगी से।
1: पहले का कष्ट रही?
0: पहले अच्छा बीज नहीं मिलत रहीस तो उत्पादन भी कम होत रहीस, जिला अपन परिवार माला चलाए ले थोड़ा सा दिक्कत होत रहीस।
1: अभी कितना कितना उत्पादन मिलत है एक बार बताते अंदाजन?
0: पहले का अपेक्षा अभी उत्पादन दुगुना होगी से, काबर की उतरे में बहुत कष्टमय होत रही सब कुछ का सोसाइटियों में देह पर कमाए रहती तेहर बाँच जाते और फिर अपन जीवनों अपन चलत है वही में।
2: पहले रोरे ठीक कहा थी कि पहले तो धान वाला बुने वो ठहरा धान वाला बुने तो दुए तीन क्विंटल नहीं हुए एक एकड़ में।
0: हाँ।
2: नहीं हुए तो हुए नहीं तो होबो नहीं करे, घास से घास हो जाए।
0: हाँ।
2: अब तो देखब कि घास मतलब मारे पर दवाइयों है।
0: हाँ।
2: और रोपाई कर दें तो अच्छा धान।
0: हाँ, उत्पादन दोहरी होगी
1: वैज्ञानिक तरीके से होते
0: है। हाँ, वैज्ञानिक तरीका से।
2: अभी कितना एक एकड़ में कितने धान कमात हुई है अभी?
0: एक एकड़ में हाँ 19-20 क्विंटल लगभग।
2: हाँ 20 क्विंटल पहुँचाया धार था।
0: हाँ।
2: तो देखा पहले तो भाई 2-3 क्विंटल कर हम बात कर रहा था।
0: हाँ।
2: और अभी इतना ज़्यादा उत्पादन होते है तो खाद्यान्न कर तो बढ़ोतरी हुई और किसान मन मेहनत करते हैं और फायदा भी मिलता है परसों भी।
1: हाँ खेती बाड़ी में बदलाव आई से पहले कर समय और अभी के समय में बहुत बदलाव है।
0: जी जी
1: अब तो बीमारी कर भी पता चल जाए।
0: हाँ।
1: बीमारी कर दवा भी मिले।
0: हाँ।
1: सलाहकार मन भी मिलते हैं।
0: हाँ।
1: कंपनी वाला अलग देखते हैं।
0: हाँ।
1: विभाग के लोग कृषि विभाग के लोग अलग जानकारी।
0: हाँ।
1: तो उकर से फायदा तो बढ़ी से
0: बहुत फायदा बढ़ी से उकर से।
1: कितना खेत हुई राउर के?
0: तो 5 एकड़ कैसा है
1: तो अलग अलग खेती हो लो में कुछ में धान हो।
0: हाँ।
1: कुछ में सब्जी हो। कोई सब्जी विशेष लगा थी कि कुछ यही पारंपरिक रूप से खेती कर दी?
0: नहीं गोभी का सब्जी हो मिर्चा उर्चा।
1: अभी कहाँ लगी से?
0: अभी गोभी लगी से।
1: बकना में गोभी का खेती ज्यादा होल क्या?
0: हाँ
1: काबर एक से
0: गोभी में एक बार बहुत बढ़िया उत्पादन हो जाए और रेट भी बढ़िया मिल जाए और ओकर लायक जमीन भी आ है।
1: कौन तो, का जमीन होना चाहिए गोभी पर?
0: ओकर बलुआई जमीन जिसे बरसात हो एक बार तुरंत सूख जाए। ऐसे तो बरसात में भी एक बार बढ़िया पूरा खेत भर में बारी भर में गोभी का खेती हो जाते।
1: अग्नु भैया बड़ा बढ़िया बात है और इनकर से गोभी कर खेती के बारे में सीखब भी आगे थोड़ा सा।
2: हाँ भैया और बताओ अभी तो देखा शुरू करे ही गोठला तो हमारे जगह एक किसान बैठी ना युवा किसान है और अच्छा बात यह है कि कृषि में स्नातक है।
1: अच्छा।
2: पढ़ाई लिखाई करके अगर कोई खेती बाड़ी में भिड़ी से और बढ़िया युवा है और इनकर बातचीत अभी हम सुनती बड़ा बढ़िया बोलते भी और परमेश्वर राम राजवाड़े भोकरा कर रहे हैं और भोकरा हर तो देखिए धान उनकर खेती पर जानल जाए साग सब्जी पर भी जानल जाए। तो परमेश्वर जी पहले तो बताइए कि पढ़ाई लिखाई के बाद कैसे खेती करती झुकाव बढ़ी?
3: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
4: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नहीं, खेती बाड़ी तो का है कि हमार पूर्वज से करत आते हैं, अब पढ़ाई लिखाई करें ओकर बाद फिर आगी सो कोरोना वोना काल होगी तो फिर पढ़ाई के बाद अब कुछ ना कुछ तो करने पड़ी वाला होगी। हाँ, नौकरी उतरी उतना है नहीं कि अब नौकरिए के पीछे भागब तो फिर कहाँ से काम चलिए घर द्वारे। एक वजह से बोलें कि अब कुछ काम के साथ साथ खेती बाड़ी भी करल जाए तो अभी एक ठो बढ़िया कन काम भी पकड़े ही पास टाइम करत ही ते में भी अच्छा खासा इनकम हो जाए प्लस घर का खेती बाड़ी भी हो जाते वही में हने काम भी हो जाते और खेती भी हो जाए। तो
4: कहाँ ज़्यादातर खेती करती है?
3: मैं तो ज्यादातर धाने का खेती हुआ हमारे जगह, काहे कि पूरा चिटकी मिट्टी है हमारे जगह

0: तो धाने वाला एरिया बगरा है तो धाने का खेती ज्यादा होल। साग भाजी थोड़ा बहुत लगा थी खाए बरीक।
1: रोरे पढ़ाई करें तो पढ़ाई में जो खेती बाड़ी के बारे में पढ़ें, कृषि ला पढ़ें, पढ़ाई में और खेत में कितना अंतर पड़ेल काम
0: तो
1: करते हैं
0: बहुत
1: तो?
0: अंतर है। काहे कि पढ़ाई तो हमन भाई स्कूल में लेती, किताबी ज्ञान रहेल, और एग्रीकल्चर ऐसा है कि ओमें जब तक आदमी फील्ड में जाए कि नहीं देखी नहीं करही तब तक ओला कही कि मैं पढ़ के कर लेहन तो संभव नहीं है। वो तो
1: खेती ला अपने से संवारना पड़ेल
0: जी जी जी
1: नहीं।
0: हाँ
1: और कहावत भी तो कहते हैं कि खेती पाती और घोड़े की तंग, अपने हाथ संवारिए लाख लोगों संग।
0: संग हाँ
1: नहीं ये
0: जी
1: वाला
0: जी
1: पढ़े हो, ये तो घाघ बंडी कर बात है।
0: हाँ हाँ
1: रोरे ये बताइए कि धान कर अभी जो समय चलता है और किसान भाई उनका वकायन भी है कि कैसे थरा करी, कैसे नर्सरी तैयार करी और कैसे रोपाई करी, मानसून ला देखा तो रोरे मन कैसे तैयारी करती धान कर?
0: नहीं अभी तो पूरा खेत का तैयारी चलत है। अब लगभग लगभग तैयारी कंप्लीट होगी से खेत मनक। तो अब धान बीज खरीदत हैं किसान मने, सब खरीदत हैं, खुद खरीदत ही। अब वही है कि अब कल तो बारिश भी अच्छा हुए है तो अब पानी सुविधा है, तेजा बारी कभी थरहा डाले का तैयारी करा थी, एक दो दिन में थरहा भी डल जाही।
2: परमेश्वर जी, मैं पूछना चाहत रहे कि एग्रीकल्चर में, कृषि में पढ़े के बाद खेती करे में कितना फायदा मिलेगा?
0: फायदा तो है, काहे कि पहले उतना पैदावार नहीं आत रही, अब हाइब्रिड धान लगाथन। तो मैं खुद एग्रीकल्चर करे के बाद मैं हाइब्रिड धान लगाए रहन, 30 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार हो रही। तो
2: अच्छा।
0: घर कमन भी वो अचंभित हो गिन कि आज तक हमन

0: मैं हाइब्रिड धान लगाए रहन 30 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार हो रहीस। अच्छा। तो घर कमन भी वो अचंभित हो गिन कि आज तक हमन इतना अकन पैदावार नहीं हो रहीस, 5 एकड़ में मैं 150 क्विंटल धान लगाए रहे कमाए रहन।
1: ये कब की बात है?
0: ये पिछले साल की बात है।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो फिर मैं अपन हिसाब से बीज का चयन करें कि मुके ये बीज लगाना है बेचे लायक में हने, वो हिसाब से मैं बीज लगाएन तो अच्छा पैदावार दे रही।
1: पूरा हमला बतावा कैसे 30 क्विंटल मिलना मामूली बात नहीं?
0: हाँ, मामूली बात नहीं है, लेकिन हो रही है कि मैं खुद करे हो तो मुके ज्ञान है कि इतना अकन हो रही का है। सबसे बड़ा चीज तो रही कि मोर जो भी मैं फसल लगाए रहे में किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगे रही। हाँ, तो मैं दवा हुआ भी ज्यादा नहीं डाले, हल्का फुल्का वो मौसम के वजह से लगे रहीस कि टूट का प्रकोप रहीस कीड़ा काटे का, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दवा चला दें तो ठीक हो गए रहीस। और ओकर बाद दवा का जरूरत ही नहीं पड़े रहीस। अब बाकी वही खेती में हन जैसे पोटास होगीस, थोड़ा जिंक होगीस, DAP होगीस, यूरिया होगीस, इतनी चीज का यूज कर रहे हैं, और गोबर खाद घर में रहीस तो गोबर खाद छिटकुआ रहे बस।
2: रोरे के संगे वो किसान बैठी ने कहीं की 19-20 क्विंटल पैदा हो, रोरे 30 क्विंटल पहुंचाए देन, का ऐसा विधि अपनाएं, कैसे शुरुआत करें, समय ला कैसे एक तरह से मेंटेन करें?
0: नहीं तो समय ये रहीस कि मैं थोड़ा पानी सुविधा रहीस कहीं कहीं जगह, और कहीं जगह नहीं भी रहीस तो वही पूरा मैं रोपा लगवाए रहन कहीं की, एकर वजह से उतना पैदावार। बुआई में तो थोड़ा कम हो जाए, बुआई में उतना नहीं है, लेकिन रोपा लगवाए रहें तो अच्छा पैदावार है। तो सबसे बड़ी चीज वही बताए कि बीमारी नहीं लग रही इस धान में कोनो प्रकार का, एकर वजह से उतना पैदावार है इस धान में। और धान भी ऐसा मैं चयन कर रहे हैं कि एकदम मोटा दाना रहीस हो और वजन रहीस तो उमें, और सबसे एक विशेष चीजों में मैं देखें कि धान में खखरा नहीं रही, एकदम 0% आसपास खखरा, 1-2% ही रही, एकर वजह से उतना पैदावार है। नहीं तो ओकर से पहले भी कमात रहे तो उतना नहीं आत रही, जैसे दादा अभी बताइन कि 20 क्विंटल 19 क्विंटल वही कमात रहे।
1: हमर क्षेत्र में धान कर खेती किसान भैया बहनी मन बहुत बढ़िया से करते हैं, और हमर क्षेत्र जानल जाए धान कर खेती पर। राउड ला इतना पढ़ाई करे के बाद ओकर बाद खेती करे के बाद का लगत है कि कौन सा चीज के हमन के बदलाव करना चाहिए, किसान मन कौन पद्धति अपनाए कि धान की खेती में कुछ परिवर्तन और दिखे, सकारात्मक परिवर्तन दिखे, राष्ट्रीय स्तर पर हमन जो प्रति एकड़ का जो पैमाना है मानक है ओकर करीब हमन पहुंच सके?
0: नहीं, अब तो वही वैज्ञानिक विधि अपनाए ले पहुंच जाए, जैमें समय का विशेष ध्यान रखना पड़ी। सबसे बड़ी चीज हो जाए हमारे जगह थोड़ा सिंचाई का साधन नहीं रहे सब धरी, तो ओमे हमने थोड़ा गड़बड़ाया जाए, और सिंचाई का साधन अगर बढ़िया है तो खेती बाड़ी भी अच्छा वही, क्या कभी कभी बारिश एकदम लेट से हन आयल तो ओमे भी पिछुआ जाती लगाए में हने,

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: अभी नवा नवा तकनीक निकालीन है और सिखात भी है वैज्ञानिक मन, तो थरहा लगाना फिर रोपाई करना दो दो बार कर काम हो जाए, तो अभी सीधी बुआई तकनीक भी है। एकर अलावा जो बुआई कर श्री पद्धति है ये सब भी निकालीन है, तो राउर कर जो वही पद्धति है कि कुछ इनमें बदलाव करना
7: चाहिए? नहीं, वो क्या है कि वो पद्धति में थोड़े सा ज्यादा परेशान हो जाते हैं। श्री पत्ती में एकदम डिस्टेंस मेंटेन करना पड़े लोकर की, इतना इतना दूरी में लगाना है। श्री पत्ती लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर के दूरी में लगेल, ओकर पौधा ला बोलें 15 से 20 दिन के अंदर में ओकर पौधा लग जाना चाहिए श्री पत्ती में आने। तो वो हिसाब से हमन गांव के किसान मन ना उलर नहीं अपना पाथन, हमार अपन हिसाब से लगा थी जितना थोड़ा पास पास में ही लगेल हमार मना ठीक रहे। अब पहले जैसा अब का है, हर साल हाइब्रिड का खेती कर रही थी, तो पहले जैसा भी बहुत ज़्यादा कल्ला नहीं आए अब पौधा में आने, 10 कल्ला 12 कल्ला तक ही सीमित रहल, और खेत मेड़ के नज़दीक में थोड़े सा ज़्यादा भी।

0: किया जाए।
1: ग्रोसरी जगह देखिए रोपाई है थोड़ा सा खर्चीला हो जाते है। हमन देखते कि सीधे बुआई कर भी एगो नया तरीका आते है कि खेत ला बढ़िया जोताई कर दिन भुरभुरा कर दिन माटी ला फिर लाइन से धागा मार के रस्सी लगाए के और सीधा बुआई कर दा तो धान हर भी रोपा ला फेल कर दे। तो कभी प्रयोग कर रहा है पद्धति
2: नहीं प्रयोग तो नहीं कर रहे हमें लेकिन मैं देखे हुए चीज ला हमने उसमें क्या है पूरा एक तो लेबर कास्ट ज्यादा आ जाए में और धान के बीज ला हमने एक एक ठो गिराना दो दो ठो गिराना थोड़ा दिक्कत हो जाए क्या जेकर जब कम जगह है वो तो ठीक है ज्यादा जगह वाला ला तो परेशानी है थोड़ा।
1: लेकिन हमने को ज्यादा जगह वाला किसान ला देखे कर्जी में जो सीधी बुआई करी से बाद में देखे तो रोपा हर भी फेल रही।
3: अरे जाएंगे वो फोटो खींचा है वहां पर
2: नहीं वो तो सही
3: इतना लंबा रही कि आदमी कितना अग्नु भी अभी देखे हमन भी देखे कि आदमी छुप जाए हमें तो वो भी बढ़वा रहा देखें। लेकिन सीधी बिजाई कर बताते हैं वैज्ञानिक आधार तो है कर लेकिन हो सकत है अभी कुछ किसान वन नहीं अपना
2: नहीं अपना पाते हैं। हाँ थोड़ा बड़े पैमाना में करते हैं थोड़ा कास्ट लगत है उसमें तो गांव में थोड़े से वही चीज हो जाए कि लेबर का
1: कि हम देखे कि सरगुजा क्षेत्र में खाली रोपाई ला करते हैं
2: ज्यादा
1: लेकिन अगर जी है कवर्धा कथी राजनांदगांव कथी तो खाली बुआई पद्धति चले बाद में बियासी करते हैं लेकिन धान ला देखा रोपा फैल रहे और सरगुजा क्षेत्र से ज्यादा धान उकती हुए तो परसों भी नया नया तकनीक देखे सुने पर मिले सियान भी बैठी ना है कहीं पूछी
3: श्याम सुंदर जी राहुल से मैं पूछना चाहत रहे कि ये जो बात कहत रही हमन ला भी लगे कि आजकल मजदूर मन थोड़ा भेटाए में मुश्किल रहे।
4: हाँ।
3: तो राहुल ला का लगे कि कैसे हमन की बुआई और रोपाई करना चाहिए।
4: रोपाई खर्चा बढ़ते जाते है वही हिसाब से अब एक बुआई करते है तो थोड़ा रोपाई खर्चा है बचत है जातीस तो खर्चा कम लागतीस और अब देखे सुने में मिलता है कि वहाँ ज़्यादा उत्पादन भी मिलता है तो कम खर्चा में ज़्यादा उत्पादन मिल जातीस तो थोड़ा एक बार तो करके आजमाए के देखब कि सही में मिलत है कि नहीं मिलत है वही हिसाब से भी लागू कति पद्धति ला फिर बदलब।
3: राहुल कर जो गोभी कर जो खेती है ओकर बारे में हम बात करना चाहत रहे कितना दिन कर फसल है राहुल कब से तैयारी करती कब ओकर पौधा तैयार करती बताइए थोड़ा ओकर बारे में।
4: जैसे बरसात शुरू हो जाए साढ़ एक पग बीत जाए तो दूसरा इंजोरी का समय ओकर थारा कर देती 20-25 दिन के जैसे हो जाए तेकर फिर वो थारा ला फिर ट्रांसफर कर देती वाला फैसला फैसला में।
3: अच्छा
4: तब और फिर पौधा फिर मजबूत मजबूत हो जाए तो ही रगी देख के वाला फिर जगाना शुरू कर देती जगाती है वहाँ समय समय में कीटनाशक दवाई लेकिन गोबर खाद वहाँ जबरदस्त लागेल
3: मतलब तैयारी के समय खेत कर तैयारी के
4: हाँ खेत का तैयारी का समय और फिर रोपाई का समय भी हाँ वहाँ पौधा तैयार हो जाए बन जाए तेकर तैयार हो जाए मुनाफा बढ़िया मिल जाए।
3: कितना दिन में तैयार हो जात हुई कब आ जाए फूलों में
4: तो 3-4 महीना।
3: एक चीज हमन देखें कि कोई फूल हर थोड़ा कम बढ़िया चमकेल नहीं कोई की बहुत चमकेल कोई कोई के साइज बढ़िया रहे कहीं कहीं साइज छोटा रहे तो एकर बार का करना पड़ेगा मतलब
4: एक बार थोड़ा विटामिन वाला पौष्टिक वाला दवाई भी जलाए पड़े।
3: हाँ हाँ
4: तो वहाँ पौधा ला बढ़िया आहार मिल जाए तो फिर पौधा अपन विकास कर तो फिर अपन समान लेवल में आ जाता है थोड़ा सा फैसला ला जैसे कोई ला ढेरे लिघे लिघे लगाए दे रहती तो छोटे छोटे फूल आए।
3: अच्छा
4: और थोड़ा दूरी बनाए के लगाती तो फूल है समान आए बढ़िया आए।
3: कुछ कीट मन जो पकड़े लो ओला कब से देखना पड़े लो कब दवाई डालना पड़े
4: ओला तो देखते चढ़ाना पड़े बीच बीच में कीटनाशक दवाई ले चलाते रहना पड़े जिसे सियान मन कहावत कहीं है कि सुबह शाम गाय और दुई सांझ में एक शाम खेती नहीं देखे तेकर जाए।
1: बड़ा बढ़िया
3: बहुत बढ़िया
1: माने खेती ले लगातार देखना पड़े
3: समझावा के चटिक थमला समझावा भी
4: तो जैसे गैया पाले रहन ओला सुबह शाम ओला भर पेट खाना नहीं देख दे तो तुरंत तो दूध कम हो जाए
3: तुरंत कम हो
4: जाए उत्पादन नहीं मिली। अब खेती ला कम से कम दुयो सांझ में एक सांझ हमन नई ओला देखे पाब तो वहाँ कोई ना कोई कीट लग जाही कम पानी के जरूरत आए तो ज्यादा पानी हो जाही तो ओला नहीं देखब तो फिर में नुकसान हो
3: जाए। हाँ। की लड़का मत समन ला पोसना पड़ेल।
4: हाँ सही बात है,
3: जैसे लड़का मन ला हमला पोसना पड़ेल, शुरुआत से मन ला देखना पड़ेल।
4: हाँ
3: वही कस खेती बाड़ी ला भी हमला देखना।
4: हाँ
1: ये तो बताइए, देखा फूल गोभी कर

0: गोटला करें,
1: जी
0: पहले छोटे छोटे रहे हुए यार और मन भी हमन भी, तो गोभी
1: हाँ
0: का अगर सब्जी बने तो जी और बढ़िया लागे कि आए
1: हाँ
0: तो गोभी का सब्जी लखा। लेकिन अभी ये गोभी की सब्जी ला काबर देखे नहीं भाई, तेला बतावा
1: अभी
0: काबर
1: वहाँ
0: ओकर मिठास और खत्म हो गई इस गोभी की सब्जी काबर नहीं मिठाए। नहीं तो पहले आलू और गोभी कर सब्जी बने तो इतना भात खोइया हर एक थरिया खाए।
1: अब गरु बछरू पलाई सब छोड़ दहीन है, अब खातू अंग्रेजी खातू माला डाल डाल के
0: रासायनिक खाद
1: रासायनिक खाद माला कमाते हैं।
2: लेकिन राउर जो कहे ना गोबर खाद डालना पड़े
1: जी
2: ओकर से महक हर खुशबू हर पुराना चीज लौट ही वो
1: हाँ
2: फायदा करत हुई।
1: हाँ वो फायदा करे।
0: एगो गोट रउरे धान कर भी खेती करत हो
1: जी जी
0: तो वो पुराना धान वाला कहाँ करें, हाइब्रिड में भुलाए गए।
1: हाँ पुराना धान वाला छोड़ धारे नो
0: पहले तो
1: हाइब्रिड।
0: कहें कि सरगुजा कर जो रजवायर मन चार चार पांच पांच साल पुराना भात मतलब चाउर मतलब खाएं
1: अब यार नहीं बाँचे
2: नहीं बाँचे।
1: हाँ वो सूरी
0: पहले,
1: नहीं दे
0: पहले,
1: का
0: पहले कैसे पहले कैसे रखे रह रहा तो
1: पहले कर धान ला उतना सूरी उरी नहीं पिए बोला चाहे 5 साल रख दी तब बोले बढ़िया रहे।
2: हाँ ये बात
1: तो
2: सही
1: भात भी बढ़िया रहे
0: जबकि उसमें सुगंध ज्यादा रही तो ओकर बाद भी सूरी नहीं लागे।
1: हाँ
2: जादू रही पहले कर खेती में जादू रही अभी भी जादू है।
1: हाँ।
2: अभी तो उत्पादन भरपूर मिलता है
1: सिर्फ उत्पादन मिलता है नहीं तो जो स्वाद पहले कर में रही वो स्वाद अब नहीं मिल पा
2: तो एक बार काम करना पड़ी ना श्याम सुंदर जी।
1: जी जी
2: तो कैसे हुई वही तो हमन जानना चाहत रहे तो वही हमन हर बार जब गोट करथन ना
1: हाँ।
2: तो ये बात हमन जरूर छेड़थन कि कैसे हुई और खुशबू भी लौटी पौष्टिकता भी रहे उत्पादन भी मिले। तो कुछ कुछ लोग बताते हैं कि नीम कर तेल कर उपयोग भी करते हैं उमन जैविक तकनीक भी अपनाते हैं करते हैं उमन।
1: हाँ तो ओकर वही ज़्यादा पाइजन वाला दवाई ला कम करना पड़ी ओकर गोबर वाला खाद का प्रयोग करे पड़ी तो एकर से फिर हमारे वो पुराना स्वाद हो वापस आए जहे इसे विचार है।
0: हाँ देखो बड़ा बढ़िया गोट है इतनी परसों गया कि फिर गिन अपने गोट ला करें कि भाई ज्यादा कमाते हैं लेकिन उस स्वाद ला नहीं भेटता है। और आखिरी में बात करें कि भाई पशुपालन कितना जरूरी है
2: जरूरी
0: है। हमारे जग युवा किसान बैठी ना है परमेश्वर राम राजवाड़े हम तुम्हारे से जानना चाहब कि रोरे अभी के समय में जो धान बुने का तरीका है ओला बताते हैं और धान का थरहा अभी किसान भाई मन कर ही तैयारी करता है। देखा हमारे कार्यक्रम ला भी सुन ही शाम के बैठे रहते हैं तो रेडियो चालू करते हैं तो कहीं अगर जानकारी भेटाएगी इस रेडियो पर तो जो तत् कोड़त जो किसान उन खेत में तैयारी करते हैं मतलब बढ़िया जानकारी भेटाए जाए तो मतलब लागे कि बाहर मोर काम तो बन गई। तो धान का थरहा कैसे करें कबर कि हम देखते हैं कि महंगा बिहन खरीद के लेते हैं और घरे ले जी तहाँ वही बोरा फटी पखना में डाब देते हैं तहाँ और पूरा भुटाए जाए मने गर्म हो जाए तो ओकर अंकुरण नहीं हो तो का तरीका अपनाएं जो धान ला हाइब्रिड खरीद के लिए जाता है कैसे वाला अंकुरण करें और बुने वाला।
3: तो जैसे अभी अगर मोटा दाना लेके जाते हैं तो कम से कम वाला 30 घंटा तक फुलाए वाला ठीक ना। 30 घंटा फुलाए के बाद अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई गर्मी ज़्यादा है तो वाला कम से कम एक ठो नीचे सूतरी का बोरा रखें भीगा कुना और कम से कम 4 से 6 इंच मोटाई मतलब फैला दें वहीं में आने सूत्री बोरा में और ओकर ऊपर एक ठो और सूत्री बोरा मतलब भिजा के ठेल दें साइड साइड लाने ईटा पत्थर से या तो लकड़ी से थोड़ा दबा दे ही तो ठीक रही और बीच बीच में कम से कम में 3-4 टाइम पानी डालते रही तो ओकस में ना जरिया एकदम बहुत अच्छा है एकदम शानदार जरिया है में लगभग तो 90% जरिया है जेल। अब गर्मी का दिन है अभी ज्यादा गर्मी है और किसान भाई मन हम ये करते हैं कि पुराना विधि से ही पैरा में ठेल देते हैं बोरा में डाल कुना तो ओमे है तो साइड साइड का मन है तो आयल लेकिन बीच में ज्यादा गर्मी पड़े के वजह से बीच का धान में जरिया नहीं आया ओमे हने तो बोलते हैं कि बीज हर खराब है। तो अभी वही है किसान भाई मतलब मैं वही बताना चाहूँ कि अभी गर्मी का दिन है तो बोरा में फैला के ही अंकुरित करें तो बहुत अच्छा अंकुरित है।
0: परसों भी वो तकनीक है वो कि सब किसान मन अगर ये बात ला मान जाही तो ठीक है नहीं तो ठगा ही हूँ मैंने एक दूसरा ठगाए हन कि 2 दिन तक ठेलाइए कर दे है ना निकालें तो देखा आधा धान करिया होगी तो किसान भाई बाद में फिर बीज ला दोष देते हैं कि भाई बीज और बढ़िया नहीं रही नहीं जामिस एक अलावे का सावधानी बरतना चाहिए तैयारी कैसे करें नर्सरी लगाए कर कितना बार जोताई करें कीचड़ कर के वाला बुनाई करें कि सीधे सीधे सूखा बुनाई भी कर सकते हैं थरहा पर।
3: देखा 2 प्रकार कर ही करते हैं थरहा तो एक तो सूखा बुनाई करते हैं, एक तो कीचड़ करते हैं।

0: तो अगर सूखा बुआई करना है तो जमीन ला बढ़िया अकन भुरभुरा कर लें और सूखा वाला बोए दें और हल्का सा पाटा चलाए दें ओमे हने, ताकि बीज थोड़ा जमीन के नीचे चल जाए। ओकर बाद अगर पानी नहीं गिरत है तो ओमे हने तुरंत शाम के, सुबह बोई ने तो शाम के पानी डाल दें, तो जरिया एकदम बहुत अच्छा आई, सब हर अंकुरित होई ओमे हने। और अगर 2-3 दिन तक पानी नहीं पड़त है और किसानों हाँ पानी नहीं डालत है और 3-4 दिन तक अगर पानी भी नहीं आते ना, तो ओमे जरिया अच्छा नहीं आई। काहे कि अभी जमीन हर हमार एकदम गर्म ही है, ज़्यादा पानी तो बरसिस नहीं है एकर वजह से हने। अब एक ठो गीला वाला बोआई करना है भाई, वो जिला चोपी बोआई कथी हमन मने, तो ओकर बाद तो पानी सुविधा है तो खेत में बढ़िया अकन सम कर कुना पानी भरवाए कुना, ओला पाटा चलाए कुना एकदम प्लेन कर कुना, धान ला जरिया आवाए के ओला छिटक देती, वर्षा भर जरिया आ जाए। लेकिन ओमे भी एक चीज ला भी ध्यान देना है, काहे कि अभी गर्मी ज़्यादा है तो ओमे पानी जमा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वो सुबह पानी तो डलने नहीं है ओमे बिल्कुल, इतना टेम्परेचर ज़्यादा है, शाम के अगर सुबह पानी है तो ला निकालिए दें, और पानी अगर ज़रूरत है तो शाम के डालें और सुबह खोल दें उला हने, तो बहुत बढ़िया रही हो।
1: हमने चीज़ और देखी परसों भैया कि हम जहाँ देख नर्सरी करा हन, चाहे किसान भाई में जहाँ नर्सरी करते हैं वो जगह धान ला कितनों बढ़िया साफ सफाई करके जुताई करके बुनी, लेकिन उनमें खरपतवार जामी जाए और ऐसा खरपतवार की ओर चिन्हावे नहीं करे कि धान है कि बोना है, तो ये खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं, कैसे रहूर अपन खेत में कैसे अजमाती है ला?
0: नहीं, जैसे अगर नर्सरी लगा थी ते में हने उगत है तो कुछ कुछ दवा आयल बोला हल्का सा छिड़काव कर दें। हाँ, लेकिन दवा छींटे के तुरंत बाद भी नहीं डालना चाहिए बीज ला भी, दवा छींटे के कम आधा घंटा के बाद बीज ला बोए ना तो बहुत बढ़िया रहे, ओमे घास भी नहीं उगी और दवा का जो भी रहे थोड़ा बहुत केमिकल है, काहे कि वह केमिकल और दवा बीज ला दोनों मिक्स हो जाए तो खराब हो के थोड़ा बहुत संभावना रहे, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलब।
2: एक सवाल बस मैं पूछना चाहत रहे, राउर कर धान बीज कर भी कुछ कुछ काम है, पाकिट में का लिखल रहे किसान जब ले जाए तो ओला का चीज में देखना चाहिए?
0: हाँ, ओमे तो कर डेट देखना चाहिए पहला चीज तो, कि धान हर कब पैकिंग हुई से और एक एक्सपायरी कब है और धान हर कहाँ से बनी से, ओला भी बहुत जरूरी है देखना। पता चली सामान अब दाम तो अभी ढेरे बग रहा है, 1200-1300-1500 तक है, तो ओकर वही है एक्सपायरी देखना रहे और कहाँ से बनी से और कौन कंपनी है बनाते वाला बहुत जरूरी है चेक करना।
2: तो पता चले कि लोकल तो नहीं है,
0: हाँ लोकल तो
2: कंपनी सही
0: हाँ,
2: है कि नहीं, मान्यता रजिस्टर्ड है कि नहीं।
0: हाँ, और आजकल तो हर पैकेट में QR कोड भी दे इसे।
2: अच्छा।
0: हाँ, तो आजकल सब किसान भाई मन तो बड़का मोबाइल चलाते हैं, तो मैं गूगल में जाके QR कोड में भी स्कैन कर सकते हैं और QR कोड में स्कैन कर ही तो पूरा धान का जितक जानकारी है ते सब हर आ जाए सामने, ओकर से भी चेक कर सकते
2: कुछ हैं। पंजीकरण संख्या कुछ ऐसे रहल कि जोला देखना जरूरी रहल?
0: हाँ, वही रहल, जैसे QR कोड ले स्कैन कर ही तो पूरा डिटेल आ जाए में, कौन सा कंपनी है, कब ते कब सा यानी कि कब तक ये धान बीज बना थे, कौन सा देश का बना थे, हाँ वो सब दिखाई दे,
2: देखना चाहिए। श्याम सुंदर जी, हमारे कार्यक्रम के समय होते जाते हैं, बस मैं पूछना चाहते रहे कि राउर के जो परिवार में कौन कौन है, लड़का बच्चा मन का करते हैं, काकस पढ़ाई करते हैं, खेती बाड़ी में कौन कौन लोग हैं?
3: हमारे परिवार में हमन द्विज है, भाई संगे रथी, सामूहिक परिवार है, बड़ा परिवार है।
2: अच्छा।
3: तो लड़का मन तो अभी पढ़ाई लिखाई करते हैं, एक ठे लड़का है एग्रीकल्चर में 12वीं करी से तक खेती बाड़ी में लगी से
2: एग्रीकल्चर में
3: जी, और भाइयों है एग्रीकल्चर करके खेती बाड़ी में,
2: सब मिला के मतलब सामूहिक रूप से सब कोई
3: जी,
2: खेत में काम कर। और हाँ, बकना खुर्द में जो आस पड़ोस के राउर के जो खेत है वो कौन कस है, वो वहाँ बड़े बड़े किसान हैं वहाँ पर?
3: हाँ, बड़े बड़े किसान हैं।
2: ओमन का लगाते हैं?
3: बरसात में तो धान लगाते हैं और बाकी में मिर्चा लगाते हैं, और फिर एक समय तो बरसात में गोभी मैं रहल गोभी का खेती ला नहीं छोड़े
2: सब कोई करते
3: हैं। सब कोई करते हैं, एक बार गोभी में बहुत लगाव है, बहुत रुचि है,
2: बड़ा सुंदर दिखत हुई है। हाँ, बकना में सब कति गोभी तो बड़ा उज्जर कस है ना, सब्जी में खाए में बड़ा बढ़िया लगे गोभी का, पौष्टिक भी रहे।
3: हाँ।
2: राहुल जी बात करते रहे कि ओकर जो फूल है उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी डालना पड़े लो, फूल ला बड़ा अगर छोटा है तो बड़ा करे बार मौका मिली तो जरूर हमन बकना खुर्द में गोभी कर खेती ला देखे बा आप, तो समझ में आई कि कैसे कैसे

0: गोभी कर खेती करना
1: हाँ,
0: चाहिए।
1: हमन ला इंतजार रही
2: जरूर रहूर उनके गांव में आप।
0: तो अग्नु भैया, हमार कार्यक्रम कर बस बेरा हो गई से, तो आज हमार साथ में रहिन श्याम सुंदर जी बकना खुर्द से आए रहिन, और परमेश्वर राम राजवाड़े जी रहिन, ये भकुरा नवापारा कर रहे वाला है। दोनों जन कर खेती बहुत बढ़िया है, बढ़िया हमार से बातचीत भी हुई से, और हमार कार्यक्रम है ओकर समय अब हो गई से, तो फिर अगला अंक में नवा किसान मन से भेंट हुई, और बहुत बहुत धन्यवाद करत थी, बढ़िया बातचीत हुई, और शुभकामना दे थी कि दोनों जन कर काम भी बढ़िया रहे, खेती बाड़ी भी बढ़िया रहे, और खरीफ के बाद जब उत्पादन मिले तो बढ़िया उत्पादन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद
3: जी, धन्यवाद।

0: हमन सुनत रहन किसान वाणी कार्यक्रम और किसान वाणी में हमन सुनेन किसान गोष्ठी कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है अग्नु भैया, जगह जगह कर हमन दुरिया दुरिया से किसान भैया बहनी मन ला बलाथन, बातचीत करथन, खेती बाड़ी के बारे में हमन ला भी सीखे पर मिलेल, सुनोइया भैया बहनी मन भी सीखते हैं नवा नवा चीज कर, खेती बाड़ी कैसे कैसे होता है, पूरा अनुभव के बारे में विचार विमर्श मन।
1: और अच्छा ये लगे कि पूरा युवा किसान मन लगिन है।
0: हाँ।
1: और नया नया लड़का मन खेती करते हैं और बहुत अच्छा खेती करते हैं,
0: पढ़ लिख के देखा कृषि में स्नातक करी से। तो चौपाल से विदा लेकर बेरा होते
1: हाँ, तो चल जाए आन दिन फिर भेटाबो।
0: हाँ, राम राम, राम।

किसान भाई सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम चौपाल। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात के 8 बज चुके हैं। अब पेश है सोशल मीडिया की गूंज, इंस्टा फरमाइश।

इंस्टा फरमाइश सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार आदाब, आज शबनम की ओर से। दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में एक क्लिक पर सोशल मीडिया पर संदेश भेजना तो बहुत आसान हो गया है, लेकिन अपनी सच्ची भावनाओं को सुंदर शब्दों में पिरोकर अपनों तक पहुंचाना आज भी एक बेहद खूबसूरत कला है और आपका ये अपना शो इंस्टा फरमाइश उसी कला को संगीत के सतरंगी रंगों से सजाने का एक प्यारा सा हमारा प्रयास है, जहां आपके दिल से निकले संदेश और आपकी पसंद के जादुई गीतों से मिलकर कुछ ऐसे यादगार पल बनते हैं जो सीधे दिल में उतर जाते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत से।

0: सच में मिलने को दिल करता है?
1: आपकी जो फरमाइशें हैं वो हमसे आपकी मुलाकात बहुत ही आसानी से करा देती हैं। दोस्तों, ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे वो फिल्म फूल और कांटे से था। रानी मलिक के शब्दों को संगीत से सजाया था नदीम श्रवण ने, और आवाज़ें रहीं अलका याग्निक और कुमार सानू की। और हम तक जो फरमाइशें आई हैं इस गीत के लिए वो हैं ये। ग्राम बिरखेरा, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु

उपाल, हिमांशु पाल, हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नायमा रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशबत सिंह और इनके परिवार के सभी सदस्य, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन, जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद अजरा तबस्सुम, रायपुर अनई जिला से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन, धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी, मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदनी कुमारी, कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार और मोहम्मद अफजल मलिक, बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु ताशु अर्णवानंद और सत्यमानंद, प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु, अनुष्का, मिथिलेश और मनोज यादव। कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। मैं हूं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ शबनम और कार्यक्रम का अगला गीत ये रहा।

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये कौन?

साथियों, संगीत में वो जादुई ताकत है जो मिलों दूर बैठे दिलों को भी आपस में जोड़ देती है। और सोचिए, जब इस सुरीले संगीत में अपनों के लिए भेजे गए आपके प्यारे संदेश भी शामिल हो जाएं, तो वो गीत सिर्फ गाना नहीं रहता, वो एक इबादत बन जाता है और भी खास बन जाता है। ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे, इसे लिया गया था फिल्म चांदनी से। आवाज़ें रहीं जॉली मुखर्जी और श्रीदेवी की, और इस गीत के लिए जो फरमाइशें हम तक पहुंची हैं वो हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी, पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तानिया नारंग, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू, ज्योति आप हैं, ग्राम चरौदा बार नवापारा, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे फिल्म साजन से ये गीत। समीर के बोल हैं, संगीत नदीम श्रवण का, आवाज़ एसपी बालासुब्रमण्यम की, और इस गीत के लिए फरमाइश आप सभी ने भेजी हुई है ग्राम लसूड़िया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, गांव टोरोवाल, जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम और बेबी वमिका संग वाणी, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल, निशा, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म साजन से ये गीत।

आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी अंबिकापुर और इस वक्त बज रहे हैं 8:22 और 44 सेकेंड। कार्यक्रम चल रहा है इंस्टा फरमाइश और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ शबनम। इंस्टा फरमाइश की इस महफिल में हमारी कोशिश बस यही है कि आपके अनकहे जज्बातों को सुरों की खूबसूरत जबान में ढाल कर आप तक और आपके अपनों तक पहुंचा सकें। आइए सुनते हैं इसी अपनेपन से भरा ये एक और गीत।

कुमार सानू और साधना सरगम को अभी आप सुन रहे थे फिल्म साजन की बाहों में। समीर के बोल थे, संगीत दिया था नदीम शवर ने और इस गीत के लिए फरमाइशें आई थी आप सभी से। ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। खंडवा से ममता बमारकंडे, संजय और बेबी किट्टू। राज पैलेस मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन और कृष्णा संग पिहू स्वर्णकार। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह। रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। बेरड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ और जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर और कार्यक्रम चल रहा है इंस्टा फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत ये रहा।

समीर का लिखा और नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया फिल्म आशिकी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें रहीं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की, और इस गीत के लिए फरमाइशें मिली आप सभी से। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बरासा, विशाल विकास, रोशनी और शगुन बरासा, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अवंतिका येले, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक, मूलरी क्षत्रिय, नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, फजिलका पंजाब से खेड़ा परिवार के आप सभी सदस्य, भूषण खेड़ा, विशु और विशाल खेड़ा, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, वडिंग खेड़ा से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, मलियान सरदाना मेरठ से अनिल जैन, श्याम जैन, मास्टर जीवम जैन, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शाबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, जिला किशनगंज बिहार से रविंदर मोहन दास और आशा देवी, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, तनुजा और ईशांत देवांगन, पंजाब से मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक और अली रहमान, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोत, साथ ही जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन और माहिरा नूर। कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में अब आप सुनेंगे फिल्म दीवाना से ये गीत, शब्द समीर के, संगीत नदीम श्रवण का, आवाजें अलका याग्निक और विनोद राठौर की और फरमाइश आप सभी की। पाटन गुजरात से धीरज वीर अवारी, यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन, खारवन मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी, ग्राम कसकेला सलका से सजेश कुमार, सेजल सिंह, ज्योति सिंह, अर्चना और साक्षी सिंह, अनारकली बाजार जगराऊं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाह, मंजुलता राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत और

रामानंद कुशवाहा, सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साई राजवाड़े, सोमार साई मेर साई श्री भगत हेमंत कुमार, सुखराम सिंह मरावी ग्राम कौशलपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से, गांधी नगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष और दीपल, जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश राम भरोस पैकरा और नरेश सिंह, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, आशिक संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी उत्कर्ष और डुग्गू, नदौर शक्ति से संतोष कुमार, अंजलि बेबी, आशी अंश चौहान, लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब, अलमास बानो, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े और मोहम्मद हसनैन पवार, पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत लखनलाल, सावित्रीबाई देवांगन, सनावत से शेख मूसा, मोहसिन अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना,

लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब, अलमास बानो, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े और मोहम्मद हसनैन पवार। पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत लखनलाल, सावित्रीबाई देवांगन। सनावत से शेख मूसा, मोहसिन अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना, स्वरूप आनंद सरजाल जोड़ा पीपल अंबिकापुर से, और उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। सिरकोंदका महादेवपारा पोस्ट लपटरा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम राजवाड़े, परमान राजवाड़े, लल्लू बल्लू घनू, अमित कुमार, अभिजीत, गोविंद, तरुण, सकल राम, प्रियांशी, राजकुमारी, नेहा, नायरा, समायरा, खुशी, सौम्या और उमेश्वरी संग मुन्नी। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म दीवाना से ये गीत समीर के बोल हैं, संगीत नदीम श्रवण का, आवाज़ें अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की हैं।

0: साथियों, इस इनबॉक्स में आने वाली हर एक फरमाइश के पीछे कोई न कोई खूबसूरत सी कहानी ज़रूर छिपी होती है और हर एक छोटे से संदेश के पीछे एक सच्ची भावना होती है और हमारी कोशिश रहती है कि आपकी फरमाइशें शामिल हों। तो सफ़र इंस्टा फरमाइश का आज यहीं तक। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि अगली बार क्या सुनना चाहेंगे आप। कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश इस वक्त अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।

0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बाद

0: देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 105

0: 95 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. 5 Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. 5-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration, focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dhiraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of 3-match series in Dharamshala. Prime Minister Narendra Modi will reach the French city of Nice tonight, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Nice has filed this report.
2: France occupies a special place in India's strategic vision. As Prime Minister Narendra Modi arrives in Nice tonight at 10:30 p.m., attention is focused on a series of high-level engagements aimed at deepening cooperation across innovation, technology and strategic sectors. Tomorrow at 2:30 p.m., Prime Minister Modi and President Macron will jointly inaugurate Bharat Innovates, India's flagship deep tech showcase in Europe. More than 120 Indian startups, along with global investors, CEOs and technology leaders, will participate in the event. Prime Minister Modi will also hold bilateral talks with President Macron. Discussions are expected to cover defense, artificial intelligence, space, trade, education and other global challenges. Here in Nice, expectations are high that the visit will inject fresh momentum into one of India's most trusted strategic partnerships. This is Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
1: On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his 2-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico in Bratislava. Slovak President Peter Pellegrini, in a social media post today, said that Prime Minister Modi's historic visit will open new opportunities for Slovakia-India cooperation. In a social media post, President Pellegrini stated that he is looking forward to welcome Mr. Modi in Bratislava. The Indian community in Bratislava is preparing a unique welcome for Prime Minister Modi during

आ गले लग जा, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। साहिर के बोल थे, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे कैफी आजमी का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया फिल्म हीर रांझा से ये गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म हीर रांझा के इस गीत के बाद सुनिए फिल्म आप आए बहार आई से ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाजें मोहम्मद रफी, हेमलता और साथियों की हैं।

मोहम्मद रफ़ी, हेमलता और साथियों के गाए फिल्म आप आए बहार आई के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 9:30 होने वाले हैं। अखिल भारतीय संस्कृति पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें, संस्कृति की धाराएं।
1: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार्क का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है। न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहाँ रुककर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
0: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है। एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं चेतना को साधती है, और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक,
2: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
2: 5000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
3: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग, आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की, तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी। इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, और ये प्रयास देश में, दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे, और उसमें अविज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया, और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं, और इसको किस प्रकार हम विज्ञानपरक बनाते हुए, खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इतनों की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर। ए मायने सामान्य, बी मायने उससे और कठिन, सी मायने और कठिन, डी मायने उससे भी कठिन, और ई मायने परम कठिन आसन, ऐसे हमने कैटेगरी तय की। और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके, उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्चर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले से वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
2: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
3: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है, और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है, और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम

0: उत्तम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
1: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा की या इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आईं और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
0: ये जो मूल रूप से विषय आया ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग श्री स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए, तो उस वार्ता में ये निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थीं कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2x6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
1: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल

0: स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2x6 फीट का एक स्थान तय करें ना, कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
1: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
0: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई, टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको 1 मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है। स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस, वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिरता। तो 1.5 मिनट करने वाला बच्चा ही 1 मिनट परफेक्शन से कर पाता है, क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीजें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं, और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया और वहां से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है, उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, सब ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
1: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है, और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया, नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पॉन्स मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
0: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है, और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने, और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म मजहब जाति कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की, और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
1: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया, 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी, कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
0: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूँ। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है, उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहां जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहां लेवल अच्छा नहीं होगा, जहां चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा, तो एक वो संबल था।
1: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं?
0: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूँ, 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे, और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से, और उन्हें आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
1: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
0: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा, और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा, और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।

0: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है, बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं, और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है, तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है, संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूजॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे DU म्यूजिक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन होते हैं। वहाँ पे IIT कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ पर, फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है।
0: संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके एक साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मोरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेग में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है, तो वो गाना हमने खुद बनाया है। वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहते हैं। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक फोर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख परख के।
0: आपके अपने अनुभव में, जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग जिस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है जो

0: थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते।
1: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज की कमी आ गई है बहुत ज्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
0: ऐसा क्यों?
1: अब वो ज्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूजिक वेन्यूज थोड़े से स्थिर हो गए थे, और अब वही चार पांच जगहें हैं जहां पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीजें, तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
0: शायद आप बताइए।
2: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
0: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
2: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेट अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे 500 रुपये एक फैमिली के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटालिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।
1: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं। अब हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूजिक फ्री में सुनना है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने। एक डेढ़ घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है। ये आपको एक लेवल पे, आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको डेढ़ घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूजिक। पर कवर्स उन्हें भी करने पड़ते हैं।
0: तो अभी आप लोगों ने क्या तरीका निकाला आदित्य, जैसे आप जो बात कर रहे हैं, जब कवर्स का जिक्र आपने किया, तो आपको लगता है कि कवर्स ज्यादा पॉपुलर हैं रादर देन योर ओन कंपोजिशन?
1: बिल्कुल है, पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं।
0: अच्छा,
1: हम बोलते भी हैं वी कुल्फी फाइल्ड इट।
0: जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया संभव जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया, उसे आपने एक नया टच दिया।
3: उसी आइडिया को लेके मेन स्ट्रीम गानों को एक अलग नजरिए से देख के उनको प्रेजेंट करना इज व्हाट वी एज अ बैंड आल्सो डू।

कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं।

बीती 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी

0: के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिसी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like Mahabharat. और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayan itself. रामायण का जो स्पंदन है, जो लय है, वो निरंतर है, वो शाश्वत है। आपको व्याख्या मिलती है किस तरह से आपके अंदर वो इमोशंस और भावनाएं हैं। और मैंने दो लाइन लिखी थी कैके का प्रसंग कि कैके के कारण राम वन गए और इसी कारण वो राम बन भी गए।
0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिसी गुरु विदुषी शरण लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े ही विस्तार से बताया।
2: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
0: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
3: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमने धारण किया है। और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है। हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के, रह के उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूं, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे।
0: मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंभ रामायण का विशेष उल्लेख किया।
4: There is also a very beautiful and very important play, a scene to behold, to seeing them come, the Shurpanakhas.
0: उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
4: गोइंग एंड प्रपोजिंग टू रामा एंड लक्ष्मण फ्रॉम द राक्षसी बाव ऑन द हैंड गोज इनटू अ ब्यूटीफुल पल्लव।
0: राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं।

असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्दोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खां, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल सिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुड़ी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी, इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी टुनाइट इन रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। We bring you a saxophone recital by U. Shiva Prasad. U. Shiva Prasad, born into a family of musicians in Vishakhapatnam, inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu, and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hansdhwani, composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar, is set to Aditalam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनी। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नू वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्यागराजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग हंसध्वनि। कंटिन्यूइंग हिज रिसाइटल, यू शिव प्रसाद नाउ प्रेजेंट्स अनदर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन राग नवरस कानड़ा। Composition Ninnu Veena Rama, composed by Tyagaraja, is set to Rupakam Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कानड़ा। यू शिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी। कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Adi Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Vridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in

0: the studios of Akashvani Delhi and was broadcast from the Delhi station of Akashvani.
1: Saath mein Ratna Pandey.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरीटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अंबिकापुर केंद्र है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर। रात के 11:10 और 13 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ प्रातः 5:53 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।